मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 10वीं तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है खेत खलियान कार्यक्रम। इसमें सुनिए वार्ता अश्वगंधा की खेती। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
1: किसान भाइयों नमस्कार। अश्वगंधा एक औषधीय पौधा है। इसका उपयोग काफी समय से हमारे यहाँ आयुर्वेद और यूनानी पद्धति में होता है। अश्वगंध को खरीफ के मौसम में देर से लगाते हैं। जमीन में अच्छी मात्रा में नमी तथा मौसम शुष्क होना चाहिए। इसकी खेती किसी भी प्रकार की जमीन में की जा सकती है, परंतु बलुई दोमट या लाल मिट्टी जिसका पीएच मान 7.5 से 8 हो और जल निकास का उचित प्रबंध हो सर्वोपरि होती है। 660 से 750 मिलीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त होते हैं। यदि रवि के मौसम में 1 से 2 वर्षा हो जाती है तो उपज में काफ़ी गुणात्मक सुधार होता है। साधारणतया इसकी खेती ऐसे खेतों में करते हैं जहां पर सिंचाई का अच्छा प्रबंध नहीं है तथा अन्न वाली फसलों को उगाना लाभप्रद नहीं है। वर्षा होने से पहले 2-3 बार खेत की जुताई ठीक ढंग से करके पाटा लगाते हैं। बुआई के समय खेत को देसी हल से जोत कर मिट्टी भुरभुरी कर लें। पाटा का प्रयोग करके खेत को फिर समतल कर देना चाहिए। उसके बाद जो है बीजों की बुआई करनी चाहिए। साधारणतया इसको कृषक छिड़काव विधि से बोते हैं। इस विधि से बोने से 10 से 12 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर खेत में लगता है। यदि बीज को पंक्तियों में बोया जाए तो उपज अच्छी मिलती है और निराई गुड़ाई में भी आसानी होती है। बीज की मात्रा भी कम लगता है। यदि खेत में पौधों की संख्या कम हो जाती है तो उपज में कमी आ जाती है। दोनों प्रकार की बुआई विधियों के बाद बीज को हल्की मिट्टी से ढक देना चाहिए। बीजों का अंकुरण 8 से 10 दिन में हो जाता है। उर्वर भूमि में पौधों की दूरी अधिक करनी चाहिए। इस की बुआई यानी कि अश्वगंधा की खेती जो है वो रोपाई विधि द्वारा भी की जा सकती है। इसके लिए जुलाई महीने में नर्सरी डालते हैं। 1 हेक्टेयर खेत में अश्वगंधा लगाने के लिए 500 वर्ग मीटर जमीन पर 5 किलोग्राम बीज की नर्सरी डालते हैं। 5 से 8 सप्ताह में पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। रोपाई मध्याह्न के बाद करनी चाहिए और पौध लगाने के तुरंत बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। अश्वगंध की बुआई का उपयुक्त समय मानसून द्वारा निर्धारित करते हैं। इसकी बुआई ऐसे समय करते हैं जब 3/4 वर्षा जो है वो खत्म हो जाए, यानी कि अगस्त महीने के बाद ही इसकी बुआई करनी चाहिए। बीज को खेत में बोने से पहले डायथेनियम 45 से उपचारित कर लें। उसके बाद आप उर्वरक प्रयोग की बात सोचें। किसान किसी भी तरह के रासायनिक खाद इसकी खेती में नहीं डालते हैं, लेकिन यदि बुआई से पहले 15 किलोग्राम नाइट्रोजन और 15 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जाए तो फसल काफ़ी अच्छी होती है। अधिक वर्षा या पानी अश्वगंध की खेती के लिए हानिकारक होती है, इसलिए इसकी खेती बरानी क्षेत्रों में भी आप करें। बीज की सड़न, पत्ती की सड़न, डैम्पिंग ऑफ, पौधों का झुलसना, पौधों में अंगमारी, डाइबाइक और लीफ ब्लाइट सामान्य बीमारियां हैं। इन बीमारियों से बचाने के लिए भी आपको उपाय करना चाहिए। दिसंबर के माह से पौधों पर फल फूल आने लगते हैं। जब पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगे और फल भी पीले हो जाएं तब फसल खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। फसल की खुदाई जनवरी से मार्च के मध्य में करते हैं। बुआई के लगभग 150 से 170 दिनों बाद फसल पककर तैयार हो जाती है। पूरे पौधे को जड़ सहित खोदना चाहिए। पौधों की उचित गहराई तक खोद कर निकाल लेना चाहिए जिससे जड़ें कटने नहीं पावें। खुदाई के समय उचित नमी खेत में

0: करना चाहिए। पौधों को ऊपर से काटकर उचित नमी पर हल चलाकर भी जड़ें एकत्रित की जा सकती हैं। खुदाई के बाद जड़ों को धोकर 7 से 10 सेंटीमीटर के टुकड़ों को काट लेना चाहिए। उन्हें फिर धूप या छाया में सुखा लेना चाहिए। जड़ों को इतना सुखाना चाहिए कि उसमें 10 से 12 प्रतिशत नमी जो है वो रह जाए, तभी आप बाज़ार में उन्हें बेच सकते हैं। फिर आप फलों को तोड़ें या उन्हें डंडे से झाड़ लें, बीज प्राप्त कर लें। सूखी ही हुई जड़ों को मोटाई के अनुसार ग्रिड में आप विभाजित कर लें, उसके बाद बाज़ार में उसे बेचने के लिए भेज दें। इस तरह से आप अश्वगंधा की खेती करें और लाभ उठावें।
1: खेत खलिहान कार्यक्रम के अंतर्गत आपने वार्ता सुनी अश्वगंधा की खेती। वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम

0: दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लायन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ज और FM 100.1 मेगाहर्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन मनन।

आज धर्म के क्षेत्र में धूल भरी आंधी चल रही है। धर्म के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है वह इसकी मूल भावना के विपरीत है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह कि धर्म के सही अर्थ पर, इसकी सही प्रकृति पर, इसके वास्तविक स्वरूप पर बाहरी आडंबर और कर्मकांड ने कब्जा जमा लिया है। दूसरा कारण यह है कि आज हम धर्म के नाम पर खून खराबा, झगड़ा फसाद रोज देखते हैं। अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे के धर्म को हेय मानने के चलते धार्मिक कट्टरता बढ़ती जा रही है। अतः आज जरूरत इस बात की है कि धर्म को सही रूप में समझा जाए और इसे सही रूप में अपनाया जाए। इसके लिए गांधी हमें मार्गदर्शक के रूप में नजर आते हैं। गांधी के अनुसार धर्म जीवन का अभिन्न अंग है। यह बाहर की चीज नहीं है, यह खुद का अनुभव है, अंदर की आवाज है। किसी गुरु से सुनकर या शास्त्रों का तोता पाठ कर धर्म को नहीं जाना जा सकता। धर्म अनुभूति है, यह मनुष्य के हर कार्य में हर समय मौजूद रहता है। यह किसी खास दिन या लग्न विशेष का कार्य नहीं है। यह धर्म ग्रंथ पढ़ने, नमाज अदा करने, चर्च में प्रार्थना करने, अरदास करने में भी मौजूद है, और बच्चों को पढ़ाने, किसी बीमार की सेवा सहायता करने, फुटबॉल खेलने, भोजन करने जैसी दिन भर की सभी क्रियाओं में भी। धर्म ही जीवन को संचालित करता है और उसे पूर्ण बनाता है। जिन कार्यों के द्वारा जीवन सुंदर, सर्वांग पूर्ण, पवित्र और पूर्ण बनता है, उन सबों में धर्म की विद्यमानता है। गांधी ने स्पष्ट कहा कि जो धर्म मनुष्य के दैनिक कार्यों से अलग होता है उससे मेरा परिचय नहीं है। धर्म के प्रति गांधी का यह विचार धर्म के क्षेत्र को सर्वव्यापक बना देता है। कोई भी कार्य, चाहे वह किसी के द्वारा कहीं भी किसी समय किया गया हो, धर्म बन जाता है यदि वह सेवा भाव के साथ, ईमानदारी के साथ किया गया हो। गांधी ने खुद अपने को राजनीति से जोड़ा। सामान्यतः राजनीति को छल प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष, मिथ्या भाषण, धन संग्रह, सत्ता प्राप्ति का साधन इत्यादि का पर्याय माना जाता है, लेकिन गांधी ने राजनीति को मानवता की सेवा का माध्यम बनाया। धर्म की पतवार लेकर राजनीति की नाव पर सवार हो गए। सत्य और अहिंसा का प्रयोग उन्होंने राजनीति के औजार के रूप में किया और इसे ही भारत की आजादी का केंद्र बिंदु माना गया। गांधी ने स्पष्ट कहा कि राजनीति धर्म से भिन्न नहीं हो सकती। राजनीति को सदैव धर्म की अधीनता में चलना

चाहिए। धर्महीन राजनीति मृत्युपाश के समान है, क्योंकि उससे आत्मा का हनन होता है। धर्म की गांधी की धारणा में कट्टरता के लिए कोई जगह नहीं। धर्म में कट्टरता आती है अपने ही धर्म को सही सच्चा मानने और दूसरे के धर्म को झूठ मान लेने की सोच के कारण। सही यह है कि सभी धर्मों की आधार भूमि एक है, सभी धर्मों के अपने अपने इष्ट हैं, सभी धर्मों में अपने अपने ढंग से पूजा प्रार्थना का विधान है और सभी धर्मों में नीति और सदाचार को नींव का दर्जा दिया गया है। यदि सब अपने अपने धर्म के साथ सदाचार की नीति का पालन करें तो आपसी वैमनस्य, कटुता, कट्टरता आप से आप समाप्त हो जाएगा। गांधी ने बुनियादी शिक्षा की तरह बुनियादी धर्म का मार्ग बनाया। बुनियादी धर्म सेवा है, मानवता की सेवा, अपने हित से अधिक परहित का ख्याल। इसे मानव धर्म भी कहा जा सकता है। धर्म का लक्ष्य मनुष्य को पूर्ण इंसान बनाना है और इसके लिए धर्म को सही तरह से जानना और मानना आवश्यक है। गांधी ने यही कहा, जो कहा उसे किया, और जो किया वह हमारे लिए आज भी प्रेरक है।

सुन रहे थे चिंतन मनन, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। पेश है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। आरंभ में सुनिए ये देश वंदना समूह स्वर में।

0: भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। इसमें सुनिए भेंट वार्ता, शिशुओं में फेफड़ों का संक्रमण। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर नवजीवन और भेंटकर्ता कुसुमाकर दुबे।
1: डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। हम श्रोताओं के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि शिशुओं में कभी कभी फेफड़ों का संक्रमण हो जाया करता है कई तरह से, तो वो क्या है, कैसे होता है?
2: फेफड़ों का संक्रमण एक्चुअली हवा जनित रोग है
1: जी,
2: वायु जनित रोग कह सकते हैं
1: जी,
2: जिसके कारण कि जर्म जैसे वायरस या बैक्टीरिया
1: जी,
2: वो सांस के द्वारा फेफड़े में चले जाते हैं और वो वहाँ संक्रमण पैदा करते हैं।
1: तो इसमें क्या क्या होता है बच्चे को?
2: जैसे संक्रमण होता है तो दो तीन चीज हो सकता है। एक तो है कि सिर्फ सर्दी खांसी रह के रह गया
1: जी,
2: उससे उसके बाद हो सकता है कि उसके साथ जो है सांस लेने में दिक्कत होने लगी।
1: अच्छा।
2: तो माइल्ड या माइल्ड निमोनिया उसको बोलते हैं।
1: अच्छा।
2: सांस लेने में दिक्कत होने लगी
1: जी, जी।
2: उसके बाद हो सकता है कि सांस लेने में दिक्कत बढ़ती गई और पंजड़ा फेंकना, जिसको बाखा फेंकना कहते हैं, वो होने लगा, तब उसको कहते हैं हम लोग सीवियर निमोनिया।
1: अच्छा।
2: या फेफड़े का संक्रमण।
1: अच्छा। उससे जी, जी,
2: उससे भी ज्यादा अगर हो, जैसे बच्चा निढाल हो जाए, सुस्त हो गया और कुछ बोल नहीं पा रहा, पी नहीं पा रहा है, तब उसको बोलते हैं वेरी सीवियर निमोनिया हो गया। इस सीवियर निमोनिया, वेरी सीवियर निमोनिया दोनों में बच्चे को भर्ती करना चाहिए तुरंत, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है।
1: अच्छा।
2: और एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन माइल्ड निमोनिया में जो है वेट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा पी रहा है, दूध पी रहा है, दवा ले सकता है, उसके बाद जो है वो दवा भी नहीं ले सकता है, पानी भी नहीं पी सकता है और उल्टी होती है साथ में।
1: अच्छा। तो डॉक्टर साहब, ये किस उम्र के बच्चे को होता है?
2: हम लोग कहते हैं कि 0 से 5 साल में बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, और जितने दुनिया भर में मौत होती है 0 से 5 साल में बच्चों की,
1: मैंने
2: 2 महीने से 5 महीने, उसमें 13% मौत जो है वो निमोनिया से ही, फेफड़ों के संक्रमण से ही होती है।
1: अच्छा। कभी कभी ऐसा हो जाता है डॉक्टर साहब कि किसी बच्चे को यदि निमोनिया हुआ या जैसे कहें फेफड़ों का संक्रमण हुआ, तो उसकी सांस कुछ क्षण के लिए रुक जाती है, 10 सेकेंड 20 सेकेंड, या कभी कभी आधा मिनट के लिए भी, 1 मिनट के आसपास रुक जाती है। अचानक घर में पूरा हल्ला होने लगता है, आ जाइए तो क्या, फिर अचानक उसकी सांस वापस आती है, ये सब क्या है?
2: उस समय एक्चुअली होता है कि ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन जिसके कारण की सांस, रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ब्रेन में वो काम नहीं करता है, कुछ क्षण के लिए वो जो है सांस रुक जाता है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने लगा
1: जी,
2: तो वो जमा कार्बन डाइऑक्साइड फिर उसको स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है सेंटर को, फिर सांस वापस आ जाता है।
1: अच्छा।
2: तो जब भी इस तरह का है कि 20 सेकंड के लिए सांस रुक गया या चमकी आ गया,
1: मतलब
2: ब्रेन से रिलेटेड हो गया
1: जी,
2: तो इसका मतलब वेरी सीवियर निमोनिया में हो गया, तुरंत उसको भर्ती करना चाहिए।
1: अच्छा। और अगर कहीं किसी गांव में या कहीं जो किसी बच्चे को अगर ऐसा हो गया, निमोनिया था और तुरंत सांस रुक गई, तो दौड़ कर किसी जो नज़दीकी डॉक्टर मिले वहाँ जाना चाहिए।
2: उसमें कोशिश करना चाहिए हेल्थ सेंटर में नज़दीक में कि जो एक कोई भी एंटीबायोटिक हो वो इंजेक्शन लग जाए।
1: अच्छा।
2: और लगा के जो है, अगर ऑक्सीजन का प्रबंध है तो ऑक्सीजन के साथ भेजें, नहीं तो ऐसे भेज दें।
1: अच्छा, इस तरह से करें। तो इस तरह के जो संक्रमण के बाद जो बच्चा है जिसको ऐसा हुआ, वो इलाज के बाद पूरा ठीक हो जाता है?
2: वो पूरा ठीक हो जाता है
1: जी,
2: एकदम।

0: और भविष्य में किसी तरह की फिर आशंका रहती है क्या उसको?
1: जैसे इसके रोकथाम के उपाय के बारे में कह सकते हैं, तो हालांकि ये वायु जनित रोग है, लेकिन हैंड वॉश का प्रैक्टिस जो है ये बचाता है इससे।
0: अच्छा, इसको जरा ठीक से समझा दिया जाए।
1: हैंड वॉश का प्रैक्टिस तरह से कि जैसे कहीं गया वहाँ पर जी, उसने जो है कहीं पर छींका है या खांसा है तो वायरस वहाँ मौजूद है, आपने वहाँ हाथ रखा तो हाथ से में सट गया वायरस।
0: अच्छा।
1: फिर आप घर आए अपने बच्चे को लिया तो वो उसको पास हो सकता है।
0: अच्छा, तो इसलिए बड़ों को ये ध्यान रखना,
1: बड़ों को ये ध्यान रखना हैंड वॉश की प्रैक्टिस
0: जी।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आपने भेंट वार्ता सुनी। शिशुओं में फेफड़ों का संक्रमण। भेंट वार्ता का अर्थ है डॉक्टर नवजीवन और भेंटकर्ता कुसुमाकर दुबे। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। पेश है रामचरितमानस गान की अगली कड़ी। कलाकार हैं सुरेश वाडकर।

अयोध्या वासियों सहित राजा जनक के चित्रकूट से प्रस्थान करने की वेला आ पहुंची है। भरत के भक्ति तथा समर्पण भरे वचन सुनकर श्री राम गदगद हो गए। विदा करते हुए वो भरत को पावरी देना चाहते हैं, किंतु संकोच होता है। क्षणिक सोच विचार के पश्चात गुरुजन तथा बड़ों की उपस्थिति का संकोच त्याग कर उन्होंने भरत को अपनी चरण पादुका दे दी। भरत ने खड़ाओं की जोड़ी को सिर पर धारण किया।

रामचरितमानस गान आप सुन रहे थे। कलाकार थे सुरेश वाडकर। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। कार्यक्रम विवरण, इसमें सुनिए आज की सभा में प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। 7:00 से 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसमें आप सुन सकते हैं मौसम का मिजाज, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज का इतिहास, रसरंग, हिंदी वार्ता और फिल्म संगीत।

9:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नगमे नए पुराने। 9:30 पर बाल मंजूषा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। 10:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी। 10:30 पर लोकगीत का प्रसारण किया जाएगा, कलाकार होंगे चंद्रशेखर मिश्र। 11:00 आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का विशेष प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात मन की बात कार्यक्रम का संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। 12:05 पर विज्ञानवाणी कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 12:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर संगम आप सुनेंगे, कलाकार होंगे पंडित भजन सोपारी। 1:00 आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग, कलाकार होंगे मिथिलेश महाराणा। 1:30 पर अंगिका पत्रिका कार्यक्रम अंग दर्पण का प्रसारण किया जाएगा। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेलों पर आधारित। 3:00 आप सुन सकते हैं सामुदायिक गान एवं शिक्षा पाठ। संध्या 5:00 आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। 5:30 पर फिल्म संगीत का

0: श्रोताओं, आगे बढ़ते हुए सुनते हैं मौसम का मिजाज। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 31 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है एवं इसके साथ मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत तथा दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है और पूर्वानुमान की अवधि में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है।
1: बिजनेस को बढ़ाने के लिए

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

श्रोताओं, अब सुनिए नानक का ये भजन। कलाकार हैं ज्ञानी लक्ष्मण सिंह बेदी।

0: श्रोताओं, अब बारी है आज के इतिहास के बारे में जानने की। 1577 में मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का जन्म हुआ आज ही के दिन। 1725 में मराठा साम्राज्य की महान शासक और वीरांगना अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ। 1774 में भारत में पहला डाक सेवा कार्यालय कलकत्ता यानी आज का कोलकाता में खोला गया। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा स्वीकृत और संशोधित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को अंगीकार किया गया। 1977 में भारतीय सेना के एक दल ने पहली बार विश्व के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कंचनजंगा पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की और विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं अगले स्तंभ की ओर। हिंदी वार्ता कार्यक्रम, इसमें सुनिए वार्ता स्वच्छता एक सामाजिक जिम्मेदारी। वार्ताकार हैं गणेश प्रसाद झा।
1: स्वच्छता पवित्रता का ही दूसरा नाम है। स्वच्छता की दूसरी ईश्वरता कहते हैं इसे। स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, भगवत प्रेम के बाद महत्व की दृष्टि से दूसरा स्थान स्वच्छता के प्रेम का ही है। स्वच्छता आत्मा को, शरीर को, अपने इर्द गिर्द के वातावरण को और फिर पूरे समाज को पवित्र बनाने की क्रिया का नाम है। स्वच्छता मन में उत्पन्न एक सात्विक और पवित्र विचार है और धरातल पर उसकी परिणति सफाई है। स्वच्छता 70% बीमारियों का नाश करती है और एक प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वच्छता ही स्वास्थ्य को पुष्ट करती है। कहा गया है कि ईमान ही जाता रहा तो धर्म रहा किस काम का, और स्वास्थ्य ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। स्वच्छता के बिना अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना नहीं कर सकते, और अच्छे स्वास्थ्य के बिना शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क नहीं हो सकता। विचार करने पर हम पाते हैं कि स्वच्छता अकेले का विषय नहीं, जमात का विषय है, जिसे सामूहिक या सामाजिक विषय कह सकते हैं। स्वच्छता एक सामाजिक जिम्मेदारी का भी विषय है। यह सबके लिए और सबका विषय है। स्वच्छता को अकेले लेकर हरगिज नहीं चला जा सकता। अकेले लेकर चलने से हमारी कोठरी तो साफ हो सकती है, पर हमारा आस पड़ोस साफ नहीं हो सकता। हमें इसे सामूहिकता प्रदान करनी ही होगी, समाज को साथ लेकर चलना ही होगा। इसी सामूहिकता से स्वच्छता हमारी दहलीज से बाहर निकलेगी और इसकी यात्रा से एक अभियान का सृजन होगा। दहलीज से बाहर निकली इस स्वच्छता की निरंतर यात्रा से यह टोलों, गांवों, कस्बों, शहरों और राज्यों से गुजरती हुई पूरे देश और फिर पूरे विश्व को स्वच्छ बनाएगी। यह सब होने पर ही इसे हम अभियान कह सकेंगे। स्वच्छता के बिना आरोग्य की कामना नहीं की जा सकती। स्वच्छता ही अच्छी सभ्यता और संस्कृति की निशानी है। आज विश्व में मृत्यु दर में हो रही वृद्धि स्वच्छता नहीं होने के कारण ही है। स्वच्छता का मतलब घर आंगन, कपड़ा लत्ता, शरीर, खान पान, चौक चौराहे, रास्ते, गलियां, सड़क नाले, शौचालय, कुएं, तालाब और दूसरे जल स्रोत, सभी प्रकार के कार्यालयों और संस्थानों की तथा बस पड़ावों और रेलवे स्टेशनों की सफाई रखने के साथ साथ शुद्ध विचार रखना भी है। यानी स्वच्छ हवा,

0: स्वच्छ जल और स्वच्छ वातावरण का निर्माण ही वास्तव में स्वच्छता की निशानी है। गांधीवादी विचारक और पर्यावरणविद प्रमोद कुमार सिंह कहते हैं कि सरकार का स्वच्छता मिशन कार्यक्रम बिना आम जनता के सहयोग के संभव नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि पूर्ण स्वच्छता तभी संभव है जब हर एक आदमी भंगी बन जाए, यानी सरकार की सहभागिता के साथ साथ राष्ट्र के एक एक व्यक्ति के स्वच्छता के कार्यक्रम में लग जाने पर ही पूर्ण स्वच्छता हासिल की जा सकती है, क्योंकि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। देश में 7,20,000 से भी अधिक गांव हैं। हर एक घर के लिए सरकार बेहतर की व्यवस्था नहीं कर सकती और नगर निगम की पहुंच भी हर घर तक नहीं बनाई जा सकती, यह संभव ही नहीं है। इसलिए पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम में हर एक आदमी का योगदान आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। शहरों में जबकि नगर निगम की व्यवस्था है, फिर भी शहरों और महानगरों में दुर्गंध देता हुआ वायु और जल को प्रदूषित करता हुआ कूड़े का अंबार देखने को मिलता है, क्योंकि वहां स्वच्छता का कार्यक्रम नगर निगम के कर्मचारियों तक ही सीमित है और आम जनता इससे दूर है। गांधीवादी प्रमोद जी इस पर कहते हैं कि यहां पर गांधी का फार्मूला लागू नहीं होता, इसलिए शहर में भी पूर्ण स्वच्छता हर एक परिवार के सदस्य के सहयोग के बिना संभव प्रतीत नहीं होता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी किताब मेरे सपनों का भारत में लिखा है कि जनता को गांव में ही रहना है, शहरों में नहीं, झोपड़ियों में रहना है, महलों में नहीं। करोड़ों लोग शहरों या महलों में कभी एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक नहीं रह सकते। गांधी जी ने एक गांव को मॉडल बनाकर सभी आधारभूत संस्थाओं से फलीभूत करके भारत के सभी गांवों को मॉडल बना देने का सपना देखा था, जिससे स्वच्छता कार्यक्रम को एक नई दिशा मिलती। लेकिन राष्ट्रपिता के जाने के बाद अब लगता नहीं है कि ऐसा कभी हो पाएगा। बापू का यह सपना पूर्ण स्वच्छता एवं पूर्ण वातावरणीय शुद्धता के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी प्रतीत होता है। गांव में हमें कूड़े कचरे का अंबार देखने को नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो घर के रसोई की राख और घरेलू बुहारन जो किसानों के खेतों में जाकर खाद बन जाता है। गांव में कहीं भी शहर की तरह गंदगी देखने को नहीं मिलती। गांव में अधिकांश नाले कच्चे होते हैं, जिस कारण नालों के पानी का जमीन में डिस्चार्ज हो जाता है और इस तरह गंदा पानी नदियों तक नहीं पहुंच पाता। इससे सड़ांध और दुर्गंध भी नहीं होता और नदी का जल भी प्रदूषित नहीं होता। थोड़ी थोड़ी गंदगी अगर होती भी है तो प्रकृति उसे खुद ब खुद नष्ट कर देती है। स्वच्छता के संदर्भ में आज एक बड़ी समस्या है पॉलीथीन की, जो कभी नष्ट न होने वाली थैलियों की है। ये थैलियां सुविधाजनक तो हैं, पर ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये थैलियां शहरों के नालों में जम जाती हैं और जल को अवरुद्ध करती हैं, खासकर बरसात में, जिससे नालों की गंदगी और गंदा पानी शहरों और महानगरों में फैल जाता है। इससे जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और वायु प्रदूषण होता है। खान पान का सामान, प्लास्टिक की थैलियां या पैकिंग में काम आने वाली चीजें, जिससे कचरे की यह समस्या और भी गंभीर हो गई है। यह समस्या अब गाँव में भी बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है, जो लगभग 2 दशक पहले बिल्कुल ही नहीं थी। इसलिए पॉलीथीन के निर्माण पर सरकार को देश भर में रोक लगाने का कानून बनाना चाहिए, ताकि पॉलीथीन की जगह पहले की तरह कागज की ठोंगों का इस्तेमाल हो सके। महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस जगह शरीर सफाई, घर सफाई और ग्राम सफाई हो तथा युक्ताहार और योग्य व्यायाम हो, वहां कम से कम बीमारियां होती हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का स्वच्छता का नारा महात्मा गांधी जी के मेरे सपनों का भारत का भी एक सपना है, और प्रधानमंत्री जी का यह सराहनीय कदम है। गांधीवादी विचारक प्रमोद कुमार सिंह कहते हैं कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम में मैला सफाई यानी स्वच्छता के एक कार्यक्रम पर कहा था, मैला सफाई एक अच्छा और धार्मिक काम है। अब तो यह काम हमारा दैनिक काम बन जाएगा, इसलिए जिन्हें यह पसंद न हो वे आश्रम को छोड़कर जा सकते हैं। महात्मा गांधी अपनी टोली के साथ जहां कहीं भी जाते थे, अगर कहीं उन्हें गंदगी दिखाई देती थी तो वे खुद ही साफ करने के लिए भिड़ जाते थे। यानी गांधी जी हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता का यह संदेश देना चाहते थे कि तुम भी मेरी तरह बनो और गंदगी को पूरे हिंदुस्तान से विदा कर पूरे हिंदुस्तान में स्वच्छता, पर्यावरण शुद्धता लाओ, जिससे हर व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो सके। प्रमोद जी कहते हैं कि एक बार डरबन में कस्तूरबा बाई और गांधी जी के बीच पेशाब को उठाने और फेंकने पर विवाद हुआ, जिसमें कस्तूरबा बाई का कहना था कि आप मेरे पति हैं, आपका मूत्र और पैखाना मैं उठाकर फेंक सकती हूँ, लेकिन दूसरे का नहीं। इस पर गांधी जी बहुत कठोर हो गए और कस्तूरबा बाई को घर से बाहर ले जाने लगे। इससे यह साबित होता है कि बापू स्वच्छता को कितना महत्व देते थे और यह स्वच्छता का एक आदर्श नमूना है। इससे हिंदुस्तान के हर नर नारी को शिक्षा लेनी चाहिए कि पूर्ण स्वच्छता मिशन की कामयाबी की ओर अग्रसर होना चाहिए। स्वच्छता के बिना अच्छी सभ्यता, अच्छी संस्कृति, अच्छा स्वास्थ्य, शुद्ध पर्यावरण और 70% रोग मुक्त विश्व की कल्पना नहीं की जा सकती। माननीय प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपिता गांधी के इन फार्मूलों को अपनाकर भारत के हरेक व्यक्ति तक उनके स्वच्छता कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाकर और उन्हें उत्प्रेरित कर स्वच्छता का पूर्ण या पूर्ण स्वच्छता के पक्ष पर आरूढ़ होकर युग का जुआ उनके कंधों पर रखना होगा, और तभी भारत और संपूर्ण विश्व स्वच्छ भारत और स्वच्छ विश्व बन पाएगा, यानी पूर्ण स्वच्छता संभव हो पाएगा।
1: श्रोताओं, आपने वार्ता सुनी स्वच्छता एक सामाजिक जिम्मेदारी। वार्ताकार थे गणेश प्रसाद झा, हिंदी वार्ता कार्यक्रम के अंतर्गत। अब बारी है फिल्म संगीत की, तो सुनिए फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत समीर के हैं और संगीत रचना नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, आगे बढ़ते हुए सुनते हैं रेल सूचना। भागलपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों की सूचना। रेलवे स्टेशन भागलपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार गाड़ी संख्या 15553 भागलपुर से चलकर जयनगर को जाने वाली भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 7:50 पर अपने सही समय से भागलपुर से जाएगी। गाड़ी संख्या 13016 जमालपुर से चलकर हावड़ा को जाने वाली हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 7:45 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 12368 आनंद विहार से चलकर भागलपुर को आने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 8:15 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 15658 कामाख्या से चलकर दिल्ली को जाने वाली ब्रह्मपुत्र मेल, ये गाड़ी सुबह 8:05 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 53416 जमालपुर से चलकर साहेबगंज को जाने वाली जमालपुर साहेबगंज पैसेंजर, ये गाड़ी सुबह 8:37 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 22311 गोड्डा से चलकर लोकमान तिलक तक जाने वाली गोड्डा लोकमान तिलक सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 8:35 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 13403 रांची से चलकर भागलपुर को आने वाली वनांचल एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 9:00 अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 63431 साहेबगंज से चलकर जमालपुर को जाने वाली साहेबगंज जमालपुर मेमो, ये गाड़ी सुबह 9:15 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 13409 मालदा से चलकर क्यूल को जाने वाली मालदा क्यूल इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 9:35 पर अपने सही समय पर भागलपुर को आएगी। गाड़ी संख्या 13241 बांका से चलकर राजेंद्र नगर को जाने वाली बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 10:15 पर अपने सही समय से भागलपुर को आएगी। और गाड़ी संख्या 12367 भागलपुर से चलकर आनंद विहार को जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस, ये गाड़ी सुबह 11:55 पर अपने सही समय पर भागलपुर से जाएगी।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम।
2: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
4: क्या
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
7: रंग फिल्म का गीत सुनिए अलका याग्निक कुमार सानू और पी सुनंदा की आवाजों में।

0: श्रोताओं, अब बारी है समाचार पत्रों की सुर्खियों की। एक देश एक चुनाव 2029 से पहला चरण, 2034 तक पूरा चक्र। आईपीएल 19 खिताबी जंग, सर्वाधिक विकेट लेने वालों के बीच। फ्रेंच ओपन, 19 वर्षीय खिलाड़ी ने जोकोविच को हराया, प्री क्वार्टर में कोई चैंपियन नहीं। सिंगापुर ओपन, सात्विक चिराग लगातार दूसरे फाइनल में। और एशियन गेम्स की संभावित क्रिकेट टीम में वैभव शामिल।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

0: Akashvani at 90.
1: अब सुनिए फिल्म साजन का ये गीत अलका याग्निक की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत रचना है नदीम श्रवण का।

0: सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
4: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे क्रमशः समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज, खबरनामा हमारे दिल्ली केंद्र से और 8:48 पर प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: हमारी सेनाओं ने

0: निगाहों में दुबक कर बैठ गई।
1: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
3: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस थे जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ

0: पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
1: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
2: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
1: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान

0: हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
1: बहरिया के सरबरा एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहने, दूर तक कार्रवाई करने और जंग से बाज रखने की अपनी सलाहियत का भरपूर मुजाहरा किया। म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग एलैंग कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। इस मौके पर उमूर खारजा के वजीर मुमलिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। इससे पहले म्यांमार के सदर अपने 5 रोजा भारत दौरे पर कल बिहार के बोधगया पहुंचे और महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कल शाम जनाब लियांग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने देरीना दोतरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के तहत म्यांमार के सदर के मुस्बत रुझान की तारीफ की। म्यांमार के सदर कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे, जहां दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और सकाफती राब्तों को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादले ख्याल किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाजों की ईंधन की बरामदात पर आयात होने वाले महसूलात पर नजरसानी की है। इस कदम का मकसद मगरबी एशिया के बुहरान की वजह से जारी गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की खातिरख्वाह घरेलू दस्तियाबी को यकीनी बनाना है। मजीद तफसील हमारे नामानिकार से।
2: वजारत मालियात की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की बरामद पर 1.5 रुपया फी लीटर और डीजल की बरामद पर 13.5 रुपये फी लीटर की ड्यूटी आयद होगी। हवाई जहाज के ईंधन पर बरामदाती ड्यूटी 9.5 रुपये फी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत मालियात ने वाजे किया कि खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी और सड़क बुनियादी ढांचा सेस पर मुश्तमिल बरामदाती लेवीज, जिन्हें इस साल 27 मार्च को मुतारिफ कराया गया था, का खाम तेल, पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन की औसत बैन अल-अक़वामी कीमतों की बुनियाद पर हर 15 दिन बाद जायजा लिया जाता है। ताहम हुकूमत ने वाज़े किया कि घरेलू खपत के पेट्रोल और डीजल की मौजूदा एक्साइज ड्यूटी में कोई तब्दीली नहीं की गई है। नजरसानीशुदा ड्यूटीज का कल से इतलाक होगा, जो अगले 15 दिन तक नाफिज रहेंगी। नई दिल्ली से विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: सरकार ने कपास की दरामद को अगले महीने की पहली तारीख से इस साल 31 अक्टूबर तक कस्टम्स ड्यूटी से आरजी तौर पर मुस्तस्ना कर दिया है। एक नोटिफिकेशन में टेक्सटाइल्स की वजारत ने कहा है कि कपास के किसानों और कपास से मुतालिक पूरी वैल्यू चेन के मफाद को मलहूज खातिर रखते हुए यह फैसला किया गया है। इसमें कहा गया है कि अब जबकि कपास का सीजन नहीं है, तो इस कदम पर अमल दरामद से टेक्सटाइल सनत के लिए कपास की मुनासिब दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सकेगा, MSME इदारों की मदद हो सकेगी, लागत को इतदाल पर लाया जा सकेगा और भारतीय टेक्सटाइल्स की मुसाबिकत को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। वजारत ने जोर देकर कहा है कि इस इकदाम से किसानों के मफादात का तहफ्फुज होगा और मार्केट में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकेगा। आज तंबाकू नोशी मुखालिफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद तंबाकू के इस्तेमाल के खतरात के तई बेदारी पैदा करना है। यह दिन तंबाकू के इस्तेमाल के खात्मे के लिए आलमी इदारे सेहत WHO की आलमी पहल है। इस साल के तंबाकू नोशी मुखालिफ दिन का उन्वान है निकोटीन और तंबाकू की लत से निमटना। पेश है एक रिपोर्ट।
2: तंबाकू नोशी मुखालिफ दिन मनाए जाने के हिस्से के तौर पर मरकजी सेहत सेक्रेटरी पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने जुमे के रोज नई दिल्ली में तंबाकू से पाक तालीमी इदारों टॉफी ऐप का पायलट वर्जन लॉन्च किया। इस ऐप का मकसद मुल्क के स्कूलों और कॉलेजों में तंबाकू मुखालिफ जाब्तों की निगरानी और निफाज को मुस्तहकम करना है। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मोहतरमा श्रीवास्तव ने कहा कि मुल्क भर के अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, आयुष इदारों और दीगर सेहत देखभाल मराकज में 2000 से ज्यादा तंबाकू नोशी मुखालिफ मराकज कायम किए गए हैं। नई दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम नस्ब किए जाने की सताइश की है। उन्होंने कहा कि स्काई कास्ट जैसे जदीद मौसमियाती निजाम कोहरे और खराब मौसमी हालात के दौरान परवाजों की कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं। जनाब नायडू ने मजीद कहा कि इस टेक्नोलॉजी को मुल्क भर के मजीद हवाई अड्डों तक तोसी दी जाएगी, जिससे मुसाफिरों के सफरी तजर्बे को मजीद बेहतर बनाया जा सकेगा और सेफ्टी में इजाफा होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब पीने के सानेहे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है। मरने वालों में 7 अफराद का ताल्लुक पुणे शहर से और 14 अफराद का ताल्लुक पेचरी, चिंचोड़ और उर्वली कंचन इलाकों से है। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंपी गई है। इस मामले में बड़ी इंतजामी कार्रवाई करते हुए 22 अहलकारों को अपने फराइज के अंजामदही में मुबैना तौर पर लापरवाही बरतने पर मौतल कर दिया गया है। मौतल किए गए अहलकारों में 9 पुलिस अहलकार और रियासती आबकारी महकमे के 13 अफसरान शामिल हैं। जम्मू कश्मीर की वजीर सकीना इट्टू ने जम्मू डिवीजन के समर जोन के तहत आने वाले सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में 1 जून से 15 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया है। मोहतरमा इट्टू ने कहा कि जारी मौसम गर्मा के तनाजुर में यह फैसला लिया गया है ताकि तलबा तदरीसी अमले और कॉलेज अमले की बेहतरी को यकीनी बनाया जा सके। कौमी सेहत अथॉरिटी की जानिब से नाफिज करदा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मुल्क भर में 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स आभा का तारीखी संगे मेल हासिल किया गया है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि एक मरबूत मुश्तरका तरीकेकार और शहरियों पर मरकूज डिजिटल सेहत इको निजाम की जानिब भारत के सफर में ये एक अहम पेशरफ्त है। वजारत ने कहा है कि 2021 में 14 करोड़ से ज्यादा आभा अकाउंट्स की तादाद बढ़कर इस साल 90 करोड़ हो गई है। आलमी इदारे सेहत WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गेब्रियासिस ने जमहूरिया कांगो और युगांडा में इबोला की वबा फूट पड़ने के बाद सफरी पाबंदियां आयद करने या अपनी सरहदें बंद कर देने वाले ममालिक से इन इकदाम पर दोबारा गौर करने की अपील की है। जनाब गेब्रियासिस का कहना है कि इस तरह के इकदाम बीमारी से निमटने की कोशिशों में रुकावट बन सकते हैं। मशरकी कांगो के बुनिया में इजहार ख्याल करते हुए जनाब गेब्रियासिस ने कहा कि बुनिया के उनके दौरे का मकसद मुतासर बरादरियों के साथ सीधे तौर पर मसरूफ अमल होना है और सबसे ज्यादा मुतासर इलाकों में बीमारी से निमटने की कोशिशों को मुस्तहकम करने में मदद करना है। जमहूरिया कांगो के सेहत हुकाम ने 900 से ज्यादा मुश्तबा इबोला मामलों में 200 से ज्यादा मुश्तबा अमवात रिपोर्ट की हैं। वहीं पड़ोसी युगांडा ने राजधानी कंपाला में नए इन्फेक्शन समेत मजमुई तौर पर 9 मामलों की तस्दीक की है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में भी कल तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मशरकी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ मकाम पर आज छींटे पड़ने के साथ झालाबारी भी हो सकती है। वहीं दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ मकाम पर कल तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ आंधी चलने का इम्कान है। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने कोंकण और गोवा में आज मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान जाहिर किया है। मौसमियाती एजेंसी ने अगले 2 दिन के दौरान राजस्थान के मुख्तलिफ मकामात पर धूल भरी आंधी चलने की भी पेशगोई की है। केरलम में शदीद बारिश के इम्कान के तहत 6 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिनों के दौरान रियासत में कहीं कहीं शदीद बारिश और 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। अलबत्ता केरलम में बाजाब्ता तौर पर मानसून की आमद का ऐलान नहीं किया गया है। IPL क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2026 सीजन के फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच खेला जाएगा। RCB ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया है और 3 दिन के वक्फे के बाद फाइनल में दाखिल हो रही है। टूर्नामेंट की मजबूत तरीन उनकी बल्लेबाजी रही है जिसमें विराट कोहली की कारकर्दगी नुमाया रही है, जबकि गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड नई गेंद के साथ टीम के अहम खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं। दूसरी जानिब शुभमन गिल की क्यादत में गुजरात टाइटंस ने लीग मरहले में टॉप 2 में जगह हासिल की और क्वालिफायर 1 में शिकस्त के बाद वापसी करते हुए फाइनल में अपनी जगह बना ली। टीम एक बार फिर अपने अहम बल्लेबाजों गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर पर इन्हिसार करेगी, जबकि ऑलराउंडर जैसन होल्डर ने सीजन के दूसरे हिस्से में अहम विकेट्स लेकर गेंदबाजी को और मजबूत किया है। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। खातीन के क्रिकेट में कल रात ब्रिस्टल में T20 बैन अल्कौमी क्रिकेट सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 20 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज अब 1-1 मैच से बराबरी पर है। बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन के फाइनल में आज भारत के मर्दों की डबल्स की जोड़ी सत्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर अल्फियान से होगा। फुटबॉल में पेरिस सेंट जर्मेन ने कल रात बुडापेस्ट में होने वाले फाइनल

0: में आर्सेनल को पेनल्टी शूट आउट में 3-4 से शिकस्त देकर यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब हासिल कर लिया है। और अब अखबारात के आईने के साथ है तौहीद हक्कानी।
1: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने ज़रात और किसानों की फलाह और देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को सुर्खी के साथ पेश किया है कि मुल्क भर में खेत बचाओ मुहिम 1 जून से चलाई जाएगी। जबकि रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन के इस बयान को पहले सफ़े पर जगह दी है कि तरक्की याफ्ता भारत 2047 मुल्क के हर शहरी का ख्वाब होना चाहिए। मगरबी एशिया के बहरान के दरमियान भारत की मीशत मजबूत मगर एहतियात ज़रूरी। वजारत ख़जाना के इस बयान के साथ रोजनामा इनकलाब ने लिखा है कि वजारत ख़जाना ने मुख्तलिफ माशी इशारों की बुनियाद पर भारत की मीशत के करीबी मुस्तकबिल को मजबूत करार दिया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। म्यांमार के सदर यूमिन ओंगलियांग अपने 5 रोजा भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने गया के महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। मरकजी हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल डीजल और हवाई जहाजों के ईंधन की बरामदात पर आयद होने वाले महसूलात को नोटिफाई कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने केरला माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आईपीएल क्रिकेट 2026 के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और इसके साथ ही खबरनामा
2: आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। आज के इस अंक में आप सुन सकेंगे हिंदी साहित्य का आधुनिक स्वरूप विषय पर परिचर्चा। प्रतिभागी हैं वरिष्ठ कथाकार और संपादक श्री बलराम, वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर राजवंती जाखड़ और वरिष्ठ लेखिका और प्राध्यापक डॉक्टर प्रज्ञा। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर राकेश।
3: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम और विचारों के इस खुले मंच पर मैं हूँ आपकी इस साहित्यिक यात्रा का सहयात्री प्रोफेसर राकेश कुमार। श्रोताओं, साहित्य केवल कागज पर उकेरे गए शब्द या कोरी कल्पनाओं की उड़ान नहीं होता, वह अपने समय के समाज की धड़कन, उसकी बेचैनी, उसके अंतर्विरोधों और उसके सपनों का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज होता है। साहित्य दरअसल वह आईना है जिसमें एक युग अपनी शक्ल देखता है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह सीधे हमारी भाषाई और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हुआ है और वह विषय है हिंदी साहित्य।
0: तक के लिए पेट्रोल डीजल और हवाई जहाजों के ईंधन की बरामदात पर आयद होने वाले महसूलात को नोटिफाई कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने केरला माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आईपीएल क्रिकेट 2026 के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और इसके साथ ही खबरनामा
4: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
7: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है,
6: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया, नया शुल्क कल से लागू। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 2 IAS अधिकारी योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा को किया निलंबित। और मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सिवान, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण सहित राज्य के 12 जिलों में आंधी बारिश का जारी किया अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार विशेष निगरानी इकाई से प्राप्त प्रवर्तन निदेशालय के दस्तावेजों के आधार पर अनुचित लाभ लेने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। निलंबित अधिकारियों में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक योगेश कुमार सागर तथा वर्तमान में जीविका की अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्यरत अभिलाषा कुमारी शर्मा शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही जारी रहेगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि निष्पक्ष और सही मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला होती है। आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित कानूनी परामर्शदाताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बूथ स्तर के अधिकारियों और बूथ स्तर के एजेंटों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे मतदाता सूची को सही और अद्यतन रखने में अहम योगदान देते हैं। श्री कुमार ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव का भी उल्लेख किया और कहा कि इन राज्यों में कड़ी चुनावी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। उन्होंने देश भर की अदालतों में निर्वाचन आयोग का पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं और कानूनी परामर्शदाताओं के समर्पण और मेहनत की सराहना की। लोक भवन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों में एक रूपता लाने के उद्देश्य से यूनिफॉर्म अकादमिक कैलेंडर जारी किया है। इसके तहत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए अब एक समान शैक्षणिक कैलेंडर लागू होगा। नामांकन से लेकर परीक्षा तक की सभी प्रक्रियाओं की तिथियां निर्धारित रहेंगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने सभी विश्वविद्यालयों को इस कैलेंडर का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में शैक्षणिक कैलेंडर से विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 जुलाई से होगी, जबकि नामांकन की और पंजीकरण की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी कर ली जाएगी। इस पहल का उद्देश्य उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए दूसरी चयन सूची जारी कर दी है। प्लस टू विद्यालयों में सत्र 2026-28 के लिए चयनित विद्यार्थियों को 2 जून तक अपने आवंटित विद्यालयों में नामांकन कराना अनिवार्य होगा। समिति ने कहा है कि नामांकन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की ओर से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल कल से सक्रिय की जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन तथा पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता और विद्यार्थियों को सुविधाजनक सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्सटेंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, गोपालगंज, सिवान, सारण, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण सहित राज्य के कई क्षेत्रों में आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है।
5: दिनांक 31 मई राज्य के पश्चिमी और दक्षिण मध्य भागों के जिलों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।

0: इधर प्रदेश के कई भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पटना सहित राज्य के अधिकांश जिलों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की संभावना है। पटना के दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंट सेंटर में आज अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन किया गया। 24 सप्ताह के कठिन सैन्य प्रशिक्षण के बाद 1025 अग्निवीर जवान औपचारिक रूप से भारतीय सेना में शामिल हो गए। परेड के दौरान अग्निवीरों ने देश सेवा, अनुशासन और समर्पण की शपथ ली। इस अवसर पर विभिन्न धर्मगुरुओं द्वारा अग्निवीरों को गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब पर हाथ रखकर राष्ट्र सेवा के प्रति निष्ठा और समर्पण की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में बिहार रेजिमेंट सेंटर के कमांडिंग ऑफिसर तथा समीक्षा अधिकारी मेजर जनरल जय सिंह बैसला सेना मेडल ने परेड की सलामी ली। गोपालगंज की MPML अदालत ने जदयू विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर लगी रोक की सीमा 5 जून तक बढ़ा दी है। न्यायालय ने एक अन्य अभियुक्त भोजपुरी गायक गुंजन सिंह को भी 5 जून तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों जिले के सिमराव गांव में एक कार्यक्रम के दौरान प्रतिबंधित हथियार प्रदर्शन करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भोजपुर पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग से करोड़ों रुपए गबन करने के मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस सिलसिले में ग्रामीण बैंक के 3 खातों से लगभग 8 करोड़ रुपए के लेन देन की जांच की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने विभिन्न बैंकों के 19 पासबुक समेत कई दस्तावेज बरामद किया है। इधर अररिया में भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस छापामारी अभियान में फरार अपराधियों और मादक पदार्थ के तस्कर सहित 41 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से 27 मई को गयाजी शहर के 10 केंद्रों पर भी दरोगा बहाली मुख्य परीक्षा में मोबाइल के जरिए चोरी कराने वाले गिरोह का उजागर किया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में गयाजी के रामपुर थाना क्षेत्र के शिव मंदिर के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। रोहतास जिले की पुलिस ने धौड़ाद थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुए लूटकांड के मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बक्सर जिले की पुलिस ने केसठ पुरानी बाजार चिमनी मोहल्ला के पास से 2 युवकों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। इधर विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कटिहार में आयोजित बिहार राज्य अंडर 13 शतरंज प्रतियोगिता में पटना के देवांश केसरी शीर्ष पर चल रहे हैं। इस प्रतियोगिता में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी देवांश ने मुजफ्फरपुर के सिद्धार्थ शांडिल्य को पराजित कर 5.5 अंकों के साथ बढ़त प्राप्त की है। IPL क्रिकेट की फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। एक रिपोर्ट।
1: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर IPL 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर RCB को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला IPL खिताब जीतने वाली RCB ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष 2 में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि IPL 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी।
0: अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज की सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है सरकारी

में भ्रष्टाचार मामलों में आईएएस योगेश अभिलाषा सस्पेंड। अखबार लिखता है रिश्वत कमीशन और अनुचित लाभ लेने का आरोप। दैनिक जागरण का

0: राबड़ी बोली फोर्स भेजकर बंगला खाली करवा लें, कुछ देर बाद ही पुलिस पहुंची। आज अखबार ने मौसम से जुड़ी खबर को अपनी लीड बताते हुए लिखा है, बिहार में कल 5 डिग्री चढ़ेगा पारा। राष्ट्रीय सागर का शीर्षक है, राज्य भर से मिले आवेदनों की निगरानी के लिए विशेष पोषाल का हुआ गठन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया, नया शुल्क कल से लागू। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 2 IAS अधिकारी योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा को किया निलंबित। और मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सिवान, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण सहित राज्य के 12 जिलों में आंधी बारिश का जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: June 8, 1936. A voice echoed across the waves.
1: Ye Akashvani.
0: That voice became a lifeline, a storyteller.
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नगमे नए पुराने। आरंभ में सुनिए फिल्म सनम का ये गीत, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। गीत समीर के हैं और संगीत रचना आनंद मिलिंद का।

0: 90.
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.

AIR at 90. शकील बदायनी के लिखे गीत को सुनिए। संगीत रचना है रवि का, फिल्म है दो बदन, आवाज मोहम्मद रफी की।

धड़कन फिल्म का गीत सुनिए, अलका याग्निक और साथी की आवाजों में। गीत समीर के हैं और संगीत नदीम श्रवण का।

जिगरी दोस्त फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम नगमे नए पुराने, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बाल मंजूषा।

0: जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।
0: बच्चों आज के बाल मंजूषा कार्यक्रम के साथ उपस्थित है आपकी दीदी अर्चना
1: और आपका मित्र अमन।
0: तो बच्चों आरंभ करते हैं आज का ये कार्यक्रम और हर बार की ही तरह आज भी बच्चों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अमृत वाणी से। बच्चों वाणी यानी मनुष्य के कुछ बोलते ही ज्ञात हो जाता है कि उसके आचार विचार कैसे हैं, संस्कृति कैसी है। वस्तुतः मनुष्य की वाणी उसके व्यक्तित्व का आईना होती है। मनुष्य की वाणी मधुर होनी चाहिए जो स्वयं को और दूसरे को कष्ट ना पहुंचाए। कहा भी गया है कि गोली का घाव भर जाता है लेकिन बोली का घाव कभी नहीं भरता। अच्छी भाषा के प्रयोग से बिगड़ते कामों को बनाया जा सकता है किंतु यदि आपका काम जहाँ पर आसानी से बन रहा हो, आपकी वाणी करवाहट भरी हो, तो वहाँ पर काम में सैकड़ों रोड़े अटक जाएंगे और संभव है कि वह हो ही नहीं पाएगा। जयशंकर प्रसाद ने कहा कि आपकी शीतल वाणी सुनने वाले को चाहे वह कितना ही कठोर क्यों ना हो भी शीतल कर देती है। इसलिए मनुष्य की ऐसी वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए जिससे किसी के हृदय पर आघात ना हो। एक छोटा सा प्रसंग आप सबको सुनाती हूँ। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति को किसी कार्यवश एक गांव में जाना पड़ा। उसके गांव में पहुंचने से पहले अंधेरा होने लगा। उसने विश्राम के उद्देश्य से एक घर में आश्रय मांगा। घर की मालकिन ने उसे घर के आंगन में रुकने के लिए स्थान दे दिया। वह मालकिन से बोला कि आपका मकान बहुत सुंदर है परंतु कभी भूकंप आ जाए तो यह टूट फूट कर गिर भी सकता है। यह सुनकर मालकिन ने कहा, इसे छोड़िए, आप आराम कीजिए। थोड़ी देर बाद वह फिर बोला, आप इतनी मोटी हैं, आपके मरने के बाद आपको चार आदमी तो उठा ही नहीं पाएंगे। यह सुनकर भी मालकिन शांत भाव से बोली कि आप थके हुए हैं, आराम करें। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, आपके पति अभी तक नहीं आए, हो सकता है वह दुर्घटनाग्रस्त हो गए हो। तब मालकिन का धैर्य जवाब दे गया। उसने पास रखा लठ उठाकर उस व्यक्ति के सिर पर दे मारा। उसके माथे से खून बहने लगा लेकिन उसने उसे मार मार कर वहां से भगा दिया। उसके सिर से बहते खून को देखकर रहगीरों ने पूछा, अरे भाई क्या हो गया? वह व्यक्ति बोला कि कुछ नहीं, मेरी वाणी का रस बह रहा है। सीधी सी बात है कि उसकी अनुचित वाणी ने उसके बनते काम को भी बिगाड़ दिया। बच्चों मनुष्य की वाणी वह अचूक वाण है जिसका प्रभाव सुनने वाले की अंतरात्मा पर होता है। इसलिए अब यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह शब्दों के वाण किस प्रकार के चलाना चाहता है। यदि वह ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो सुनने वाले की आत्मा को तृप्त कर दे तो उसकी छवि सुनने वाले के मन पर अलग बनेगी, लेकिन यदि वह विषैले वाण छोड़ता है तो सुनने वाले पर ऐसे घाव होंगे जो जीवन भर किसी भी औषधि से नहीं भर पाएंगे और ना ही उन घावों की टीस कम हो पाएगी। तो बच्चों अब अमृत वाणी को हम यहीं विराम देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप हमेशा ऐसी वाणी का प्रयोग करेंगे जिससे किसी के हृदय पर आघात ना हो, और हमेशा शीतल वाणी का प्रयोग करेंगे जो किसी के लिए औषधि की तरह काम करेंगे। अमृत वाणी के बाद बच्चों अब चर्चा करते हैं नशे का स्वास्थ्य पर असर और विश्व तंबाकू दिवस पर। बच्चों जब भी समय करवट लेता है तो अच्छी चीज़ों के साथ कुछ बुरी चीज़ों का आना भी लाजमी होता है। भारत के साथ भी ऐसा ही हुआ। अच्छी चीज़ों के साथ मानसिक समस्याएं और नशे की आदत भी आए। यूं तो हमारे देश में बच्चों नशे की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी, लेकिन 1980 के दशक में जब बदलाव का दौर शुरू हुआ तो आधुनिकता के नाम पर नशे की आंधी चल पड़ी। अचानक और तेजी से आए इस बदलाव के प्रभाव में बच्चे और महिलाओं में कई प्रकार की समस्याओं का विस्फोट सा हो गया। कहते हैं कि एक बार किसी व्यक्ति को नशे की लत लग गई तो वह छोड़े नहीं छूटती। यह लत इंसान के विवेक को शून्य कर उसे जिम्मेदारियों का एहसास से दूर करा देती है। इंसान अपनी एक अलग दुनिया बना लेता है और उसी में जीने लगता है। बच्चों नशे की लत की समस्या 13 से 20 वर्ष के युवक युवतियों में सबसे अधिक देखी जाती है। कारण होता है बदलते हार्मोन्स के कारण व्यापक शारीरिक और मानसिक बदलाव। वैसे तो नशे की चपेट में आने की कोई उम्र नहीं होती, पर ज़्यादातर लोग इसी उम्र में नशा करना सीखते हैं। कई बार उन्हें गलत संगत मिल जाती है और कई बार वे सिर्फ जोखिम उठाने के इरादे से नशे के चंगुल में फंस जाते हैं। दरअसल इस उम्र का युवा हर काम को करके देखना चाहता है और नशे का आदी होकर देखते ही देखते अपना अस्तित्व ही खो बैठता है। कई बार परिवार की लापरवाही के कारण भी बच्चा अपनी इच्छा से नशे की तरफ बढ़ता है और कई बार उसे मजबूर भी किया जाता है। अकेलापन दूर करने की इच्छा या मानसिक आनंद के लिए भी नशे की शुरुआत होती है। नशे की सबसे बुरी बात यह है कि यह आपके दिमाग में जोश भर देता है। इसकी चाहत लगातार बढ़ती रहती है। जैसे पहले दिन एक सिगरेट पियेंगे, इससे मिलने वाला मजा कुछ पल के लिए ही रहेगा, फिर दो तीन लेना शुरू होगा और इसे चैन स्मोकर में तब्दील होने में समय भी नहीं लगेगा। बच्चों, आप सब सोच रहे होंगे कि आज हम आप सबों से नशे की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों प्रत्येक वर्ष हम 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस विश्व में तंबाकू के सेवन को कम करने वाली प्रभावी नीतियों की वकालत करने और तंबाकू के उपयोग से जुड़े स्वास्थ्य और अन्य जोखिमों को उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर तंबाकू के सेवन के विनाशकारी प्रभावों यानी मृत्यु और बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की स्थापना की। विश्व स्वास्थ्य सभा ने 1987 में संकल्प WHO 40.38 के माध्यम से 7 अप्रैल 1988 को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस घोषित किया। 1988 में संकल्प WHA 42.19 पारित किया, जिसमें 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में नामित किया गया। बच्चों, विश्व भर में प्रतिवर्ष लगभग 35 लाख हेक्टेयर भूमि पर तंबाकू की खेती की जाती है। तंबाकू की खेती के कारण होने वाली वार्षिक वनों की कटाई का अनुमान 2 लाख हेक्टेयर है। तंबाकू उत्पाद का पारिस्थितिकी तंत्र पर कहीं अधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मक्का की खेती और पशुपालन जैसी अन्य कृषि गतिविधियों की तुलना में तंबाकू के खेतों में मरुस्थलीकरण यानी जैविक उत्पादकता में कमी का खतरा अधिक होता है। इसके अलावा तंबाकू की खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भारी प्रयोग होता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और परिणामस्वरूप अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन घट जाता है। यदि तंबाकू को व्यावसायिक फसल के रूप में उगाया जाए तो गरीब और मध्यम आय वाले देशों में टिकाऊ खाद्य उत्पादन खतरे में पड़ सकता है। तंबाकू उत्पादन करने वाले सबसे बड़े देश क्षेत्रों में से अधिकांश यानी 90% निम्न और मध्यम आय वाले देश हैं, जिनमें से 4 देश निम्न आय वाले खाद्य कमी वाले देशों की श्रेणी में आते हैं। सभी परिस्थितियों को देखते हुए तंबाकू की खेती पर अंकुश लगाने और किसानों को अन्य खाद्य फसलों की खेती की ओर अग्रसर करने में सहायता करने के लिए तत्काल विधायी कार्रवाई की आवश्यकता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस का मुख्य उद्देश्य तंबाकू का सेवन करने वालों के बीच इसकी खेती, उत्पादन, वितरण, उपयोग और अपशिष्ट प्रबंधन सहित तंबाकू के संपूर्ण जीवन चक्र के प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करना, मूलभूत से उन्हें शिक्षित करना और इसे छोड़ने के लिए पर्याप्त कारण देना, साथ ही तंबाकू और धूम्रपान के सेवन से होने वाली बीमारियों और मृत्यु को समाप्त करना है। इस दिवस का यह उद्देश्य भी है कि तंबाकू कंपनियों द्वारा अपने उत्पाद के पर्यावरण के अनुकूल बताकर की जाने वाली धोखाधड़ी को उजागर करना और नीति निर्माताओं और सरकार से सख्त नीति और दिशा निर्देश बनाने और मौजूदा नीति को मजबूत करने का भी है, ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले तंबाकू उत्पादों के कचरे के लिए तंबाकू उत्पादकों को जिम्मेदार ठहराया जा सके। बच्चों, प्रत्येक वर्ष इस विशेष दिवस की एक खास थीम होती है। पिछले वर्ष यानी 2025 की थीम थी आकर्षण का पर्दाफाश, तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की चालों का पर्दाफाश। यह विषय तंबाकू और निकोटीन उद्योगों द्वारा अपने असुरक्षित उत्पादकों को आकर्षण बनाने के लिए अपनाई जाने वाली भ्रामक तकनीकों को उजागर करने और चुनौती देने पर केंद्रित थी, विशेषकर युवाओं के लिए। इस वर्ष यानी 2026 की थीम है आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला। यह अभियान ई सिगरेट और फ्लेवर वाले उत्पादों के माध्यम से युवाओं को निशाना बनाने वाली तंबाकू कंपनियों की भ्रामक रणनीतियों को बेनकाब करने पर केंद्रित है। साथ ही यह थीम युवाओं की सुरक्षा पर भी केंद्रित है। यह सोशल मीडिया और डिजिटल विज्ञापनों के माध्यम से होने वाली मार्केटिंग पर रोक लगाने के लिए मजबूत नीतियों की वकालत करना, जनता और विशेष रूप से किशोरों को इन उत्पादों के छिपे हुए खतरों के प्रति जागरूक करना और उन्हें व्यसन से बचाना है। तो इसी के साथ बच्चों, आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ाते हुए आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का।

0: इस प्यारे से गीत के बाद बच्चों अब सुनते हैं ये वार्ता। विषय है गर्मियों की छुट्टी कैसे बिताए। वार्ताकार है उमेश कुमार तिवारी। तो चलिए सुनते हैं इनकी ये वार्ता।
1: विद्यालय में गर्मी की छुट्टियों का इंतजार अभिभावक, माता पिता एवं बच्चे सभी समान रूप से करते हैं। यही समय होता है जब सभी अपनी अपनी भ्रमण योजना पूर्व से ही तैयार किए होते हैं। आजकल कुछ विद्यालयों में छुट्टियां हो चुकी है तो कुछ में होने वाली है। ग्रीष्माकाश में सभी अपने बच्चों के साथ सैर सपाटे में निकलते हैं तो कुछ लोग अपने सगे संबंधियों के पास मिलने जाते हैं। लेकिन यह समय केवल आराम करने का नहीं होता, बल्कि भविष्य को बेहतर बनाने, नई चीज़ों को सीखने, समझने एवं अनुभव प्राप्त कर अपने आप को विकसित करने का होता है। इस समय अवधि में छात्र अपने व्यक्तित्व, व्यवहार, कार्यकुशलता को विकसित कर स्वयं को एक सबल, सशक्त नागरिक बना सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि विद्यालय के अनुशासित एवं शिक्षाप्रद वातावरण से अलग होकर बच्चे स्वच्छंद एवं अनुशासन विहीन हो जाते हैं। माता पिता एवं अभिभावक उन्हें अनुशासन की पाठ पढ़ाते हैं। माता पिता और अभिभावक ऐसी चीज़ें या बातें नहीं सिखा पाते जिन्हें उनकी ज़रूरत होती है। बच्चों को लेकर सभी माता पिता या अभिभावक उतने तत्पर भी नहीं होते जितना उन्हें होना चाहिए। इसलिए कुछ उपयोगी बातों पर चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। ग्रीष्मावकाश की छुट्टियों का उपयोग कैसे करें, हम क्रमवाइज इस बात को समझते हैं। पहला, नियमित दिनचर्या। सामान्यतः बच्चे स्वेच्छाचारिता पसंद करते हैं, लेकिन ग्रीष्मावकाश का समय अच्छी आदतों के विकास करना भी है। इसलिए उन्हें अपने जीवन को एक नियमित दिनचर्या के अनुरूप ढालने की जरूरत होती है। इसको सूचीबद्ध इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठकर अपने बिस्तर को व्यवस्थित करें एवं नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं। व्यायाम या योग करें ताकि शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। पठन पाठन एवं खेल कूद के लिए समय निर्धारित करें। रात में समय से भोजन कर बिस्तर पर चले जाना चाहिए। दूसरा, अपने विषय की कमजोरियों को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। गणित, अंग्रेजी एवं विज्ञान के कंसेप्ट संप्रत्यय को समझकर प्रतिदिन अभ्यास करें। प्रतिदिन अभ्यास या पुनरावृत्ति से आत्मबल मजबूत होता है। सामान्य ज्ञान एवं करेंट अफेयर्स की पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने का नियमित प्रयास करें। तीसरा, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की आदत विकसित करें। बाल पत्रिकाएं, प्रेरणादायक महापुरुषों की कहानियां एवं जीवनी के अलावे आप धार्मिक, नैतिक एवं इतिहास की पुस्तकों का अध्ययन करने से जहां एक तरफ ज्ञान वृद्धि होगी, वहीं दूसरी तरफ आपके अंदर भाषा ज्ञान एवं कल्पना शक्ति का विकास भी होगा। ध्यान यह देना है कि अपने सहपाठियों की तुलना में अपने आप को कैसे बेहतर करें। चौथा, कला एवं कौशल का विकास। आज के समय में विषय वस्तु की जितनी भी आपको जानकारी क्यों न हो, आप तब तक रोजगार, नौकरी एवं जीवन के आवश्यक कार्य नहीं कर सकते जब तक आप तकनीकी ज्ञान न रखते हों। इसलिए आपको निम्न चीज़ों को सीखने की यह उत्तम अवसर होता है, जैसे कंप्यूटर, टाइपिंग, संगीत, नृत्य, ड्राइंग, सिलाई, कुकिंग, स्पोकन इंग्लिश आदि। क्योंकि यह युग डिजिटल युग है, बार बार डिजिटल इंडिया की बात टीवी या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा सुनने को मिलता है। आपके अंदर तकनीकी ज्ञान तो होना ही चाहिए। पांचवी बात है, परिवार के साथ समय बिताना एवं रिश्तों के महत्व को समझना। आपके घर दादा दादी, चाचा चाची एवं कई भाई बहन होंगे। पढ़ाई की नियमित दिनचर्या में आपको उनसे मिलने जुलने का समय बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन ग्रीष्मावकाश के समय में आप उनकी सहायता कर सकते हैं, उनके कार्यों में आप हाथ बटा सकते हैं, उनसे नई चीज़ें एवं अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, छोटे भाई बहनों को पढ़ा सकते हैं तथा उनके साथ मिलकर कोई यात्रा का लुत्फ़ उठा सकते हैं। विद्यालय की प्रतिदिन की भाग दौड़ से यह समय सुकून एवं उल्लास प्रदान करने वाला होता है। छठी बात, सामाजिक एवं नैतिक कार्यों में भागीदारी। विद्यार्थियों को चाहिए कि वह अपने अंदर सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करें। इसके लिए वे कई कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं, यथा नशा मुक्ति अभियान में भाग लेना, स्वच्छता अभियान प्रतियोगिता क्विज में भाग लेना, पेड़ लगाना तथा अपने घर की वाटिका की देखभाल करना, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी कार्य करना आदि हो सकते हैं। सातवीं बात हमें ध्यान देने की है कि मोबाइल और टेलीविज़न का सीमित उपयोग करें। आजकल यह देखने को मिलता है कि प्रत्येक घर परिवार में स्मार्टफोनों की संख्या परिवार के कुल सदस्यों से भी अधिक है। जहां देखें सभी स्वयं को कई सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं एवं हमेशा मोबाइल या टीवी से चिपके रहते हैं। वे सभी अपने कीमती समय को व्यर्थ ही बर्बाद करते हैं। माताएं एवं बच्चे कोई न कोई कार्यक्रम के इतने आदि हो जाते हैं कि सब कुछ भूलकर भी कार्यक्रम को जरूर देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि लगातार स्क्रीन के ऊपर नज़र गड़ाए रहने से कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे नज़रों का कमज़ोर होना, सिर दर्द, याददाश्त का कमज़ोर होना, मोटापा एवं गलत आदतों का विकास। यह अवकाश कुछ सीखने, अनुभव प्राप्त करने एवं कौशल विकसित करने का होता है, न कि समय बर्बाद करने का। इस समय का हम चाहें तो आनंदमय एवं बेहतर बनाने के लिए निम्न कार्य कर सकते हैं, जैसे माता पिता के कार्यों में उनकी सहायता करें, दादा दादी से अनुभव एवं उनके बचपन की बातों को जानें, पारिवारिक यात्राएं करें, छोटे भाई बहनों के साथ पढ़ें, पढ़ाएं एवं खेलें। आठवीं बात जानने योग्य है, स्वास्थ्य संबंधी बातों पर ध्यान देना। सामान्यतया विद्यालय जाने आने के क्रम में बहुत जल्दीबाजी रहती है, तड़के जगना, तैयार होना एवं जो भोज्य सामग्री उस समय उपलब्ध हो टिफिन में रख कर चल देना, इससे हमारा स्वास्थ्य उतना बेहतर नहीं रहता। तो अब छुट्टियों में हमें क्या करना चाहिए जिससे हम स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त कर सकें? अतः इसके लिए हमें कार्य करने होंगे। पहला, पौष्टिक भोजन लें, पैकेट बंद खाद्य पदार्थों से दूर रहें, ताज़ा एवं गर्म भोजन करें, हरी साग सब्जियां एवं फल खाएं। अंत में मैं आप सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहूँगा कि आप एक निश्चित लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कार्य जरूर करें, जैसे रोज 2 घंटे पढ़ाई करना, नई पुस्तकों पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करना, नए कौशल एवं अच्छे आदतों का विकास,

0: स्वास्थ्य पर ध्यान देना तथा सामाजिक रिश्तों को समझना एवं परिवार के साथ मिलकर रहना तथा उनसे अनुभव प्राप्त करना। निष्कर्ष यह है कि हम इस अवकाश का आनंददायक तरीके से लाभ उठाएं।
1: बच्चों, आप सबों ने अभी उमेश कुमार तिवारी भैया से वार्ता सुनी। वार्ता का विषय था गर्मी की छुट्टी कैसे बिताएं। इनकी इतनी अच्छी और उपयोगी वार्ता के लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब बच्चों, आप सब भी अपने दोस्तों को सुनाने के लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं। अमन, आज आप अपने दोस्तों को सुनाने के लिए क्या लेकर आए हैं?
2: दीदी, मैं एक कहानी लाया हूँ,
1: सुनाइए।
2: निष्ठावान नेवला। एक गाँव में एक किसान अपनी पत्नी और छोटे से बेटे के साथ रहता था। एक दिन किसान को सड़क पर एक घायल नेवला मिला। उस पर दया कर कर वह उसे घर ले आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, यह नेवला हमारे बेटे के साथ ही बड़ा होगा। शुरू में पत्नी को थोड़ा संकोच लगा, पर वह मान गई। नेवला जल्दी ही ठीक हो गया और परिवार का सदस्य बन गया। समय के साथ बच्चा और नेवला गहरे दोस्त बन गए। एक दिन किसान की पत्नी को बाजार जाना था। उसने अपने बच्चे को सुलाया और पति से उस पर ध्यान रखने को कहा। किसान मान गया, लेकिन जल्द ही उसे एक साहूकार से मिलने बाहर जाना पड़ा। नेवले पर भरोसा करके वह उसे सोए हुए बच्चे की रखवाली करने के लिए छोड़ गया। जब किसान की पत्नी लौटी तो उसने नेवले को दरवाजे पर देखा। उसका मुंह और पंजे खून से सने थे। वह हैरान और भयभीत हो गई और चिल्ला उठी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। गुस्से में आकर उसने बिना सोचे समझे अपनी टोकरी से नेवले पर वार कर दिया और उसे वहीं मार डाला। वह अंदर भागी और देखा कि उसका बच्चा सुरक्षित है। पालने के पास एक मरा हुआ सांप पड़ा था। निष्ठावान नेवले ने बच्चे को खतरे से बचाया था। महिला फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी भयंकर गलती का एहसास हो गया। उसने इस प्राणी को मार दिया जिसने उसके बेटे की रक्षा की थी। नैतिक शिक्षा। क्रोध में कोई काम ना करे या जल्दीबाजी में निष्कर्ष पर ना पहुँचे। निर्णय लेने से पहले सोचे।
1: बहुत अच्छी कहानी तुमने सुनाई अमन। सही में हमें कोई भी काम करने से पहले उन चीज़ों के बारे में एक बार सोचना चाहिए, फिर उस काम को अंजाम देना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि जल्दीबाजी में अगर हम किसी काम को करते हैं तो वो सही नहीं हो पाता। और क्या लेकर आए हैं?
2: दीदी, मैं कविता भी लाया हूँ,
1: सुनाइए।
2: कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अकड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखार लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते ना सहज ही मोती पानी में, बहता दूना उत्साह इसी गहराई में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और विचार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष करो, मैदान छोड़ो मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
1: ये कविता भी आपने बहुत अच्छी सुनाई अमन। सही में अगर हम बार बार कोशिश करें, जो हमारे जो भी बाधाएं आ रही है हम उनको पार करते हुए और हर बार कोशिश करें, तो एक ना एक दिन हम सफल ज़रूर होंगे और जिसको चीज़ को हम पाना चाहते हैं वो चीज़ हम ज़रूर पा लेंगे।
3: हेलो दोस्तों, मेरा नाम साबिक कुमारी है। मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ। सुबह सुबह जब चिड़िया उठकर

0: जब याद तुम्हारी आती है, जब छमछम बूंदे गिर जाती है, बिजली छमछम कर जाती है मैदानों में बन बागों में, जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती धोकर लाती है, ये जग के सृजन हार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है।
1: आप बच्चों की इतनी सुंदर प्रस्तुति के बाद अब वक्त चला है प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारे का, तो चलिए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग और ढेर सारे नए इरादों के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं आपके साथ बाल किलकारी के नए एपिसोड में ढेर सारी मौज मस्ती और धमा चौकरी से। आप सभी श्रोताओं के दिलों पर राज करने के लिए हम हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं।
1: सुप्रभात बाल श्रोता सब, अपनो सभ्य बाल श्रोता के बहुते बहुते स्वागत छै आपनो के इस सुंदर आरु अनोखा सा रेडियो कार्यक्रम बाल किलकारी के अंक 303 मा। आरु आज के ई खास अंक के साथे हम छे के अपना सभ्य के प्यारी रेडियो दीदी कंचन। आरु आज के ई खास कार्यक्रम के साथ छे अपनो के रेडियो साथी स्वाति।
0: हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी बाल श्रोता स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और ढेर सारी मौज मस्ती के साथ आज भी तैयार होंगे ज्ञान और मनोरंजन से अपने स्पेशल संडे को और भी स्पेशल बनाने के लिए। और हाँ दोस्तों, अपने समर वेकेशन के लिए तैयार भी होंगे, साथ ही ढेर सारी धूम मस्ती के साथ अपने गर्मी की छुट्टियों को और भी मजेदार बनाने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे।
1: हाँ स्वाति, एकदम में सही बात कहले। आज सतक गर्मी के छुट्टी शुरू होए वाला छै, बच्चा सबके एकदम मौज मस्ती के दिन आभी गेले। यही गर्मी के तो छुट्टी होई छै जेकरा में बाल मित्र सब एकदम खुली के हसै छै, मौज मस्ती करै छै, अपनो मन पसंद के खेल कूद के खेले छै। तो साथी सब, गर्मी छुट्टी के एंजॉय करे के पूरा तैयारी करी लेलो छो नी? कहना कि गर्मी के छुट्टी के साथ साथ किलकारी समर कैंप के भी शुरुआत हो गेलो छै।
0: जी हाँ दोस्तों, जिसका हमें बेसब्री से था इंतजार, वो घड़ी आ गई है और आज समर कैंप का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। और बड़े ही धूमधाम से चक धूम धूम समर कैंप के उद्घाटन की तैयारी चल रही है। सभी बच्चे बेहद ही खुश हैं अपने इस खास समर कैंप को लेकर, और उनका ये इंतजार बस आज खत्म हो जाएगा और शुरू होगी मौज मस्ती की रेलगाड़ी, जो किलकारी स्टेशन से लेकर मस्ती के स्टेशन तक का सफर कराएगी और बच्चों को एक रंगीन दुनिया में लेकर जाएगी।
1: जी हाँ साथी सब, स्वाति ने बिल्कुल सही बात कहल के। आज से तो शुरू होए वाला छे बच्चा सिनी के असली मौज मस्ती। आज से ही भव्य समर कैंप चक धूम धूम के साथ शुरू होए वाला छे 20 दिन तक के लंबा मस्ती के सफर। तो साथी सब तैयार छोनी एक किलकारी मस्ती रेलगाड़ी में बैठे ला आरु इस समर कैंप के सैर करे ला? तो तैयार छोनी?
0: हाँ दीदी, मैं तो कब से तैयार हूँ समर कैंप को एंजॉय करने के लिए। तो दीदी, एक बार किलकारी घूम कर आते हैं, तभी तो पता चलेगा ना हमें कि किलकारी में समर कैंप की तैयारी कैसी चल रही है।
1: हाँ स्वाति, बिल्कुल सही बात कहले। तो चल किलकारी।

0: सभी का बहुत बहुत स्वागत है किलकारी में।
1: आज मैं आप सभी को किलकारी घुमाने लेकर आई हूँ और ये बताने आई हूँ कि समर कैंप की तैयारी कैसे चल रही है। तो चलिए जानते हैं समर कैंप की तैयारी कैसे चल रही है और बच्चे कितने उत्साहित हैं समर कैंप को लेकर। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हम यहाँ के बच्चों से। हेलो,
2: हाय,
1: आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम अविनाश कुमार है।
1: आप किलकारी में क्या सीखते हैं?
2: हम किलकारी में मूर्ति कला सीखते हैं।
1: क्या आप

0: आपका क्या नाम है?
1: अर्पिता कुमारी।
0: आप किलकारी में क्या सीखते हैं?
1: मंजूषा कला।
0: आप समर कैंप के लिए कितने उत्साहित हैं?
1: मैं तो बहुत ही मजा करने वाली हूँ इस बार समर कैंप में, और इस बार समर कैंप में बहुत कुछ।
0: वाह अर्पिता, क्या इस बार आप समर कैंप में बहुत मस्ती करने वाले हैं?
1: हाँ दीदी, मैं बहुत मस्ती करूँगी और बहुत सारे गेम भी खेलूंगी।
0: चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं मूर्ति कला वाले भैया से। हेलो भैया। आप कैसे हैं भैया?
2: बहुत अच्छे।
0: समर कैंप की तैयारी क्या चल रही है भैया?
2: समर कैंप की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है, जिसमें हम मिट्टी की तैयारी करवा रहे हैं और बहुत तरह के खिलौने बनाने के लिए और चाक से बर्तन बनाने के लिए बच्चों को सिखाएंगे।
0: और भी कुछ खास होने वाला है इस समर कैंप में?
2: इस समर कैंप में बहुत खास होने वाला है, बहुत बड़े बड़े गेम होने वाले हैं जिसमें बच्चे मनोरंजन करेंगे।
0: वाह भैया, इस बार समर कैंप में मूर्तियों का ढेर लगने वाला है ना? दोस्तों बहुत मजा आएगा इस बार समर कैंप में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हस्तकला की ओर और जानते हैं कि वहाँ कैसे तैयारी चल रही है। तो आइए मिलते हैं हस्तकला वाले भैया से। हेलो भैया।
3: हाँ बोलो, कैसी हो प्रिया?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ। भैया इस बार समर कैंप में क्या खास हो रहा है?
3: इस बार समर कैंप में बहुत खास होने वाला है, पता है? इस बार काफी बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और एक यही तो मौका होता है कि समर कैंप में हम कुछ अच्छा सीख पाएं, अपने समय को यूज कर पाएं। और इस बार समर कैंप में 20 दिन का होने वाला है और इस बार 20 दिन में 10 दिन पेपर क्राफ्ट होने वाला है और 10 दिन पुआल आज। और पेपर क्राफ्ट में काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे जिंक्स और पेपर को लेकर वॉल हैंगिंग, पुआल आर्ट से पेंटिंग, काफ़ी मज़ा आने वाला है।
0: वाओ, इस बार खूब धूम धड़ाका होगा
3: और हर दिन फन गेम भी होगा,
0: तब तो मजा ही आ जाएगा। मैं भी आऊंगी खेलने भैया।
3: जरूर एकदम आना है आपको।
0: थैंक यू भैया, आपने तो बहुत कुछ बताया समर कैंप के बारे में। तो आइए चलते हैं मंजूषा विधा की ओर और जानते हैं समर कैंप की तैयारी कैसे चल रही है। तो आइए मिलते हैं मंजूषा विधा वाले भैया से। हेलो भैया।
4: हेलो बच्चों, कैसी हो प्रिया?
0: मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं भैया?
4: हम भी ठीक हैं।
0: भैया बताइए, मंजूषा कला में समर कैंप की तैयारी कैसे चल रही है?
4: तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है और समर कैंप में नए नए विशेषज्ञ का आना इस बार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग खुद ही बच्चों को ट्रेनिंग देंगे और नए नए चीजों से उसे अवगत कराएंगे। सबसे पहले तो हम उसे रेखाओं के बारे में बताएंगे, फिर रेखाओं से कौन कौन से चित्र बनेंगे उसके बारे में बताएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसे स्टेंसिल वर्क सिखाएंगे। स्टेंसिल वर्क यानी छापा कला। छापा कला कैसे बनाएंगे बच्चे, जैसे आलू से या फिर भिंडी से या फिर आपका पेपर वर्क, उसमें कटिंग करके उसमें रंग, तीन रंगों के द्वारा उसको हम मंजूषा पेंटिंग बनाना सिखाएंगे।
0: वाह भैया, मतलब छापा कला द्वारा मंजूषा बनाना सिखाइएगा?
4: हाँ, इस बार मंजूषा कला में छापा कला के द्वारा सिखाया जाएगा।
0: वाह, तब तो बहुत मजा आएगा। तो आइए मिलते हैं एक और बच्ची से और उनसे जानते हैं कि समर कैंप में और क्या होने वाला है। हेलो साक्षी।
5: हेलो
0: साक्षी, समर कैंप में क्या क्या खास होने वाला है बताओ?
5: समर कैंप में क्राफ्ट और बहुत सारे फन गेम होंगे जिसमें कि बहुत सारे मजे आएंगे।
0: साक्षी, इस बार तुम समर कैंप के लिए एक्साइटेड हो?
5: मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं तो सोचती हूँ कि कब समर कैंप आए जो मैं कि बहुत सारा फन गेम खेलूँ। मैं तो लगभग 2 साल से सीख रही हूँ और समर कैंप का इंतजार कर रही हूँ कि कब समर कैंप आए और मैं फन गेम में भाग लूँ। और समर कैंप में बहुत चीज सीखने के लिए तो मिलता है और बहुत सारे चीजें भी मिलते हैं और बहुत सारे गिफ्ट भी मिलते हैं जीतने पे। और पता है दीदी, इस बार जो है ना समर कैंप में मैं क्राफ्ट सीखूंगी और मैं इस बार समर कैंप में मंजूषा भी सीखूंगी और इस बार समर कैंप में मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ।
0: वाह साक्षी, मजा आ गया आपकी बात सुनकर, मुझे भी सीखने का बहुत मन कर रहा है। समर कैंप में मैं भी खूब एंजॉय करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नाटक विधा की ओर। हेलो स्वस्ति।
6: हाँ हेलो दीदी,
0: कैसी हो तुम?
6: हम तो ठीक है दीदी, आप कैसी हैं?
0: मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अच्छा ये बताओ स्वस्ति कि इस बार नाटक में क्या तैयारी चल रहा है?
6: इस बार नाटक क्लास में समर कैंप की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है।
0: अच्छा, इस बार क्या क्या सिखाया जाएगा समर कैंप में?
6: इस बार मेकअप और एक्टिंग सिखाया जाएगा।
0: अरे वाह, नाटक के साथ साथ मेकअप भी?
6: हाँ,
0: ये तो बड़ा अनोखा कॉम्बिनेशन।

0: समूह। मजा आएगा हमें, मैं भी मेकअप सीखने आऊंगी।
1: ठीक है दीदी। और आपको पता है दीदी, इस बार समर कैंप में बहुत अच्छी गेम सब भी आएगी, उसमें बहुत मजा आएगा। और आपको पता है मेरा फेवरेट गेम कौन सा है?
0: कौन सा है?
1: गुपचुप रेस।
0: अरे वाह, मेरा भी फेवरेट है। मैं तो है ना दो प्लेट गुपचुप खाऊंगी।
1: ठीक है, और मैं भी खाऊंगी आपके साथ साथ, और ढेर सारी गिफ्ट्स जीतूंगी।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात कही तुमने, मुझे भी बहुत मजा आएगा इस बार समर कैंप। तो आइए मिलते हैं संगीत विधा के साथियों से, जानते हैं कि समर कैंप की तैयारी कैसे चल रही है। हेलो वैष्णवी।
2: हेलो प्रिया,
0: तुम कैसे हो?
2: मैं तो ठीक।
0: ये बताओ कि संगीत विधा की तैयारी कैसे चल रही है?
2: संगीत विधा की तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है।
0: और समर कैंप में क्या क्या खास करने वाली हो तुम?
2: हम लोग तो समर कैंप में बहुत सारे गाने गाने वाले हैं और बहुत सारे एक्टिविटी भी करने वाले हैं।
0: अच्छा, और समर कैंप के लिए कितने एक्साइटेड हो?
2: मैं तो समर कैंप के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं समर कैंप में हर फन गेम में पार्टिसिपेट करूँगी और बहुत सारे प्राइज जीतूंगी। और जो संगीत विभाग के टीचर लोग आएंगे उनसे मैं बहुत सारे चीज़ सीखूंगी।
0: अरे वाह वैष्णवी, तुम तो बहुत तैयार हो समर कैंप को एंजॉय करने के लिए।
2: हाँ, मैं बहुत ही अच्छे से तैयार हूँ समर कैंप को एंजॉय करने के लिए। बहुत मजा आने वाला है इस बार समर कैंप में।
0: हेलो सर, आप कैसे हैं?
3: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सर, क्या आप बता सकते हैं कि इस बार समर कैंप में क्या खास होने वाला है?
3: इस बार का समर कैंप बहुत ही शानदार होने वाला है। इसमें ढेर सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। हम लोगों का प्रयास होगा कि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं वो हमारे दोनों बाल भवन कंपनी बाग और बाल भवन बरारी में ढेर सारी चीज़ें सीख पाएँ, ढेर सारे खेल कूद का आनंद ले पाएँ।
0: सर, क्या आप ये बता सकते हैं कि इस बार का समर कैंप कब से शुरू हो रहा है?
3: अरे, कंपनी बाग में तो समर कैंप आज से ही शुरू होने जा रहा है।
0: आज से ही?
3: बिल्कुल।
0: कितने दिन तक?
3: समर कैंप 20 दिन का होता है।
0: अरे वाह।
3: जिसमें एक दिन स्वागत, एक दिन उद्घाटन होता है और दूसरा दिन समापन होता है। तो दो दिनों को छोड़कर कुल हम लोग 18 दिन का समर कैंप करते हैं। 18 दिन सीखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं एक दूसरे के साथ।
0: सर, क्या आप हमारे बाल श्रोताओं को क्या कहना चाहते हैं?
3: मैं तो आपके बाल श्रोताओं को कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस समर कैंप का लाभ उठाएं। अपने नज़दीकी बाल भवन, चाहे वह बाल भवन कंपनी बाग हो या बाल भवन बरारी हो, आप आएं। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है। तो आप बाल भवन में आके अपनी पसंदीदा विधा को चुनें, पसंदीदा खेल का आनंद लें और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएँ और इस समर कैंप का लाभ उठाएँ।
0: अरे वाह दोस्तों, आपको पता है इस बार का समर कैंप एकदम फ्री होने वाला है, वो भी फ्री रजिस्ट्रेशन, और बहुत मजा आएगा। साथ ही साथ आपको प्राइज भी मिलेंगे, अनोखे खेल भी खेलने पड़ेंगे और नए नए शिक्षकों से अच्छी कला सीखने को मिलेगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बाल श्रोताओं को बहुत अच्छी बात बताई।
3: जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: सुना ना साथियों आपने कि इस बार समर कैंप में किलकारी में धूम धड़ाका हो रहा है और सभी बच्चे बहुत ही उत्साहित है इस समर कैंप को लेकर। तो दोस्तों, मिलते हैं अब समर कैंप में, तब तक के लिए बाय बाय।
4: सुन लेना स्वाति, केना का किलकारी में जोरो शोरो से समर कैंप के तैयारी चली रहलो छे। हमरा तो लगी रहलो छे कि ई बार के समर कैंप में खूबे मजा आवे वाला छे।
1: इस बात पर कोई शक नहीं है दीदी कि किलकारी में कोई मजा नहीं आए, और वो भी समर कैंप में, ये कोई कहने वाली बात है?
4: हाँ स्वाति, बिल्कुल सही बात कहले। किलकारी में तो समर कैंप होता रहते, लेकिन अब कार्यक्रम पर भी तो ध्यान देना छे। कहना कि अपनो पास समय बहुत कम छे और अपना कार्यक्रम बहुत है लंबा।
1: दीदी, आपको पता है आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है।
4: हाँ, हमरा तो पते छे, आज किलकारी में समर कैंप के उद्घाटन छे, तो खास छे।
1: अरे दीदी, समर कैंप का उद्घाटन तो होना ही है ना, लेकिन आज इतिहास की ऐसी महिला का जन्म दिवस है जो भारतीय इतिहास की महान और आदर्श महिला शासकों में से एक थी, जिनका नाम है अहिल्याबाई होलकर। इनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौंडी गांव में हुआ था। वे अपनी दया, न्यायिकता, धर्मपरायणता और

0: राम सेवा के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। हर वर्ष उनकी जयंती बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है।
1: अहिल्याबाई होलकर के जीवन हमरा सब के सच्चाई, सेवा, मेहनत आरु नारी शक्ति के प्रेरणा दै छे। उ भारतीय महिला खातिर साहस आरु नेतृत्व के श्रेष्ठ उदाहरण छले। ओकरो जयंती पर हमरा सब के ओकरो आदर्श अपनाबे के आरु समाज सेवा के संकल्प करे के चाही।
0: हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। उन्होंने देश के कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों का नाम और पुनः निर्माण करवाया है। काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर और कई घाटों व धर्मशालाओं के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे धार्मिक होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी थी। अहिल्याबाई होलकर केवल एक रानी नहीं थी, बल्कि वे जन सेवा और मानवता की जीवित मिसाल थी। उनका नाम भारतीय इतिहास में सदैव सम्मान के साथ लिया जाएगा और हम लोग भावपूर्वक उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर रहेगा। तो आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आने वाले विश्व पर्यावरण दिवस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। दोस्तों, प्रकृति के साथ निखरने के लिए और अपने जीवन को स्वस्थ, सुंदर और मजेदार बनाने के लिए पर्यावरण बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वातावरण स्वच्छ और सुंदर रहेगा तो मानव जीवन भी स्वस्थ और खुशहाल रहेगा। इसीलिए हम सब हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया करते हैं, ताकि हम अपने कर्तव्य को भूले ना और अपने प्रकृति की देखभाल अच्छे से कर सके और उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं।
1: हाँ स्वाति, बिल्कुल सही बात कहले। तो पर्यावरण तो अपना जीवन के एगो महत्वपूर्ण अंग छे। उ हमरो जीवन ला इतने आवश्यक छे कि जेकरा से हमरा सबके स्वच्छ हवा, पानी, भोजन आरो बहुते कुछ मिले छे। एकरो सुरक्षा आरो संरक्षण अपनो सबके जिम्मेदारी छे। पर्यावरण अपनों के जीवन का स्वस्थ और सुरक्षित बनाए में पूरा मदद करे छे। पर्यावरण के बिना जीवन तो असंभवे लगे छे और एकरो संरक्षण अपनों सब ला बहुते जरूरी छे। पर्यावरण संरक्षण ला बहुते उपाय छे, लेकिन दैनिक जीवन में एकरा एगो अपना आदत के रूप में अपनाना छे, तभी एकरो संरक्षण हम सब अच्छा से कर सके छे।
0: हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें कई उपाय करने होंगे। हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करने चाहिए और ऊर्जा की बचत करनी चाहिए। हमें अपने दैनिक जीवन में भी पर्यावरण अनुकूल आदतें अपनानी चाहिए। आइए अब हम सब पर्यावरण संरक्षण के लिए एकजुट हो और अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण अनुकूल आदतें अपनाएं। हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए काम करने चाहिए और इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।
1: तो चलो साथी सब, अब कार्यक्रम में आगे बढ़े छे। आरू अब सुने छे पर्यावरण दिवस पर स्पेशल वीक में एगो खास नाटक का, नाटक पेड़ों की सभा। तो चलो ई खास नाटक का सुने छे आरू एकरा से कुछ खास सीखे छे।
2: रेडियो नाटक पेड़ों की सभा।

0: प्यारे दोस्तों, मजेदार और ज्ञानवर्धक खबरों के लिए बने रहिए हमारे वही न्यूज चैनल के साथ। तो चलिए दर्शकों, आज हम चलेंगे पेड़ों की सभा में।
1: जी हाँ दर्शकों, मैं रोली पांडे आप सभी को इस सभा का आंखों देखा हाल बताऊंगी। मेरे साथ कैमरे पर है आशुतोष तथा साथी रिपोर्टर मन्नत।
0: देखो, यहाँ पेड़ों का आना जाना शुरू हो गया है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, आज इस सभा को बुलाया है पेड़ों के राजा आम ने।
1: ये देखिए दर्शकों, आम के पेड़ पधार रहे हैं। आहा हा, उन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ जा रहा है।
0: दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी, आम को फलों का राजा कहते हैं। जब आम कच्चा होता है तब उसकी चटनी और अचार बनाते हैं। पकने के बाद मीठे मीठे रसीले आम को हम सभी स्वाद लेकर खाते हैं।
1: आम के पीछे पीछे नीम के हरे भरे वृक्ष भी आ रहे हैं। स्वाद में कड़वा जरूर है, लेकिन गुणों की खान है यह पेड़।
0: वो देखिए दर्शकों, जामुन, अनार और बादाम तीनों बात करते हुए इधर ही आ रहे हैं।
1: जैसा कि आप देख सकते हैं, आमंत्रित पेड़ एक एक कर सभी आ चुके हैं। सबने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। लेकिन यह क्या, सभा तो शुरू ही नहीं हो रहा। अरे मन्नत, क्या तुम्हें मालूम है अब किसका इंतजार हो रहा है?
0: हाँ रोली, सीताफल के पेड़ की इंतजार की जा रही है। वे जैसे ही आएंगे सभा शुरू हो जाएगी।
1: दर्शकों, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। सीताफल जी भी आ रहे हैं। अरे यह क्या, ये तो काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। लगता है इनकी तबीयत खराब है, तभी तो ये धीरे धीरे चल रहे हैं।
0: ये देखिए दर्शकों, आम के पेड़ द्वारा सभा का अभिवादन किया जा रहा है। आगे का हाल क्यों ना हम सभी उन्हीं की जुबानी सुने।
2: मित्रों, मैं जानता हूँ आप सभी बहुत उत्सुक हैं आज की सभा का कारण जानने के लिए।
3: भैया जल्दी से कारण बताओ और सभा समाप्त करो, मैं ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
4: भैया इन दिनों मैं भी कुछ कमजोरी महसूस कर रहा हूँ।
2: कृपया शांत रहिए, मैं आपकी इन्हीं समस्याओं को लेकर चिंतित हूँ, इसलिए मैंने आज ये सभा बुलाई है।
5: भैया नेकी और पूछ, सभा शुरू कीजिए।
2: देखो मित्रों, मैं आपकी दशा से भली भांति परिचित हूँ। मुझे आज भी याद है वो दिन जब हम सभी बागियों में हंसी खुशी जीवन जी रहे थे। लेकिन आजकल मनुष्यों का व्यवहार हमारे प्रति उदासीन हो गया है। वो आए दिन अपने स्वार्थ के लिए हमारा शोषण कर रहे हैं।
4: जी हाँ भैया, जिसके परिणाम स्वरूप हम कमजोर हो रहे हैं।
6: मनुष्य कभी हमारे हरे भरे तने को काट देते हैं तो फल तोड़ते समय हमें घायल कर देते हैं।
3: भैया आजकल मुझे भरपूर पानी भी नहीं मिल पा रहा है।
7: हम रोगों से लड़ने के लिए औषधि भी प्रदान करते हैं।
3: उन्हें हम सबसे महत्वपूर्ण चीज ऑक्सीजन देते हैं, जो कि उनके लिए प्राण वायु का कार्य करती है। लेकिन उनके द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम ही ग्रहण करते हैं।
6: हम हमारे दिए गए सामानों की सूची बनाए तो इस सभा का समय भी कम पड़ जाएगा।
7: बिल्कुल सही कहा आपने जामुन जी।
5: इतने लाभकारी हैं हम, फिर भी ये नासमझ मनुष्य हमें चोट पहुंचाते रहे हैं, नष्ट करने पर तुले हैं। नित नए ढंग से वे हमारे दोहन और शोषण कर रहे हैं।
3: धरती पर उपलब्ध वस्तुओं का सेवन तो वह अधिकार पूर्वक करना चाहते हैं, लेकिन बदले में उन्हें देना कुछ नहीं आता है।
8: जी हाँ भैया, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन तो क्या करें?
2: मित्रों, हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं।
7: वो कैसे भैया?
2: यदि हम ठान ले तो संपूर्ण मानव जाति को दिन में तारे दिखा सकते हैं।
6: लेकिन भैया हमें तो कुछ सोझ नहीं रहा है, आप ही सही राह दिखाइए।
2: मित्रों, आज जैसे मनुष्य हमारे प्रति उदासीन हो गए हैं, वैसे हमें भी उनके प्रति उदासीन होना पड़ेगा। उन्हें आसानी से सारी चीजें उपलब्ध हो रही है, इसलिए वह हमारी अहमियत नहीं समझ रहे हैं। यदि उन्हें ये चीजें नहीं मिलेगी तो उनकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी।
8: जी हाँ भैया, बिल्कुल सही कहा आपने।
2: जी हाँ पेड़ भाइयों, आज की सभा का परिणाम आ चुका है। पेड़ों ने मनुष्य को सबक सिखाने की ठान ली है। उन्होंने ऑक्सीजन, फल फूल, लकड़ी, औषधि, अनाज, साग सब्जी देने से इनकार कर दिया है।
0: दर्शकों, सारे पेड़ अपने इस फैसले पर अड़े हुए हैं। अब वह हम मनुष्यों को ऑक्सीजन, फल फूल आदि चीजें नहीं देंगे। तो अब आप ही बताइए, हम सभी इनके बिना कैसे जीवित रह पाएंगे?
1: दर्शकों, यदि अब भी हम सभी नहीं जागे तो इसके परिणाम और भी भयानक हो सकते हैं। उन्होंने तो फैसला कर लिया है, बस अब जागने, सोचने और समझने की बारी हमारी है। दर्शकों, अगर आप पेड़ों के संरक्षण एवं हित में फैसला ले रहे हैं तो एक बार हमें जरूर बताएं।
8: हम सभी पेड़ों की रक्षा करेंगे, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम सदैव पेड़ों के हितों के बारे में सोचेंगे। हम अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को नहीं काटेंगे। हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। पेड़ों में जीवन है, ये संदेश जन जन में पहुंचाएंगे।
1: जो लोग टीवी के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, उनकी भी यही राय है और वे भी यहाँ मौजूद दर्शकों से पूर्णतः सहमत हैं।
0: आम भैया, मनुष्य को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उन्होंने अपनी गलती मान ली है, अब आप भी गुस्सा थूक दीजिए।
2: जी हाँ पेड़ भाइयों, आखिर हम सभी पेड़ भी तो मनुष्य का भला ही चाहते हैं। देखिए, हमारा और आपका तो जन्म जन्मांतर का साथ रहा है, हमें बड़े दुख और मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा।
8: तो क्या आप हमें माफ नहीं करेंगे? हमें सुधरने का एक मौका नहीं देंगे?
1: दर्शकों, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पेड़ों के खिले खिले चेहरे और झूमती डालियां इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने हम सभी मनुष्यों को माफ कर दिया है।
0: जी हाँ दर्शकों, मेरी उखड़ती सांस भी वापस आ गई है, जो इस बात का सबूत है कि

0: पेड़ों ने हमें माफ कर सुधरने का एक और मौका दिया है। तो दर्शकों, आज की ये सभा एक सकारात्मक मोड़ पर यही समाप्त होती है।
1: इसी तरह की सनसनी खबरों के लिए बने रहिए हमारे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।
2: ये नाटक तो बहुत ही सुंदर और बहुत कुछ सीख देने वाली थी। आप सभी नाटक विधा के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: तो बाल मित्र सब, नाटक कैसनो लगला जरूरे बताइयो। ये नाटक चले आपनो रंग मंच के साथ ही, आपनो रंग मंच के नन्हा नन्हा कलाकार के जरिए प्रस्तुत कर लो गेलो छले। अपनो सभ्य साथी का बहुते बहुते धन्यवाद छे। तो एक साथ अब कार्यक्रम में आगे बढ़े छे आरु पर्यावरण दिवस पर सुने छे खास गीत का, पर्यावरण गीत का। तो चलो गीत का सुने छे।

0: वाह, गीत सब तो बहुत सुंदर छले। अरे गीत सब पता चले छे कि पर्यावरण कितना जरूरी छे। तो चलो अब कार्यक्रम के सिलसिला यही समाप्त हो छे। आशा करे छे कि आज सब के कार्यक्रम में खूब मजा आयलो होते।
1: हाँ दीदी, आपने तो बिल्कुल सही कहा।
0: तो साथी सब एकरे साथ कार्यक्रम अब यही समाप्त हो छे। आशा करे छे कि आज रो कार्यक्रम में खूब मन लगलो होते और खूब एंजॉयमेंट के साथ अपनों के ई कार्यक्रम का सुनलो होवो। तो अपनों के ई कार्यक्रम कैसनो लगले हमरा जरूरे बताइयो। उम्मीद करे छे कि सबे ना मैसेज भेजते आरो हमरा आरो स्वाति के प्यार देते।
1: तो साथियों, आप अपना कीमती मैसेज हमें जरूर भेजें। आप अपना मैसेज हमारे मोबाइल नंबर के जरिए भेज सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7542029695। तो आप अपना मैसेज याद से भेज दें, क्योंकि हमें आपके मैसेज का बहुत दिनों से इंतजार रहता है। तो साथियों, अब हम मिलेंगे इसी कार्यक्रम में हर रविवार सुबह 10 बजे से इसी जोश और उमंग के साथ। आपके चेहरे की मुस्कान को बरकरार रखने के लिए हम फिर से हाजिर होंगे।
0: तो बाल मित्र सब, अब हम मिलबे नयका कार्यक्रम, नयका के सारे नयका जानकारी के साथ। तब तक अपनो ख्याल रखियो आरु अब अपनो रेडियो दीदी कंचन
1: और अपनी प्यारी रेडियो साथी स्वाति को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे इसी जोश और मुस्कान के साथ आपके लिए नए एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। बाय।

0: प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी के आज के इस अंक के साथ ही बच्चों अब वक्त हो चला है आप सबों से विदा लेने का, तो ढेर सारी सुविक्षाओं के साथ हम लेते हैं विदा। जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।

बाल मंजूषा। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है लोकगीत, कलाकार हैं चंद्रशेखर मिश्र। इनका गाया सुनिए ये लोकगीत।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: चंद्रशेखर मिश्र की आवाज में सुनिए ये लोकगीत।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: आप सुन रहे हैं चंद्रशेखर मिश्र का गाया लोकगीत।

आप सुन रहे थे लोकगीत, कलाकार थे चंद्रशेखर मिश्र, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। कुछ ही देर में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का विशेष प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात मन की बात कार्यक्रम का

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होते हैं। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से आकाशवाणी। आपके लिए लेकर आया है विशेष पैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शब्द कीर्तन, आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, BTS और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से ना सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: निश्चय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निश्चय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी।
4: मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: बुलबुल की तबीयत क्या हुआ? नया फीडबैक चाहिए तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
7: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ये आ गया नया फीडबैक।
8: RBI कहता है
9: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
10: पर्सनल लोन ऑफर
11: फिर से ब्लॉक करता हूँ। ये भी ब्लॉक? कितना ब्लॉक करूं यार?
12: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
11: तो क्या करूं?
12: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
11: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
12: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
13: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
4: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड थे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मैन 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है ये हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजू। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए।
14: अनिमेश जी नमस्कार।
4: वरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
2: नमस्कार सर।
7: नमस्कार सर।
4: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है। एक बार एक चुनौती दे, फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले, फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूँ कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 400 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया, एंड मैं एथलेटिक्स 2021

ने चालू किया जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ। मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड ख़त्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है।

0: 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत खुश होता था जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फ़ोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया, तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे तो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया भी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है, तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह बड़ी शानदार बात है भी आपकी तो।
0: हाँ जी मिडिल क्लास फैमिली है सर, फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा, तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह की मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियाँ करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीज़ें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर तभी मेरे को बोलते थे कि 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है, तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि सुरेंद्र हमने ये चूज़ किया है हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा मुझे तेरे पे भरोसा है, तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी

0: पूछती क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
1: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं। एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
0: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फिट

चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोले थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना। एंड देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो सब 10 या सब 10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूव किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।

0: देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूँ क्या? पहले एनिमेश बता दे।
1: पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक, आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है। बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही, उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
0: गुरिंदरवीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को ज़रूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पर जाके बैठ, वहाँ पर स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
0: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना वो देश का मान बढ़ाने के लिए की, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की। और मैं मानता हूँ कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना, ये अद्भुत काम किया है आपने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज़्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफ़ी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, गोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, अम्बारम, और ओडिशा में बेलपना, वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज़्यादातर चीज़ें हमारी अपनी रसोई से निकली, हमारे खेत खलिहान से निकली, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाए, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा। यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद ही बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष है। ऐसे ही खाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहाँ बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहाँ कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहाँ क्लास नदी में लगती है। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में काजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। काजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक कीड़ा भी छिपी। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई। उस घटना ने काजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जाने बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, काजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापिस सौंपी। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे, गर्व व्यक्त कर रहे। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली है। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शन 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरी मौजूद है। यहाँ अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरी हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा। हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई दी। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहाँ ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूँगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखें। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिए। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे। और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गए। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहाँ एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था, ऑक्सीजन की सुविधा, विशेष प्रेशर, बचाव के उपकरण, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब या कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी हो गए, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, आवड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती है। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से थी। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाते थे। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय में अपने 50 वर्ष पूरे किए। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी इसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
3: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
4: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
5: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह संयुज्य अहम् अत्यन्तम् आनन्दितः अस्मि। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अस्माकं देशवासिनः देशहिते समाजहिते च एतादृशानि अद्भुतानि कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति। वयं च यदा तद्विहितानां कार्याणां विषये शृणुमः तदा वयं नूतनां प्रेरणां प्राप्नुमः। अद्य कार्यक्रमस्य आरम्भम् अहम् एथलेटिक्स इत्येतस्मिन् क्रीडाक्षेत्रे देशस्य अनयैव उपलब्ध्या करिष्यामि। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव झारखण्ड राज्यस्य रांची नगरे नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन इत्याख्या प्रतियोगिता समायोजिता। एतस्यां प्रतियोगितायां देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगताः प्रायः 800 क्रीडकाः सहभागितां कृतवन्तः। एतस्मिन् नवधौ भिन्नासु चतुर्षु स्पर्धासु 4 राष्ट्रियमानाङ्कनानि भग्नानि जातानि। गुरिन्दर्वीरसिंहः, विशाल टीके इत्यसौ, तेजस्विन् शङ्करः, देववीणा, कुलदीपकुमारश्च एतैः मित्रैः विभिन्नेषु वर्गेषु नूतनानि कीर्तिमानानि रचितानि। सर्वप्रथमम् अहम् एतान् सर्वान् अपि भूरिशः वर्धापयामि। तथायः एकस्याः स्पर्धायाः अधिदेशं बहु चर्चा जायमान अस्ति। विशिष्टा च अस्ति शत मीटर मित धावन स्पर्धा इत्येषा अर्थात शत मीटर मित धावन क्रम केवलं दिनद्वये पुरुष वर्गीये शत मीटर मिते धावन क्रमे राष्ट्रीय मानांकनं वारत्रयं भग्नं जातम् याभ्याम क्रीडकाभ्याम एतत् भद्र प्रदर्शनं कृतं कौस्तः गुरिन्दर वीर सिंहः अनिमेष कुजूरश्च अहं चिन्तितवान् ऐषमः मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे एताभ्यां क्रीडकाभ्यां सह वार्तां कुर्याम प्रधानमंत्री अनिमेष वर्य नमस्कारः गुरिन्दर वीरः भवतेपि नमस्कारः सत् श्री अकाल अनिमेष गुरिन्दर वीरौ नमस्कारः श्रीमन् नमस्कारः महोदय प्रधानमंत्री साधु भ्रातः भवता तु अतिविशिष्टा उपलब्धिः समधिगतास्ति भवत् युगलमपि विशेष प्रदर्शनम् अकरोत् वयं संगीते तु युगल प्रदर्शनं दृष्टवन्तः परं समाह्वानेपि अधुना युगल प्रदर्शनं भवति तत्र प्रथमं एकः समाह्वानं पुरस्करोति द्वितीयश्च तत् समाह्वानं स्वीकरोति द्वितीयवारं पुनश्च समाह्वानं करोति अत्यन्तं रुचिकरः विषयः अभवत् भवतु अहमिच्छामि मन की बात इत्यस्य श्रोतारः अपि एतस्मिन् विषये भवतोश्च विषये जानीयुः भवद्भ्यां यः पराक्रमः कृतः तं विषयमभिजानीयुः अनिमेषः नमस्ते महोदय मम नाम अनिमेष कुजूरः अहं 200 मीटर 400 मीटर इत्यनयोः राष्ट्रीय कीर्तिमानाङ्कन धर्ता अस्मि अथ च महोदय अहं मूलतः छत्तीसगढ़तः अस्मि अधुना च अहं ओडिशा पक्षतः क्रीडामि विगत वर्षे अहं एशियन अथ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इत्येताभ्यां पदकानि समर्जितवान् अथ अहं एथलेटिक्स इत्येतां क्रीडाम् 21st-20th वर्षे समारब्धवान् यदा अहं विद्यालयीयम् अध्ययनं पूर्णं कृतवान् अहम् अम्बिकापुरस्थितात् सैनिकविद्यालयात् उत्तीर्णः अभवम् अथ पूर्वमहं पदकन्दुकं क्रीडामि स्म कोविड संक्रमणकाले मम पितरौ क्रीडितुं मह्यमवसरं कल्पितवन्तौ बहिः गत्वा धाव क्रीडवा इति तौ वदतः स्म यदा च कोविड संक्रमणकालः समाप्तिं गतः तदा मम मित्राणि यानि मया सह पदकन्दुकं क्रीडन्ति स्म माम् आहूय विज्ञापितवन्तः यत् राज्यस्तरीयं मेलनं जायमानमस्ति त्वं गत्वा सहभागितां कुरु अहं च तत्र सहभागितां कृतवान् मया एतन्न ज्ञातमासीत् यत् तत्र राष्ट्रस्तरीयं चयनं जायेत अहं ततः राष्ट्रियदले चितः जातः अथ अधुना अहं भारतस्य प्रातिनिध्यम् अन्ताराष्ट्रियस्तरे कुर्वन्नस्मि प्रधानमन्त्री भवतु गुरिन्दरवीर किं प्रवर्तते गुरिन्दरवीरः नमस्ते श्रीमन् मम नाम गुरिन्दरवीरः अहं भारतीय नौसेनायां पेटी आफिसर इत्येतस्मिन् पदे कार्यरतः अस्मि अहं च भारतस्य सर्वतः तीव्रधावकः अस्मि अनतिचिरमेव अहं शतमीटरमितं धावनं 10.09 सेकेण्ड् मिते काले समाप्य राष्ट्रियं कीर्तिमानाङ्कनं समर्जितवान् अहं प्रथमः तादृशः भारतीयः अस्मि यः 10.1 सेकेण्ड् इत्यवधेः अपि अल्पकाले एव धावनं पूर्णं कृतवान् मम प्रयासः भवति अहं धावनपथे सैन्यवेशभूषायां चापि स्वस्य देशस्य सेवां कुर्याम् मम पिता पितामहश्च उभावपि क्रीडकौ आस्ताम् अस्माकं भारतीया संस्कृतिः एषा यदा नाम किमपि पर्व भवति यथा दीपावली नूतनवर्षः वा तदा वयं स्वगृहस्य स्वच्छतां कुर्मः अहमपि तदा पितुः वैजयन्तीनां पदकानां च स्वच्छतां करोमि स्म तत् कार्यं मह्यं बहु रोचते स्म अहमपि प्रसन्नः भवामि स्म तस्मिन् काले यदा अहं कामपि वैजयन्तीं स्वच्छां करोमि स्म तदा अहं पृच्छामि स्म एषा चल वैजयन्ती कुतः विजिता एतत् पदकं कुत्र जितम् एतत् चित्रं कदा आकृष्टं तदा तदा सः स्वकथाः मां श्रावयति स्म सः ज्ञापयति स्म यत् अहं तत्र क्रीडितुं गतः अहमेतत् राष्ट्रियपदकं जितवान् अहं स्वदलस्य एतस्मिन् सन्दर्भे विजयं कारितवान् अतः अहमपि तं प्रति कथयामि स्म यत् अहम् अपि कामपि क्रीडां कर्तुमिच्छामि सः प्रातः धावनार्थं गच्छति स्म तदा अहमपि तेन सह गन्तुं प्रार्थयामि स्म अनन्तरं सः मामपि नयति स्म सः क्रीडावधौ यत् किमपि अधिगतवान् आसीत् तत् सर्वं मामपि शिक्षयति स्म ततः मम रुचिवर्धनम् आरब्धम्। अहं यूसेन् बोल्ट् इत्यस्य ध्वस्तं विश्वकीर्तिमानाङ्कनम् अपि अपश्यम्। एतत् सम्बद्धा एका विनोदकथा अस्ति। अहं टी वी इति दूरदर्शनं पश्यामि स्म, तदा मम माता

स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान वाणी में। कार्यक्रम के आज के अंक के साथ है माइंड टेस्ट, तो श्रोताओं इंतजार किस बात का, आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम का सिलसिला। अब वक्त है हमारे कार्यक्रम के स्तंभ विज्ञान रत्न का। श्रोताओं विज्ञान जगत अपने वैज्ञानिकों के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। ये वैज्ञानिक जो नए नए प्रयोग नए आविष्कारों के द्वारा पूरी दुनिया को विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उनके प्रेरणादायी जीवन को बताने का ही स्तंभ होता है विज्ञान रत्न। श्रोताओं विज्ञान रत्न में आज हम जानेंगे महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ निकोलस कोपरनिकस के जीवन के बारे में। निकोलस कोपरनिकस पोलैंड के एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया जिसके अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है बल्कि सभी ग्रह स्थिर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इस खोज ने खगोल विज्ञान को नई दिशा दी। इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो निकोलस कोपरनिकस का जन्म 19 फरवरी 1473 को पोलैंड के टोरून शहर में एक धनी व्यापारी परिवार में हुआ था। छोटी उम्र में ही माता पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका पालन पोषण उनके मामा लुकास वाटर जेनरोडे ने किया। उन्होंने पोलैंड के जगी येलोनियन विश्वविद्यालय से गणित और भूगोल विज्ञान की पढ़ाई की। इसके बाद कानून और चिकित्सा के शिक्षा के लिए वे इटली के बोलोगना और पड़वा विश्वविद्यालय में चले गए। प्रमुख योगदान की बात करें तो उस समय तक पूरी दुनिया में भू केंद्रित मॉडल को माना जाता था जिसमें पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र था और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता था। कोपरनिकस ने इस मान्यता को चुनौती दी। कोपरनिकस ने गणितीय गणनाओं के आधार पर यह सिद्ध किया कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जिससे दिन और रात होते हैं और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है जिससे साल बदलता है। कोपरनिकस ने अपने क्रांतिकारी सिद्धांतों को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आकाशीय क्षेत्रों की क्रांतियों में लिखा कि धार्मिक और सामाजिक विरोध के डर से उन्होंने अपनी इस खोज को लंबे समय तक दुनिया से छिपा कर रखा। अपनी मृत्यु के समय ही उन्होंने इस पुस्तक को छपने भेजा था। उनके विरासत की बात करें तो कोपरनिकस के विचारों ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी। बाद के वैज्ञानिकों जैसे गैलीलियो गैलीली और जोहान्स केपलर ने कोपरनिकस के सिद्धांतों का समर्थन किया और उन्हें आगे बढ़ाया। आधुनिक युग के वैज्ञानिक उन्हें खगोल विज्ञान के संस्थापकों में से एक मानते हैं। श्रोताओं 24 मई 1543 को इस महान वैज्ञानिक ने अंतिम सांस ली। आज भले वो हमारे बीच नहीं हों लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए वे हमेशा हमारे बीच मौजूद रहेंगे। विज्ञानवाणी टीम की ओर से उन्हें सादर नमन। श्रोताओं विज्ञान रत्न के तहत आज हम एक और वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे। श्रोताओं आर रॉबर्ट कोच, इनका जन्म 11 दिसंबर 1843 को ऊपरी हार्ज पर्वतमाला के क्लॉस्ट हॉल में हुआ था। एक खनन इंजीनियर के पुत्र उन्होंने 5 वर्ष की आयु में अपने माता पिता को यह बताकर आश्चर्यचकित कर दिया कि उन्होंने समाचार पत्रों की सहायता से स्वयं पढ़ना सीख लिया था। यह उपलब्धि उनकी बुद्धिमत्ता और व्यवस्थित दृढ़ता की झलक थी जो उनके आगे के जीवन की विशेषता बनने वाली थी। उन्होंने स्थानीय उच्च विद्यालय में दाखिला लिया और वहां जीव विज्ञान में रुचि दिखाई तथा अपने पिता की तरह यात्रा करने की प्रबल इच्छा रखी। 1862 में कोच गोटिंगन विश्वविद्यालय में चिकित्सा का अध्ययन करने गए। यहाँ शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर जैकब हेनले थे और कोच निसंदेह हेनले के 1840 में प्रकाशित इस विचार से प्रभावित हुए कि संक्रामक रोग जीवित परजीवी जीवों के कारण होते हैं। 1866 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद कोच 6 महीने के रसायन विज्ञान के अध्ययन के लिए बर्लिन गए और वहां विरचोब के प्रभाव में आए। 1867 में हैम्बर्ग के जनरल अस्पताल में एक सहायक के रूप में कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने सामान्य चिकित्सा शुरू की, पहले लैंगनहेगन में और उसके तुरंत बाद 1869 में प्रोजेन प्रांत में। यहाँ उन्होंने जिला चिकित्सा अधिकारी की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1870 में उन्होंने फ्रांको प्रशिया युद्ध में सेवा के लिए स्वेच्छा से भाग लिया और 1872 से 80 तक वोल्स्टीन के जिला चिकित्सा अधिकारी रहे। यहीं पर उन्होंने युगांतकारी शोध किए जिसे उन्होंने वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं की अग्रणी पंक्ति में एक कदम आगे खड़ा कर दिया। उस समय वोल्स्टीन जिले के खेतों में पाले जाने वाले पशुओं में एंथ्रेक्स रोग फैला हुआ था। कोच के पास वैज्ञानिक उपकरण न होते हुए भी वे पुस्तकालयों और अन्य वैज्ञानिकों से संपर्क से पूरी तरह कटे हुए थे। फिर भी अपने व्यस्त काम के बावजूद उन्होंने इस रोग का अध्ययन किया। उनकी प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप के अलावा बाकी सभी उपकरण उन्होंने खुद ही जुटाए थे। इससे पहले एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज पोलैंडर रेयर और डेवेन ने की थी और कोच ने वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध करने का निश्चय किया कि वास्तव में यही जीवाणु इस रोग का कारण है। उन्होंने एंथ्रेक्स से मरे हुए खेतों के पशुओं की तिल्ली से लिए गए एंथ्रेक्स जीवाणुओं से चूहों को संक्रमित किया और पाया कि सभी चूहे जीवाणुओं से मर गए, जबकि स्वस्थ पशुओं की तिल्ली से लिए गए रक्त से संक्रमित किए गए चूहों को यह रोग नहीं हुआ। इससे उन अन्य लोगों के कार्यों की पुष्टि हुई जिन्होंने यह दिखाया कि यह बीमारी एंथ्रेक्स से पीड़ित जानवरों के रक्त के माध्यम से फैल सकती है। लेकिन रॉबर्ट कोच इससे संतुष्ट नहीं हुए। वे जानना चाहते थे कि क्या किसी भी प्रकार के जानवर के संपर्क में न आए एंथ्रेक्स जीवाणु इस बीमारी का कारण बन सकते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने बैल की आँख के जलीय द्रव पर जीवाणुओं को उगाकर शुद्ध संवर्धन प्राप्त किया। इन संवर्धनों का अध्ययन, चित्र बनाना और तस्वीरें खींचकर

0: कोच ने जीवाणुओं के गुणन को दर्ज किया और पाया कि जब परिस्थितियां उनके लिए प्रतिकूल होती हैं तो वे अपने भीतर गोल बीजाणु उत्पन्न करते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों विशेष रूप से ऑक्सीजन की कमी का सामना कर सकते हैं, और जब जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बहाल हो जाती हैं तो ये बीजाणु फिर से जीवाणुओं को जन्म देते हैं। कोच ने इन शुद्ध संवर्धनों में कई पीढ़ियों तक जीवाणुओं को उगाया और दिखाया कि यद्यपि वे किसी भी प्रकार के जानवर के संपर्क में नहीं आए थे, फिर भी वे एंथ्रेक्स का कारण बन सकते थे। बर्लिन पहुंचने के लगभग 2 साल बाद कोच ने ट्यूबरकल बैसिलस की खोज की और साथ ही इसे शुद्ध संवर्धन में विकसित करने की विधि भी खोजी। 1882 में उन्होंने इस बैसिलस पर अपना महत्वपूर्ण शोध प्रकाशित किया। वे अभी भी तपेदिक पर काम कर रहे थे तभी 1883 में उन्हें जर्मन हैजा आयोग के प्रमुख के रूप में मिस्र भेजा गया ताकि वह वहां फैले हैजा के प्रकोप जांच कर सके। वहां उन्होंने हैजा पैदा करने वाले विब्रियो की खोज की और इसके शुद्ध संवर्धन को जर्मनी वापस ले आए। उन्होंने भारत में भी हैजा का अध्ययन किया। हैजा के विब्रियो की जीव विज्ञान और वितरण पद्धति के अपने ज्ञान के आधार पर कोच ने हैजा की महामारियों के नियंत्रण के लिए नियम बनाए जिन्हें 1893 में ड्रेसडेन में महाशक्तियों द्वारा अनुमोदित किया गया, और ये नियम आज भी उपयोग में आने वाली नियंत्रण विधियों का आधार बने। हैजा पर उनके कार्य के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया। 1885 में कोच को बर्लिन विश्वविद्यालय में स्वच्छता का प्रोफेसर और नवस्थापित स्वच्छता संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। 1890 में उन्हें प्रथम श्रेणी का सर्जन जनरल और बर्लिन शहर का मानद नागरिक नियुक्त किया गया। 1891 में वे बर्लिन के चिकित्सा संकाय के मानद प्रोफेसर और संक्रामक रोगों के नए संस्थान के निदेशक बने, जहाँ उन्हें एरलिच, वान बेहरिंग और किता सातो जैसे सहयोगियों के साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिन्होंने स्वयं महान खोजें की। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी कोच इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मनुष्यों और पशुओं में तपेदिक उत्पन्न करने वाले जीवाणु एक समान नहीं होते। 1901 में लंदन में आयोजित तपेदिक पर अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन में उनके इस विचार के प्रतिपादन ने काफी विवाद और विरोध को जन्म दिया। कोच को अनेक पुरस्कार और पदक प्राप्त हुए। उन्हें हिडलबर्ग और बोलोगना विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि, बर्लिन वोल्स्टीन और उनके पैतृक शहर क्लॉस्टहॉल की मानद नागरिकता, और बर्लिया, वियना, पोजेन, पेरुग्या, नेपल्स और न्यूयॉर्क के विद्वान समाजों और अकादमियों की मानद सदस्यता प्राप्त हुई। उन्हें जर्मन ऑर्डर ऑफ द क्राउन, जर्मन ऑर्डर ऑफ द रेड ईगल का ग्रैंड क्रॉस और रूस और तुर्की से भी कई सम्मान प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के बाद कई देशों में स्मारकों और अन्य तरीकों से उन्हें मरणोपरांत भी सम्मानित किया गया। 1905 में उन्हें शरीर क्रिया विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1906 में वे मध्य अफ्रीका लौट आए और मानव ट्रिपैनोसोमियोसिस के नियंत्रण पर काम करने लगे। वहां उन्होंने पाया कि एटॉक्सिल इस रोग के विरुद्ध उतना ही प्रभावी है जितना कि मलेरिया के विरुद्ध क्विनिन। इसके बाद कोच ने जीवाणु विज्ञान और सीरोलॉजी पर अपना प्रायोगिक कार्य जारी रखा। 1866 में कोच ने एमी फ्रैटस से शादी की, उससे उनकी एकमात्र संतान हुई जो बाद में डॉक्टर ई फुहल की पत्नी बनी। 1893 में कोच ने हेडविग फ्रीबर्ग से शादी की। डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने 27 मई 1910 को बॉडेन बेडेन में अंतिम सांस ली। आज भले वो हमारे बीच मौजूद नहीं है लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए वे हमेशा हमारे बीच मौजूद रहेंगे। श्रोताओं, विज्ञान रत्न के बाद अब वक्त है हमारे कार्यक्रम के स्तंभ विज्ञान मंजूषा का। श्रोताओं, बदलती जीवन शैली में एक प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी समस्या है हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है। मरीजों, डॉक्टरों, समुदायों और सरकारों को एकजुट करके उच्च रक्तचाप के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 17 मई को मनाया जाता है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। कंट्रोल हाइपरटेंशन टुगेदर, यानी उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें। नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जाँच करें, इस मूक हत्यारे को हराएं। इस थीम के साथ 2026 में यह दिवस मनाया गया। श्रोताओं, नमक का सेवन कम कर, संतुलित आहार लेकर और रोजाना व्यायाम कर और नियमित अंतराल पर बीपी चेक करवाकर हम सभी इससे बचाव कर सकते हैं। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि 1802 में हम्फ्री डेवी ने दुनिया का पहला विद्युत दीपक बनाया था। प्रकाश का आधुनिक इतिहास विद्युत बल्ब के आविष्कार से शुरू हुआ। श्रोताओं, कला और संस्कृति, शिक्षा, चिकित्सा, संचार, विज्ञान और सतत विकास सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकाश और प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकी के योगदान को याद करने और भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में किए गए पहले सफल लेजर प्रयोग की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर वर्ष 16 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। यह दिन प्रकाश के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि यह दिन 1960 में भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की याद में मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कुछ बातें विस्तार से लेजर के बारे में। श्रोताओं, लेजर का मतलब उत्तेजित विकिरण द्वारा प्रकाश प्रवर्धन, यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड रेडिएशन है। यह एक उपकरण है जो परमाणुओं या अणुओं को विशेष तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए उत्तेजित करता है और उस प्रकाश को बढ़ाता है। यह विकिरण की एक बहुत ही संकीर्ण किरण उत्पन्न करता है। लेजर कृत्रिम प्रकाश है। लेजर किरणें बहुत लंबी दूरी तय कर सकती हैं। वे बहुत ही ऊर्जा के साथ प्रकाश को केंद्रित कर सकती है। लेजर के उपयोग की बात करें तो नाजुक चिकित्सा सर्जरी करने में, हीरे या मोटी धातु को काटने के लिए, संचार टीवी और इंटरनेट सिग्नल ले जाने में, लेजर प्रिंटर, बारकोड स्कैनर और डीवीडी प्लेयर में। इसके अलावा इसका उपयोग स्पेक्ट्रोमीटर में भी किया जाता है, जो वैज्ञानिकों को यह पता लगाने में मदद करता है कि चीज़ें किस चीज़ से बनी है। पर्यावरण को बचाने के लिए ज़रूरी है प्रकृति प्रदत्त चीज़ों का न्यूनतम दोहन। पर्यावरण को बचाने के लिए ज़रूरी है प्रकृति प्रदत्त चीज़ों का न्यूनतम दोहन इसलिए करना चाहते हैं, अगर हम पर्यावरण संरक्षण तो करते रहे वृक्षारोपण और जल संरक्षण, और निजी और सरकारी संस्थाएं भी करें पर्यावरण से जुड़े कानूनों का पालन, ताकि विकास की आड़ में ना हो प्रकृति का भया दोहन। यह श्रोताओं, प्रकृति बची रहेगी तभी जीवन बचेगा, इसलिए प्रकृति संरक्षण के जरिए ही हम मौजूदा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम प्रकृति और पर्यावरण की बातें कर रहे हैं। श्रोताओं, ये वो सप्ताह है जब आने वाले 5 जून को मनाया जाएगा पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस। श्रोताओं, हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु रहते हैं और हमारे आसपास के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं, लेकिन लगातार औद्योगिकरण, शहरीकरण और विकास की आड़ में हो रहे अंधाधुंध प्रयोगों से और जनसंख्या के बढ़ते दबाव से पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। पर्यावरण के प्रदूषण के विभिन्न प्रकार के असर दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे जलवायु परिवर्तन का असर हो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि या स्वच्छ वायु सांस लेने के लिए और पीने के लिए स्वच्छ जल, इनकी अनुपलब्धता हो, ये लगातार देखी जा रही है। प्रकृति से छेड़छाड़ के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाएं आज वैश्विक संकट बन गया है, जिसके प्रति लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। 2026 की बात करें तो 2026 में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन जलवायु परिवर्तन की तात्कालिकता पर केंद्रित है, जिसका मुख्य उद्देश्य बढ़ते तापमान, पिघलते ग्लेशियरों और गंभीर मौसम की चुनौतियों के प्रति दुनिया को एकजुट करना है। इस वर्ष के वैश्विक आयोजक अजरबैजान हैं। थीम की बात करें तो इस वर्ष का अभियान जलवायु परिवर्तन पर तत्काल कार्रवाई और एक अस्थायी जीवन शैली को अपनाने पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने, अधिक पेड़ लगाने और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए प्रेरित करना होता है। श्रोताओं, हमने कहा कि इस वर्ष का पर्यावरण दिवस जलवायु परिवर्तन की थीम पर आधारित है, तो क्या हो सकता है जलवायु परिवर्तन का असर, आइए जानते हैं इस विषय पर विस्तार से। एक पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से वार्ताकार हैं डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी।
1: जलवायु परिवर्तन मूल रूप से एक लंबी अवधि तक मौसमीय समयों में परिवर्तन को दर्शाता है। यह परिवर्तन एक या एक से अधिक मौसम अनियमितताओं अथवा घटनाओं के परिणाम के कारण हो सकता है। जलवायु एवं मौसम से संबंधित बातें अक्सर सुनने में आती है। जलवायु शब्द का प्रयोग किसी स्थान विशेष की वातावरणीय दशा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जलवायु और मौसम दोनों ही प्राकृतिक दशा को बताते हैं। जलवायु बड़े भूखंडों एवं लंबे समय के प्राकृतिक दशाओं को दर्शाता है, जबकि मौसम अपेक्षाकृत कम समय के प्राकृतिक दशा को दर्शाता है। मौसम में बदलाव थोड़ा समय में ही हो जाता है, जबकि जलवायु में बदलाव आने में काफ़ी समय लगता है। जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ गलन, अति बर्फबारी, समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी, सुनामी, पाला, आंधी तूफान, ओलावृष्टि, तापमान में वृद्धि एवं अनियमितता इत्यादि, ये सभी मौसमीय परिवर्तन को सिद्ध करते हैं। ये मौसमीय अनियमितताएं प्राणियों एवं वनस्पतियों पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, जिससे इन्हें बदलते परिस्थितियों में सामंजस्य बैठाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्राप्त साक्ष्यों और दिन ब दिन की मौसमीय घटकों में परिवर्तन से यह कहा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन खेती एवं उद्यानिक फसलों को भविष्य में बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। मानव जीवन के रहन सहन, खान पान तथा जीव जंतु सभी इससे प्रभावित होंगे। तापमान में वृद्धि से ग्लेशियर पिघलेंगे और नदियों में क्षमता से अधिक जल के कारण बाढ़ आने की संभावना बढ़ सकती है। एक ओर सूखा कम बारिश की वजह से आएगा और बार बार आएगी, तो दूसरी ओर बाढ़ के आने की बारंबारता बढ़ सकती है। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि से आसपास के शहर के डूबने की संभावना बढ़ सकती है। पौधों और फसलों पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। फसल की उत्पादकता कम होने की संभावना है। जलवायु के अनुसार ही अलग अलग फसलों एवं उद्यानिक फसलों को अलग अलग क्षेत्रों में उगाया जाता है। जलवायु में थोड़ा सा परिवर्तन पौधों की बाहरी बनावट एवं आंतरिक कार्यों पर प्रभाव डालता है। उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है कि सेब की खेती कम ऊंचाई वाले स्थानों से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में स्थानांतरित हो रहे हैं। पिछले एक शताब्दी से जलवायु में लगातार एवं तेजी से परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन के लिए मनुष्य जाति ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। अनुमानित जलवायु परिदृश्य को अगर हम देखें तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि IPCC ने एक रिपोर्ट दिया है, उसके अनुसार इस सदी के अंत तक पूरे विश्व का तापमान 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच बढ़ने की संभावना है। भारतीय क्षेत्र में 2020 तक 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 2050 तक 0.88 डिग्री से 3.16 डिग्री सेंटीग्रेड एवं 2080 तक 1.56 डिग्री सेंटीग्रेड से 5.44 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने की संभावना है। तापमान में वृद्धि होने से जलवायु परिवर्तन के अन्य कारकों जैसे गर्मी की चरम पर होना, ठंड तरंगे, पाला, सूखा, बाढ़ इत्यादि में भी परिवर्तन आएगा। तापमान में वृद्धि होने से हिमालय के बर्फ 1962 की तुलना में 2077 वर्ग किलोमीटर से घटकर वर्तमान में 1628 वर्ग किलोमीटर रह गए हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी बिहार के कुछ भागों पर अधिक पड़ने की संभावना है। देखा गया है कि ठंडे मौसम में उच्चतम एवं न्यूनतम तापमान में अधिक बदलाव आ रहा है। दिसंबर तथा फरवरी महीनों को छोड़कर और सभी महीनों में वर्षा में भी कमी हुई है। पौधों की बढ़वार के समय अधिक तापमान होने से पौधे प्रकाश के सीधे संपर्क में आ जाते हैं, जिससे पत्तियां, तने तथा फल सभी को क्षति होती है। जब वायुमंडल में आर्द्रता कम हो जाती है और हवाएं तेज चलने लगती हैं, तब उच्च तापक्रम के प्रभाव से पौधों में अत्यधिक हानि होती है। इससे पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी तेज हो जाती है, जिससे पौधों की पत्तियां तथा टहनियां सूखने लगती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण भूमिगत जल भी प्रभावित हुआ है, जिसके स्तर में 70 से 120 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक की गिरावट दर्ज की गई है तथा भूजल की गुणवत्ता भी खराब होती जा रही है, जिससे भविष्य में भूजल का कृषि के लिए उपयोग बहुत महंगा होगा। आने वाले 2100 ईस्वी तक विश्व के 80% भूजल की गुणवत्ता उपयोग लायक नहीं होगी, जिससे बचने के लिए वर्तमान जल उपयोग तकनीक को बदलना होगा। जलवायु परिवर्तन पशुओं को भी प्रभावित करेगा, जिससे दुग्ध उत्पादन, मांस उत्पादन आदि भी प्रभावित होंगे। बीमारियों का प्रकोप बढ़ने की संभावना है, जिससे पशु और मानव दोनों ही प्रभावित होंगे। समुद्रों और नदियों के पानी का तापमान बढ़ने के कारण मछलियों और जलीय जंतुओं की प्रजनन क्षमता और उपलब्धता में कमी आएगी। सूक्ष्म जीवाणुओं और कीटों पर भी प्रभाव पड़ेगा। कीटों की संख्या में वृद्धि होगी तो सूक्ष्म जीव नष्ट या कम होंगे, इनकी संख्या में भी कमी होती जाएगी। वर्षा आधारित क्षेत्रों की फसलों को अधिक हानि होगा, क्योंकि सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता की कमी होती जाएगी। इस प्रकार देखें तो जलवायु परिवर्तन के सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नज़र आएंगे और हम लोगों को उसमें जीना सीखना होगा। जल संचयन तथा रहन सहन में परिवर्तन कर हम जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बन जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने एवं अन्य हरित गृह गैसों जैसे मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन एक भयंकर रूप लेता जा रहा है।

0: इसलिए इन गैसों में कमी लानी होगी। अतः इस बात की आवश्यकता आज पड़ रही है कि जलवायु स्मार्ट जीवन शैली कैसे बनाई जाए जिससे इन सारी चुनौतियों को डटकर मुकाबला कर सकें और सतत जीवन बना रहे। जलवायु स्मार्ट कृषि भी एक रास्ता है जिसे अपनाकर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कृषि पर कम किया जा सके तथा उत्पादकता में वृद्धि लाई जा सके। जलवायु के प्रति अनुकूलन और हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी के साथ साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रीय तथा प्रदेश स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वर्षा पर आधारित खेती में भी सुधार लाने की आवश्यकता है। अतः इन सब बातों पर ध्यान देने से जलवायु परिवर्तन के असर को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा।
1: श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन का असर, इस विषय पर अभी हमने जाना विस्तार से। आइए हम सभी संकल्प लें कि पर्यावरण को संरक्षित करेंगे, क्योंकि प्रकृति को बचाने का यही एकमात्र विकल्प है। श्रोताओं, अब वक्त है हमारे कार्यक्रम के स्तंभ माइंड टेस्ट का। इस स्तंभ में हम हर सप्ताह दो सवाल पूछते हैं जिसके जवाब आपको डाक या ईमेल के द्वारा हमें भेजने होते हैं, और सही जवाब भेजने वालों के नाम हम अपने कार्यक्रम में भी शामिल करते हैं। तो इंतजार किस बात का, आइए सबसे पहले जान लेते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए सवालों के बारे में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह का हमारा पहला सवाल था कि वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है, जिसका सही जवाब है बल्ब के आविष्कार के लिए। और पिछले सप्ताह का हमारा दूसरा सवाल था कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, जिसका सही जवाब है 23 मई। और इन सवालों के सही जवाब हमें लिख भेजे हैं आप सभी श्रोताओं ने। आव्या सिंह और आत्मिक सिंह ने रेड क्रॉस के निकट भागलपुर से, उज्जवल कुमार और मानस राज ने तिलका मांझी भागलपुर से। आप सभी श्रोताओं को हमारा कार्यक्रम ध्यान से सुनने के लिए और सही जवाब हमें लिख भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब नोट कर लें आज के सवालों को। आज का हमारा पहला सवाल है कि सूर्य केंद्रित सिद्धांत के लिए कौन से वैज्ञानिक प्रसिद्ध हैं। सवाल एक बार फिर से सुन लें, सूर्य केंद्रित सिद्धांत देने के लिए कौन से वैज्ञानिक प्रसिद्ध हैं। और आज का हमारा दूसरा सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सवाल एक बार फिर से सुन लें, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है।
1: श्रोताओं, सवाल तो आपने नोट कर ही लिया होगा, अब नोट कीजिए हमारा पता और लिख भेजिए इन सवालों के सही जवाब हमें डाक या ईमेल द्वारा। हमारा पता है कार्यक्रम विज्ञान वाणी अनुभाग, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी भागलपुर, पिन 812001। और हमारा ईमेल है phairbhagalpur@gmail.com, यानी phairbhagalpur@gmail.com। हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों और ईमेल्स का। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का विज्ञानवाणी कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि विज्ञानवाणी का अंक आपको पसंद आया होगा। विज्ञानवाणी के माध्यम से आपको बहुत सारी विज्ञान के क्षेत्र में नई जानकारियां मिली होंगी, और इन रोचक जानकारियों से आप विज्ञान के अपने ज्ञान को और बढ़ा पाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो श्रोताओं, घड़ी की सुई इशारा कर रही है और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो इस वादे के साथ ये होगी आपसे फिर मुलाकात, इसी दिन इसी जगह इसी समय, यानी आकाशवाणी केंद्र भागलपुर पर। तब तक के लिए मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त पीयूष आनंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञानवाणी, प्रस्तुत करता थे सौरभ कुमार। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरसंगम में सुनी पंडित भजन सोपोरी का संतूर वादन राग पटदीप में। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं सुधीर पांडे।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरसंगम में अभी आप सुन रहे थे पंडित भजन सोपोरी का संतूर वादन राग पटदीप में। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे सुधीर पांडे। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकरंग में सुनिए मिथिलेश महाराणा के गाए लोकगीत। कार्यक्रम के आरंभ में इनसे सुनते हैं शिव भजन।

आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक रंग। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, कहीं जाइएगा नहीं, हम बस यूं गए और यूं आए, बने रहें आकाशवाणी भागलपुर के संग।

0: AIR at 90.
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग। श्रोताओं, लोकरंग कार्यक्रम को हम पुनः जारी रखेंगे प्रादेशिक समाचार के बाद दोपहर 1:20 पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:10 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: 1:10 होने को हैं। ये वक्त है प्रादेशिक समाचार का।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में रांची की राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का किया जिक्र। गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर से बातचीत कर दी बधाई। CUET UG तकनीकी दिक्कत पर NTA ने जताया खेद। 3,765 अभ्यर्थियों के लिए पुनर्परीक्षा की तैयारी। NTA जल्द करेगा नई तारीख की घोषणा। रांची के जलाशयों और नदियों से अतिक्रमण हटाने का दिया गया निर्देश। हरमू नदी, कांके और धुरवा डैम पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज। कल से महंगी होगी बस यात्रा। रांची हजारीबाग समेत कई रूटों पर 30% तक बढ़ा किराया। यात्रियों के साथ माल ढुलाई पर भी पड़ेगा असर। और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज शाम होगा IPL का फाइनल। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस में होगी।

0: ताबी जंग। अरब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में देश भर के करीब 800 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने विभिन्न स्पर्धाओं में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ियों कुरविंदर सिंह और विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 100 मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ियों गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर से बातचीत भी की। खिलाड़ियों ने अपने अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा किए।
2: संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूँ कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले।
3: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
2: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
4: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मौजूदा गर्मी के मौसम में विशेष सावधानी बरतने और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आज आकाशवाणी के मासिक कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए और तेज धूप में बाहर निकलते समय सतर्क रहना चाहिए।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG के दौरान हुई तकनीकी गड़बड़ी को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने छात्रों और अभिभावकों से माफी मांगी है। NTA के अनुसार 30 मई को आयोजित परीक्षा की पहली पाली में कुछ परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी खराबी के कारण परीक्षा समय पर शुरू नहीं हो सकी। एजेंसी ने बताया है कि इस समस्या से प्रभावित कुल 3,765 अभ्यर्थियों को पुनर्परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। पुनर्परीक्षा की तिथि और प्रभावित उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। रांची जिले में जल सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में प्रमुख जलाशयों और नदियों को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में हरमू नदी के जलग्रहण क्षेत्र, कांके डैम, थुरवा डैम और अन्य प्रमुख जलाशयों के आसपास से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर अतिक्रमण की सूची तैयार करने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार, एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया डीएनडी न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से आयोजित झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा आज राज्य भर के 94 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा में 45,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। राजधानी रांची में सबसे अधिक 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां बड़ी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए आयोजित यह परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू हुई और दोपहर 12 बजे तक चली। कोडरमा जिले में 1 जून से बस यात्रा महंगी हो जाएगी। जिला बस ऑनर्स एसोसिएशन ने डीजल, टायर, मोटर पार्ट्स और टोल टैक्स की बढ़ती लागत को देखते हुए बस किराए में 15-30% तक बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। झुमरी तलैया में आयोजित एसोसिएशन की बैठक में यह फैसला लिया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने बताया कि बढ़ी हुई दरें 1 जून से लागू होंगी। इससे झुमरी तलैया से रांची, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, चतरा, नवादा और रजौली सहित विभिन्न मार्गों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक किराया देना होगा। सिमडेगा जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ जलडेगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना क्षेत्र के गांगू टोली स्थित शनि मनी ढाबा में छापेमारी कर पुलिस ने विभिन्न ब्रांडों की अंग्रेजी शराब बरामद की है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धर्मदेव पासवान ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
5: जंडेगा थाना क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया था, जिसमें लगभग 8 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है और बियर भी बरामद की गई, साथ ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,70,000 रुपए प्रति किलो है। बोकारो जिले के बीएसएल की एलएच कॉलोनी में एक घर में भीषण आग लगने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मिली जानकारी के अनुसार घर में रखा मिट्टी तेल का एक ड्रम आग की चपेट में आ गया, जिसके बाद आग तेजी से फैलकर पूरे घर में फैल गई। भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम के थाईलैंड दौरे के लिए झारखंड के युवा खिलाड़ी आदर्श राज को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने विश्वास जताया कि आदर्श राज के नेतृत्व में भारतीय टीम थाईलैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन करेगी और देश का नाम रोशन करेगी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले यह खिताबी मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में रांची की राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का किया जिक्र। गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर से बातचीत कर दी बधाई। CUET UG तकनीकी दिक्कत पर NTA ने जताया खेद। 3,765 अभ्यर्थियों के लिए पुनर्परीक्षा की तैयारी। NTA जल्द करेगा नई तारीख की घोषणा। रांची के जलाशयों और नदियों से अतिक्रमण हटाने का दिया गया निर्देश। हरमू नदी, कांके और धुरवा डैम पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज। कल से महंगी होगी बस यात्रा। रांची हजारीबाग समेत कई रूटों पर 30% तक बढ़ा किराया। यात्रियों के साथ माल ढुलाई पर भी पड़ेगा असर। और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज शाम होगा आईपीएल का फाइनल। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस में होगी खिताबी जंग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन
6: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लोकरंग कार्यक्रम को पुनः जारी रखते हुए मिथिलेश महाराणा की आवाज में सुनते हैं कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
2: तिलका मांझी तो बहुत।
1: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
3: बख्शी जगबंधु तो
2: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
4: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
5: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। लोकरंग कार्यक्रम को जारी रखते हुए मिथिलेश महाराणा की आवाज में सुनते हैं कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंग, कलाकार थे मिथिलेश महाराणा। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए अंगिका पत्रिका कार्यक्रम अंग दर्पण, प्रस्तुत करता है अतुल कुमार प्रियदर्शन।

स्वागत करै छियै सभ्य श्रोता भाई बहिन के हुनको पसंदीदा कार्यक्रम अंग दर्पण में। सभ्य का अकलू के नमस्कार। आरो बताबो की हाल चाल। देखो कुछ दिन पहिने झोर पानी देवे करलकै तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गेलै, लेकिन फेनू देखो धीरे धीरे गरमावे लगलै मौसम, यानी कि गर्मी फेनू धापी रहलो छै। एना में थोड़ा अपनो सेहत के ख्याल रखो, कने के सेहत के ख्याल रखबो तभी जिंदगी अच्छा होते। और उस सेहत के ख्याल वास्ते की चाहिए कि समय सही समय पर जगना, सही समय पर सोना और व्यायाम।

करना, घूमना फिरना, अच्छा खाना पीना खाना है तो अच्छा बात छे, लेकिन आजकल कुछ एहनो हो जाए छे कि आदमी जे छे वो तंबाकू के सेवन कर लागे छे, जे कि गलत बात छे। गलत बात की एकदम है से गलत बात छे, कहना कि तंबाकू जे छे वो हमरो सनी के जीवन लीली ले छे, निगली ले छे, वो हमरो जीवन खत्म करे पर तुली जाए छे। ते वास्ते तंबाकू का जे छे ना कहो, तंबाकू के सेवन नहीं करो तो अच्छा होते। यही समझाए वास्ते जे छे हर साल आज के दिना हम सनी मनावे छे विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू सेवन के घातक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलावे के वास्ते हर साल 31 मई, आज तारीख जानी रहलो छो 31 मई के, तो हर साल 31 मई का विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनेलो जाए छे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य राष्ट्र द्वारा वर्ष 1987 में करलो गेलो छले, ताकि तंबाकू महामारी से हुए वाला मृत्यु आरु बीमारी पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करलो जा सको। कहना देखो तंबाकू से बहुत आदमी मरी रहलो छे, तो ये वास्ते हिंडा सब आकर्षित हुआ कि देखो कितना आदमी तंबाकू के सेवन से अपनो जीवन खत्म कर रहलो छे, या जाने अनजाने में तंबाकू के सेवन के लत पड़ी जाए छे आ ओकरा से हुने जाने नहीं छे कि ई कितना हानिकारक छे या हमरा मृत्यु दिए पड़े छो, तो ओकरो मृत्यु तक हो जाए छे। यही वास्ता है ध्यान आकर्षित करे वास्ता कि तंबाकू खतरनाक छे, तंबाकू के सेवन नहीं करना छे। यही वास्ता हम असनी हर साल 31 मई का विश्व तंबाकू निषेध दिवस, हाँ तंबाकू निषेध करना छे, यानी कि तंबाकू के उपयोग या सेवन नहीं करना छे। वर्ष 1988 में संकल्प WHA 42.19 यानी 42.19 पारित करीकर हर साल 31 मई का विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनावे के आह्वान करलो गेले। तंबाकू के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर पड़े वाला प्रभाव पर भी थोड़ा चर्चा होना चाहिए, कहने की तबीयत जानते हैं कि तंबाकू से हमारे शरीर पर की हानिकारक प्रभाव पड़े छे। तो तंबाकू के लत का दुनिया भर में रोके जा सके वाली मौत आरु विकलांगता के सबसे बड़ा कारण मान लो जाए छे, यानी तंबाकू से जैसे मौत हो जाए छे या फिर विकलांगता भी होय छे, आरु एहनो कर लगे छे आदमी की थोड़ा लगे छे कि मत आ गेलो रह, तो आर एनामे जे छे सबसे ज्यादे एकरा से आदमी जे छे ओ लत भी लत के शिकार हो रहलो छे। तंबाकू के सेवन से हर साल लाखों लोग के मौत होय छे। भारत में हर साल लगभग 35 मिलियन मौत तंबाकू के सेवन के वजह से होय छे, आरो है तंबाकू के दूसरो बड़ो उपभोक्ता आरो उत्पादक देश भी छिके। विश्व स्तर पर हर साल लगभग 80 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू के सेवन से होय छे, जकरा में से 5 लाख भारतीय शामिल छे। धूम्रपान कैंसर, दिल के दौरा, ब्रेन स्ट्रोक, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जकरा कि संक्षिप्त रूप में COPD कहे छे, आरो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज PVD से मौत के कारण बने छे। विश्व में धूम्रपान करे वाली महिला के संख्या भी बढ़ी रहलो छे, है तो आरो चिंतावला बात छे, कहना कि ओकरा जे छे महिला आरो अगर जे ओकरो जे बच्चा छे ओकरो पर हानिकारक प्रभाव पड़े छे, तो महिला के अतिरिक्त खतरा के सामना करे ला पड़े छे, जना कि प्रतिकूल गर्भावस्था के परिणाम, महिला विशिष्ट कैंसर जना कि स्तन, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर आरो हृदय संबंधी जोखिम में वृद्धि होना है तो बहुत खतरनाक बात छे। ते वास्ते जैसे केकरो भी तंबाकू के सेवन नहीं करना छे आरो एकरा बारे में सबको बताना छे, अगर हम जाने छे तो हम तोरा बतेबे तो दूसरा के बताबो, वह ओकरा बतेते एना करके सब जागरूक होते तो तंबाकू के उपयोग अपने आप कम हो जते, और सरकार भी एकरा प्रति सजग छे, जागरूक छे, तो सबके जागरूक होना छे। चलो एकरा आरो हम ढेर को बात करबे, लेकिन अभी सुने छे निमन रंग झूमर।

गीत संगीत हमरा सनी के जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करे छे और सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होते तब जब कि हम सनी तंबाकू छोड़बे और सही स्वास्थ्य पैबे। तो चलो एकरा पर आरो हम सनी ढेर को बात करबे, लेकिन अभी सुनै छिए है संदेश।

0: संदेश के सुनला के बाद एक बार फेनु से सभ्य श्रोता भाई बहन के स्वागत करे छे हुनको पसंदीदा कार्यक्रम अंग दर्पण में। और देखो हम असनी है अंग प्रदेश में रहे छे और अंग प्रदेश के भाषा छे अंगिका। अंगिका कत्ता मिठो छे है हम असनी जाने छे और बोले में लिखे में उतने आसान छे, लेकिन बोले लिखे में पढ़े में सबसे ज्यादा जरूरी की छे ओकरो व्याकरण पर पकड़ होना चाहिए। तो चलो अंगिका भाषा और व्याकरण है विषय पर हम असने एक पूर्व प्रसाद वार्ता सुनी छे वार्ता कार्य के डॉक्टर रमेश मोहन शर्मा।
1: अंगिका के प्राचीन नाम आंगी छिले। सिद्धांत कौमुदी के प्रणेता भट्टाजी दीक्षित ने अष्टाध्यायी के सूत्र नौ प्राच्य भर्गा दियो धियो दिव्य के व्याख्या करते हुए पंचाली वैदर्भी आंगी वंगी और माघधी का प्राच्या कहने छे। एकरा से ई अवश्य स्पष्ट हो जाए छे कि प्राचीन अंग देश के भाषा के नाम आंगी छिले। ई भी ध्यातव्य छे कि प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पठन पाठन के माध्यम आंगी ही छिले, जे संस्कृत भाषा के समांतर चले छिले। कालक्रम में प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्रकृति के प्रभाव में भूमिगत हो गेले। एकरा साथे साथ अंग भाषा संस्कृति के सब संपदा नष्ट प्राय हो गेले। केवल अंग क्षेत्र के जनता के बोली में मौखिक साहित्य जीवित रहले। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंग क्षेत्र के भाषा के नाम अंग भाषा के रूपों में प्रकट होले। 1956 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने पटना में अंग भाषा परिषद के स्थापना करल के। श्री गदाधर प्रसाद अम्बस्ट परिषद के सचिव चुनलो गेले तथा डॉक्टर सुधांशु परिषद के अध्यक्ष होले। डॉक्टर महाश्री सिंह महेश, डॉक्टर डोमन साहु समीर, डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा, डॉक्टर परमानंद पांडे, डॉक्टर नरेश पांडे चकोर आरनी प्रवृत्ति अंगिका के विद्वान अंगिका के विकास के लेली कमर कसल के। 1957 ईस्वी में पंडित राहुल संकृत्यायन ने अंग क्षेत्र के भाषा के नाम अंग भाषा के स्थानों पर अंगिका राखे के

अंग भाषा परिषद के दिल के। कुछ समय के बाद अंग भाषा परिषद ने पंडित राहुल सांकृत्यायन के प्रस्ताव का स्वीकार करी लेल के। ये प्रकार से या अंग प्रदेश के भाषा के आधुनिक नाम अंगिका लोक प्रचलित हो गेले। प्राचीन काल में अंग देश के भाषा के लिपि के नाम अंग लिपि छेले। अंगिका भाषा के ध्वनि वैज्ञानिक शोध के आधारों पर ही स्पष्ट हो गेलो छे कि अंग लिपि के निर्माण देवाधिदेव श्री गणेश जी ने करने छेले। अंगिका लोक संस्कृति में एक स्पष्ट प्रमाण मिले छे। सुमरो यादि गणेश ठाकुर पोथी में पहले लिखे। ध्यातव्य छे कि गणेश जी एक कुशल चित्रकार भी छिले। उन्हीं जय लिपि के निर्माण करल के वह लिपि के नाम अंग लिपि पड़ले। अंग के तात्पर्य उच्चारण अवयव अर्थात वाक ध्वनि के उच्चारण के अवस्था में उच्चारण अवयव अर्थात अंग के आकृति। श्री गणेश जी ने यही उच्चारण अंग के आकृति का चित्रात्मक रूप देकर भाषा का लिपिबद्ध करल के। यह कारण छेले कि उच्चारण अवयव के आकृति के आधारों पर निर्मित लिपि का अंग लिपि मान लो गेले। अष्टाध्यायी के सूत्र आकृति उपदेशात सिद्धम पाणिनि 1.2.49 के आधार पर भी ई सिद्ध हो जाय छे कि वाग ध्वनि के उच्चारण के अवस्था में उच्चारण अवयव के एक निश्चित आकृति बने छे। वही आकृति के प्रतीक वर्ण या अक्षर छिके। ई भी ध्यातव्य छे कि वर्ण निर्माण विधि कहीं कालांतर में लिपि नाम से अभिहित करलो गेले। चूंकि गणेश जी अंग क्षेत्र के लिपि देवता छेले, यही खातिर अंग क्षेत्र के जनजीवन ने अपनो लिपि देवता का अपार श्रद्धा भक्ति निवेदित करल के आरु हुनका पीढ़ी दर पीढ़ी स्मरणीय बनेने चलो आवी रहलो छे। कालांतर में जब अंग लिपि के अंग शब्द के अर्थ संदिग्ध हुआ लगले अर्थात अंग शब्द के अर्थ कोई अंग देश कोई वाक ध्वनि अवयव तक कोई अंग देश के राजा अंग के अंग से संबंध लगावे लगले। वही संदेह का दूर करे वास्ते प्राचीन आचार्य ने श्री गणेश जी के बनेलो लिपि का देवनागरी लिपि नाम रखल के। देवनागरी लिपि के तात्पर्य हो छे देवता में जे नागर अथवा चतुर छे अर्थात श्री गणेश जी के बनेलो लिपि ही देवनागरी लिपि कहलो जाय छे। ई भी ध्यातव्य छे कि देवनागरी शब्द गणेश जी के व्यक्तिवाची नाम छिके। यह नाम से ये स्पष्ट हो जाय छे कि देवनागरी लिपि के स्रष्टा गणेश जी ही छिके। ध्यातव्य छे कि जय लिपि के स्रष्टा के नाम के पता नहीं चले छे वह लिपि के स्थानवाची करी देलो जाय छे जैसे बंगला लिपि असमिया लिपि आदि। अंगिका भाषा में अनुस्वर के सिद्धांत निरूपित होलो छे। इस शिक्षा सिद्धांत अंगिका भाषा के विशेषता मान लो जाय छे किंतु समयाभाव के कारण ये अंगिका व्याकरण में एकरो चर्चा अन्यत्र होते। अंगिका व्याकरण में दूटा विशेष ध्वनि के उच्चारण प्रयोग पैलो जाय छे जैसे अ आरु ओ। अ ध्वनि के प्रयोग अंगिका के शब्द जैसे खाय क जाय क उठ बैठ आबो आब जाय अन्य शब्द में पैलो जाय छे। दीर्घ व के ध्वनि होय छे ओ। ओ ध्वनि के दीर्घ भी एकरा दीर्घ ओ भी कहे छे। अंगिका भाषा के आबो उठो बैठो अन्य शब्दों में दीर्घ व के प्रयोग पैलो जाय छे। अंगिका भाषा में ओ जोड़ वो बराबर ओ होय छे। आ नहीं अंगिका में प्रत्येक मूल स्वरों का दीर्घ स्वर बनाय के लेली विकारी या लुप्त ओकार के प्रयोग होय छे। एकरा लेली अंगिका व्याकरण दीर्घ

0: स्वर के सिद्धांत के निर्माण करलो गेलो छे। दीर्घ स्वर सिद्धांत ई छे कोई मूल स्वरो के दीर्घत्व के अवस्था में उच्चारण अवयवों के आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होइ छे, केवल प्राण वायु के निकास के मात्रा में वृद्धि होइ छे। ध्यातव्य छे कि मूल ध्वनि के दीर्घत्व के अवस्था में केवल प्राण वायु के मात्रा में दू गुना वृद्धि होइ छे। जैसे ओ जोड़ ओ बराबर ओ, आ जोड़ आ बराबर आ, ए जोड़ ए बराबर ए, ओ जोड़ ओ बराबर ओ। अर्नी अंगिका भाषा में हल स्वर के स्थापना होलो छे। अंगिका भाषा में हलंत के हल स्वर की मात्रा मानलो जाय छे। तैत्री प्रातिशाख्यम के सूत्र व्यंजनम स्वरांगम के अनुसार अंगिका व्याकरण में हल वर्ण अर्थात कोहलंत चोहलंत टोहलंत पोहलंत आरणि के उच्चारण में भी स्वर के स्थापना देलो गेलो छे। ये दृष्टि से कोहलंत के हलंत के हल स्वर की मात्रा मानलो जाय छे। अंगिका भाषा में संधि नियम विशेष प्रकार से उल्लेखित होलो छे। अंगिका संधि में केवल स्वर संधि का प्रधानता मिललो छे। अंगिका भाषा में केवल स्वर संधि के स्थापना देलो गेलो छे, व्यंजन आरु विसर्ग संधि के नहीं। अंगिका भाषा प्रवृत्ति के अनुसार अंगिका में एहनो एक भी व्यंजन नहीं छे जकरा में बिना स्वर के उच्चारण होय छे। दूसरो बात ई छे कि विसर्ग के उच्चारण अंगिका में हो के समान होय छे। ये दृष्टि से विसर्ग संधि के संभावना भी स्वतः समाप्त हो जाय छे। अंगिका स्वर संधि के तीन भेद, पूर्ण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि। पूर्ण स्वर संधि जब हल स्वर के बाद कोई मूल स्वर या अनुस्वर आवे छे तो हल स्वर परवर्ती स्वर या अनुस्वर के साथ मिलकर पूर्ण स्वर बनी जाय छे। जैसे ओ जोड़ ओ बराबर ओ, ओ हलंत जोड़ ओ बराबर ओ।
1: इतना अच्छा सा फरछाए के बताए वास्ते वार्ताकार डॉक्टर रमेश मोहन शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद दे छे। और कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हो छे। मिलवे अगला कार्यक्रम में, तब तक हमरा दाविदा, सबका अकलू के नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे अंगिका पत्रिका कार्यक्रम अंग दर्पण, प्रस्तुत करते थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार पटना केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। मन की बात कार्यक्रम की यह 134वीं कड़ी थी। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से भीषण गर्मी को लेकर इन दिनों अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय करके ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करना उपयोगी है। उन्होंने कहा कि ये पेय पदार्थ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते हैं और इनमें पीढ़ियों का अनुभव समाहित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 प्लेटें भी मिली हैं। प्रधानमंत्री ने झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता की चर्चा की। इसमें लगभग 800 एथलीटों ने भाग लिया था। श्री मोदी ने गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। उन्होंने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारा मंडल देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और कार्यक्रम में विशेष तौर पर बिहार का उल्लेख किए जाने पर प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में भीषण गर्मी से बचाव के लिए बिहार के पारंपरिक पेय सत्तू तथा प्रसिद्ध जरदालु आम का उल्लेख करना राज्य की विशिष्ट पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना है। श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय उत्पादों और जनजीवन से जुड़े विषयों का उल्लेख राज्यवासियों के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री स्वामीनाथन ने कहा कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, गोपालगंज, सीवान, सारण, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण सहित राज्य के कई क्षेत्रों में आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा

हवा चलने की भी संभावना है। अररिया जिले में पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर अलग अलग क्षेत्रों से 900 लीटर देसी विदेशी शराब के साथ

0: श्री राम मोदी ने गुरुवेंद्र वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरेंद्र वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की। वज़ीर आज़म ने कहा कि इल्म फलकियात ने मुल्क की हर नस्ल में शौक पैदा की है। उन्होंने कहा कि इल्म फलकियात मुल्क में तेज़ी से मकबूल हो रहा है। जनाब मोदी ने नौजवानों से इल्म फलकियात क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की। वज़ीर आज़म ने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें अहम किरदार अदा किया। जनाब मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन तहफ़ नदी के हयातियाती तनवो और बेशकीमती कुदरती विरासत का तहफ़ भी होता है। वज़ीर आज़म ने चेन्नई के पहले हिंदू स्कूल का तस्करा किया जिसने गुज़श्ता साल अपने 50 साल मुकम्मल किए थे। उन्होंने कहा कि इस स्कूल नेटवर्क ने मुल्क के तालीमी और सकाफती वक़ार को बुलंद करने में अहम किरदार अदा किया है। जनाब मोदी ने मुल्क के आवाम से अपील की है कि वह अपने आस पास समाज की बेहतरी के लिए मुसलसल काम कर रहे लोगों को पहचानने और ख़ुद भी अच्छे कामों से जुड़ें। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को सुना और प्रोग्राम में ख़ास तौर से बिहार का जिक्र किए जाने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। जनाब चौधरी ने कहा कि प्रोग्राम में शदीद गर्मी से बचाव के लिए बिहार की रवायती मशरूब सत्तू और मशहूर जरदालू आम का तज़किरा रियासत की ख़ास शनाख्त को कौमी सतह पर जाहिर करना है। जनाब चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म के ज़रिए बिहार की शानदार सकाफती विरासत, मुकामी पैदावार और आम जिंदगी से जुड़े मौजूदात का तज़किरा रियासत के आवाम के लिए फ़ख्र एजाज़ का बाइस है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने 27वें बहरिया सरबराह की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की जगह ली है। जिम्मेदारी संभालने के बाद एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा कि मौजूदा हालात के तनाजुर में बहरिया की जदीदकारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसे आला मियार की जंगी सलाहियत से लैस किया जाएगा। महकमे मौसमियात ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, गोपालगंज, सीवान, सारण, शेखपुरा, मशरकी चंपारण और मगरबी चंपारण समेत रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी इम्कान है। अररिया जिले में पुलिस ने छापेमारी मुहिम चलाकर अलग अलग इलाकों से 900 लीटर शराब के साथ 41 लोगों को गिरफ्तार किया है। भोजपुर जिले में साइबर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए करोड़ों रुपये की ठगी करने का इल्ज़ाम है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम है इस अंतराल के बाद।

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद 2:15 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा

0: व्यवस्था की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शन 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद ही बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए

0: बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष है। ऐसे ही छाए रहिए।
2: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
3: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
2: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
1: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूँगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
2: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
2: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
2: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
4: नेवी, एयरफोर्स,
5: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
4: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
2: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही हुर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्ते।
0: ये आकाशवाणी
6: आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत।

फरमाइशी फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को मीनू का प्यार भरा नमस्कार। कहते हैं दोस्तों कि कुछ बातें होठों तक आकर रुक जाती हैं और कुछ एहसास कागज पर उतरकर खत बन जाते हैं। कभी डाकिये के थैले से निकली चिट्ठियां दिलों की धड़कनें लेकर आती थी, आज भी आती हैं, पर आज वही जज्बात ईमेल की रोशनी में भी हमारे पास पहुँचते हैं। आपके प्यार भरे पत्रों, खूबसूरत संदेशों और स्नेह से भरे ईमेल ने हमारे इस महफिल संगीत को फिर से रोशन कर दिया है। हर चिट्ठी में किसी की याद बसी है, किसी की मोहब्बत की दास्तान है, तो कहीं दोस्तों और उनका अपनापन मुस्कुरा रहा है। तो आइए खोलते हैं श्रोताओं के दिल से निकले उन खूबसूरत खतों के पन्ने, पढ़ते हैं आपके प्यार भरे संदेश और सजाते हैं एक ऐसी सुरमई महफिल जहां हर गीत किसी न किसी दिल की फरमाइश बनकर गूंजेगा। तो आइए सुनते हैं आपका अपना फरमाइश फिल्म संगीत कार्यक्रम, जिसमें गीत होंगे आपकी पसंद के और साथ होगा आपके प्यार और विश्वास का। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है गीतों, यादों और मोहब्बत भरे खतों का ये खूबसूरत सा सफर। पहले उन श्रोताओं के नाम बता दूं जिन्होंने अब जो गाना आप सुनने वाले हैं उनकी फरमाइश भेजी है। आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लालूचक भागलपुर से सागर, बादल, चेतना, श्रीमती गायत्री देवी, विष्णु कुमार चौधरी, रामदेव प्रसाद चौधरी, चांदपुर गोगरी जिला खगड़िया से आप हैं जानकी प्रसाद मंडल, रीता देवी, रेखा, पूनम, नंदू मंडल और घर के सभी सदस्य। उत्तम नगर नई दिल्ली से आप हैं गौरव मदन, अनिल, मानसी और कविता अरोड़ा। आप हैं भिकनपुर भट्टा रोड भागलपुर से गणेश पासवान और सुधा पासवान। कहते हैं दोस्तों कि चिट्ठियों का रिश्ता भी बड़ा खूबसूरत होता है। किसी खत में किसी की याद होती है, किसी में इंतज़ार, तो किसी ने दिल के वो सवाल जो जुबां तक नहीं आ पाते वो पूछा है, वो बताया है। बल्कि आज हमारे पास भी एक बहुत प्यारा सा खत आया है जिसमें हमारे श्रोता ने अपने किसी अजीज की याद में एक बेहद मधुर गीत सुनने की फरमाइश की है। कहते हैं कि जब दिल किसी का इंतज़ार करता है तो हवाओं से भी बातें करने लगता है, फिर हर आती जाती बयार से यही पूछता है कि कहीं वो खुशबू, वो आहट, वो पैगाम तो साथ नहीं लाई। ऐसे ही नाजुक जज्बातों से सजा है ये गीत, जिसमें दिल हवा और घटाओं से अपने सपनों की खबर पूछता है। तो श्रोताओं, इसी दिलकश फरमाइश पर पेश है फिल्म गजब का ये खूबसूरत सा नगमा। स्वर है लता जी के, बोल है आनंद बख्शी साहब के और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए आप सबों की फरमाइश पर सुनते हैं ये गाना।

शुदो, अभी अभी हमारे हाथ में एक बहुत ही प्यारा सा खत आया है। खत के हर लफ्ज़ में किसी की याद है, किसी की मुस्कान है और उन एहसासों की खुशबू है जिन्हें शब्दों में पूरी तरह बयां करना शायद आसान नहीं होता। सच ही तो है, प्यार कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे सोच समझ कर किया जाए। ये तो एक ऐसा एहसास है जो चुपके से दिल में उतर जाता है, न कोई दस्तक देता है न कोई इजाजत मांगता है। बस किसी की बातों, किसी की सादगी, किसी की आवाज या किसी के मुस्कान से दिल का रिश्ता जुड़ जाता है। इसलिए तो कहा गया है कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। हमारे श्रोताओं ने भी अपने इसी खूबसूरत एहसास के नाम ये गीत फरमाया है। तो आइए मोहब्बत की मीठी सी सरगम और दिल के अनकहे जज्बातों के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा। लेकिन उससे पहले फरमाइशकर्ता के नाम बता दें आपको। मधेपुरा अनिरुद्ध चौक से आप हैं मीना ठाकुर, राज ठाकुर, मुरारी ठाकुर, ऋषि ठाकुर, प्रेमचंद ठाकुर, सुभाष मिश्रा, भवानी, लव, कुश और किशनगढ़। अजमेर से आप हैं शैलेश शाह, नौगछिया मुमताज़ मोहल्ला से जफर अंसारी, अतहर अंसारी, शौकत अंसारी और परिवार के लोग, कहलगांव पूरब टोला वार्ड नंबर 15 पांडे गली से सुजीत रॉय, दीपांकर रॉय और तमाम रॉय परिवार, मोहल्ला सरवुद्दीन चकसी, मोहम्मद शहजाद हाशिम, मोहम्मद हाशिमुद्दीन और परिवार के सभी लोग। तो आइए आप सबों की पसंद पर सुनते हैं ये बहुत प्यारा सा नगमा।

0: आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, कहीं जाइएगा नहीं, हम बस यूं गए और यूं आए, बने रहें आकाशवाणी भागलपुर के संग।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। श्रोताओ, मोहब्बत का सबसे खूबसूरत एहसास तब होता है जब कोई धीरे धीरे हमारे दिल में अपनी खास जगह बना लेता है। उसकी बातें, उसकी मुस्कान, उसकी यादें हमारे हर दिन और हर रात का हिस्सा बन जाती है। फिर दिल चाहता है कि उस अपने को हमेशा के लिए अपनी धड़कनों में बसा लिया जाए, अपनी हर दुआ और हर ख्वाब में सजा लिया जाए। श्रोताओं के खतों और संदेशों से सजी हमारे इस कार्यक्रम में अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जो प्यार की इस मीठी सी कशिश और गहरे एहसास को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयां करता है। ये गीत उन दिलों की कहानी है जिन्होंने अपने महबूब को सिर्फ यादों में नहीं बल्कि अपने दिल के सबसे हसीन कोने में बिठा रखा है। प्यार, विश्वास और खूबसूरत एहसासों से सजा ये गीत आपके दिल को भी ज़रूर छू जाएगा। और पसंद करने वाले श्रोता आप सभी हैं बड़ी खंजरपुर एकता रेडियो श्रोता संघ से भाई गुलफराज आलम, बेगम शमा आरा, जमालुद्दीन धुरैया गंगदौरी से आप हैं रामविलास, रविकांत, नीरज, अमर, मारुति, सावित्री देवी, कावित्री, तनुजा और शानदेव हरी, मुन्नीचक भागलपुर से विशाल कुमार, ऋतिक रोशन, डोलू बैजानी चौबेटोला से आप हैं वर्षा, वंदना, कन्हैया, मेघा, निहाल, साक्षी, चीकू, पवन, कुल्लू, गोलू, सोनी, नीतू, कहलगांव से आप हैं सुजीत रॉय और प्रयागराज से आप हैं महेश कुमार सिन्हा। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये प्यारा सनगमा।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइश भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। आप हैं चंपा नगर से शम्पीर अहमद, खालिद अंसारी, जाहिद अनवर और तारिक अनवर, भीकनपुर भट्टा रोड से योगेंद्र प्रसाद राय, विभा राय, विप्लव, वैभव, यामिनी और यशा, बाकर से आप हैं रमेश साह और परिवार के सभी सदस्य, गुराडी से डॉक्टर हेमंत कुमार, जीवेश और नीलेश नंदन, ततारपुर से आप हैं नाना कौशर, अरसान अहमद और जरीश अहमद, आप हैं पुंसिया, जी हाँ ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही पढ़ने में पर ये नाम लिखा है इन्होंने, जी हाँ बसवारा पुंसिया से, पवन कुमार सिंह, सचिन, छोटू, राजा, सौरभ और गोलू ने। कहते हैं दोस्तों कि खतों का अपना एक अलग ही जादू होता है। कागज़ पर लिखे कुछ शब्द कभी मुस्कान बन जाते हैं तो कभी किसी यादों का कारवां लेकर दिल के आंगन में उतर आते हैं। आज भी हमारे पास ऐसे ही प्यारे प्यारे से खत आए हैं जिनमें मोहब्बत की मीठी खुशबू और किसी की यादों का रंग बिखरा हुआ है। खत लिखने वाले श्रोताओं में से एक ने लिखा है कि कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जिनकी एक झलक ही दिल की दुनिया बदल देती है। उनकी सादगी, उनके मुस्कान और उनकी अदाएं दिल पर ऐसा असर छोड़ जाती हैं कि फिर हर तरफ बस उन्हीं का चेहरा नजर आता है, जैसे हवा का एक झोंका चुपके से आकर दिल को छू जाए और कोई अपना बिना कुछ कहे दिल का चैन ले जाए। इन्हीं नाजुक एहसासों, मीठी शरारतों और मोहब्बत की रंगीन फिजाओं से सजा हुआ हमारा ये अगला गीत, एक ऐसा गीत जिसमें दिल अपने महबूब की अदाओं पर पूरी तरह से फिदा नजर आता है।

दोस्तों, श्रोताओं के प्यार भरे खतों, संदेशों और फरमाइशों से सजा आज का ये फिल्म संगीत आपकी फरमाइश पर यही समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। उम्मीद है गीतों की महक ने आपके दिल को छुआ होगा और सुरों से भरा ये कार्यक्रम आपकी यादों में एक खूबसूरत एहसास बनकर बस जाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना प्यार, अपनी फरमाइशें और अपने दिल में हुई दिल की बातें हमें यूं ही भेजते रहेंगे, अब दीजिए हमें इजाज़त। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ज़िंदगी के हर लम्हे को संगीत के रंगों से सजाते रहिए।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए असमिया भाषा में सामुदायिक गान शिक्षा पाठ।

0: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हैं ना असमिया भाषा गीत?
1: जी हाँ।
0: अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का, प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। ए माती रे,
1: माती रे,
0: ए माती रे, मोरो मोते,
1: मोरो मोते,
0: माती के,
1: माती के,
0: सुमीलो,
1: सुमीलो,
0: माती के सुमीलो, माटी के सुमिलो। हो गया ना यहाँ तक? आगे लिखो। एई माटी ते, एई माटी ते जीवन, एई माटी ते, ज नहीं बोलना इसको, ज बोलना। ये एई माटी ते जीवन सोबी, जीवन
1: सोबी,
0: जी कैसे, ज के नीचे बिंदी लगा लेना है ना, तो जीवन सोबी

अभी आप सुन रहे थे असमिया भाषा में सामुदायिक गान शिक्षा पाठ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए समूह स्वर में देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आपसे लेकर शाम 5 बजे तक मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। और शाम 5 बजे से इन्हीं मीटरों पर आप सुनेंगे आकाशवाणी भागलपुर के कार्यक्रम।

इस कार्यक्रम के आखिर में सुनना चाहते हैं आप सभी लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में, गीत रचना राजा मेहदी अली खान की है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। सुनने की ख्वाहिशमंद आप सभी भाटापारा से मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत विनय ठाकुर और इनके परिवार वाले, वहीं से इनके मित्र सुब्रत चौधरी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क MP शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता और ये हैं सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। नाट्य तरंग में आइए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। तो चलिए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा भाग।
1: क्यों डेजी, इस तरह उदास क्यों रहती हो?
2: नहीं तो मैं कुछ सोच रही थी।
1: देखो डेजी, बहुत सोच विचार के बाद ही मैं इस त्याग के लिए तैयार हुआ था। अब भी अगर तुम इस तरह उदास बनी रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हें सुखी बनाने की मेरी कोशिश असफल रही है और इससे मुझे बहुत निराशा होगी। मुझे लगता है ये गिटार तुम्हें बड़ी वेदना पहुंचा।
2: नहीं, बल्कि ये तो मुझे बहुत सांत्वना देता है।
1: डिजी, बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। नए जीवन को सानंद स्वीकार करने पर ही जीवन का अर्थ मिलेगा।

0: लो इधर देखो, देखो ना, हाँ मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ओठे सी, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना सुंदर लगता है। अरे हाँ, मैं सोचता हूँ 2 हफ्ते की छुट्टी ले लूँ। हम दोनों के लिए चेंज थोड़ा जरूरी है। हम लोग कुछ दिन ऊटी में आराम करेंगे, क्या कहती हो?
1: ऑपरेशन से पहले बेनी ने भी ऊटी जाने का प्रोग्राम बताया।
0: नो, तब ऊटी नहीं जाएंगे। वहां पहुंचकर तुम्हें तरह तरह के दुखद यादें तंग करेगी। लेट्स गो समवेयर एल्स। मैसूर या बेंगलोर का प्रोग्राम बना तो कैसा रहेगा?
1: मेरा मन कहीं नहीं लगता। आप कोई प्रोग्राम नहीं बनाए।
0: और डेजी, यही तो मौका है जब हम कुछ घूम फिर सकते हैं। अब बाद में जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो गृहस्थी से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कहूं, अगले साल तो हमारे एक बच्चा भी होना चाहिए। प्यारा प्यारा दुल्हारा सा नन्ना मुन्ना। हा?
1: प्यारा प्यारा सा दुल्हारा।

0: देसी
1: छोड़ दीजिए ना।
0: अरे अरे सुनो तो।
1: नहीं सुनती।
0: ओफो, अरे बात तो सुनो
1: बेनी। देखो देखो तुम्हारी शरारतें बहुत बढ़ रही हैं।
0: ओ डेजी डेजी माय लव। डेजी हमारे बच्चा नहीं होगा क्या?
2: ईश्वर की कृपा हुई तो।
0: सुनो मुझे तो नन्ना सा प्यारा सा तुम्हारे जैसा।
2: क्यों तुम्हारे जैसा क्यों नहीं?
0: अच्छा बाबा हम दोनों जैसा।

0: डेजी, तुम इस तरह खामोश और परेशान से क्यों?
1: नहीं कुछ नहीं।
0: अब चलो सिनेमा चले।
1: नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मन बहुत अशांत।
0: अरे मन में शांति लाने के लिए तो कह रहा हूँ। कम ऑन डेजी, दूसरी साड़ी पहन लो, सिनेमा चलेंगे, जल्दी करो। लो ये साड़ी पहन लो।
1: ये साड़ी
0: डेजी, व्हाट इज दिस, क्या है?
1: बेनी की प्रेजेंट की हुई साड़ी।
0: ओह डेजी।

0: देने मांग गई। मैं लॉरेंस को निराश नहीं करना चाहती थी। मुझ निराश्रित विधवा को डॉक्टर लॉरेंस ने सहर्ष स्वीकार किया था। नए जीवन और नई परिस्थितियों में मैं घुल मिल गई और इस तरह एक साल आनंद पूर्वक बीत गया। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शिशु जन्म के बाद परिवार की शांति में विघ्न पड़ गया।
1: कैसे?
0: शायद वो एक आंधी का आरंभ था। सुनिए, बच्चे की बीमारी कम नहीं हो रही है।
1: कौन कहता है?
0: मुझे ऐसा लगता है।
1: मुझे तो ऐसा नहीं लगता,
0: लेकिन वो उसी तरह निढाल पड़ा
1: तो पड़ा रहे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।
0: इस तरह पड़े रहने से क्या बीमारी कम होगी?
1: भाई उसे दवा दी जा रही है,
0: लेकिन इस दवा से तो कोई आराम नहीं है।
1: इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मेरी दवा कितनी इफेक्टिव है।
0: आपकी तेजी आपकी बातों में दिखती है, दवा में
1: तेजी।
0: जोर से मत बोलिए। दो दिन से वो दवा दी जा रही है, लेकिन अभी तक बेबी को जरा सा भी आराम नहीं आया।
1: तो क्या करूँ मैं, आराम इंजेक्ट किया जाए?
0: क्यों इस तरह गर्म हो रहे हो? बच्चे को एक बार एग्जामिन तो कर लो।
1: तुम एग्जामिन कर लो खुद, इत्मीनान हो जाएगा तुम्हें। ये लो स्टेथोस्कोप।
0: अगर इच्छा नहीं है तो सिर्फ मना कर देना काफी।
1: इच्छा नहीं है
0: एग्जामिन करने की या बच्चे की?
1: कुछ भी मतलब निकाल लो।
0: अपने अबोध बच्चे से इतना निष्ठुर व्यवहार।
1: अपने बच्चे से? माय फुट, तुम्हारे बच्चे से कहो तो ज्यादा ठीक रहेगा।
0: क्या कहा? मेरा बच्चा?

0: तुम्हारा बच्चा नहीं है?
1: दूसरों की नजरों में कानून के अनुसार भी है, लेकिन आत्मीयता की दृष्टि से नहीं है। मैं इतने क्रूर बच्चे का पिता होने का भार नहीं ढो सकता।
0: दुनिया को एक सुंदर सा बच्चा दिखाना होगा, इस कंडीशन पर मैं मां नहीं बनी हूँ। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसे हमें स्वीकार करना होगा, उसे प्यार करना होगा।
1: मैं ऐसे बच्चे को प्यार नहीं कर सकता।
0: लेकिन मैं माँ हूँ, मैं प्यार किए बिना नहीं रह सकती।
1: जब छोड़ो, डॉक्टर रामदास आ रहे हैं, उनके सामने झगड़ा बंद करो। उन्हें कम से कम ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बड़े प्रेम से रहते हैं। हेलो डॉक्टर, आइए आइए डॉक्टर रामदास।
2: भाई वाह वाह वाह, क्या रेडीमेड हंसी के साथ खड़े हैं आप।
1: रेडीमेड हंसी? अरे भाई, हमने तो आपको गेट पे देख लिया था। क्यों नहीं जी?
3: जी
2: भाई, बहुत दिनों से इधर आने की सोच रहा था मैं।
3: चलिए, कम से कम आज तो आया। आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे, सोच भी नहीं सकती थी।
2: अरे ऐसे क्यों कह रही हो डेजी? प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। भाई जैसे ही फुर्सत मिली मैं चला आया। अरे हाँ, ये लो बच्चे के लिए कुछ खिलौने।
1: अरे भाई, वो तो अभी खेलने लायक भी नहीं हुआ है।
2: ओ डॉक्टर, वो खुद नहीं खेल पाएगा, लेकिन दूसरों को तो खेलते हुए देख लेगा। ये तो पालने पर लटकाए भी जा सकते हैं। अरे चाबी भरकर छोड़ दो, ये सब खिलौने लट्टू की तरह एक साथ घूमने लगेंगे।
3: एक साथ घूमने लगेंगे?
2: हाँ?
3: आपने बहुत सोच समझ कर खिलौने छांटे होंगे।
2: अरे हाँ डेजी, बच्चा कहाँ है?
3: डॉक्टर,
2: सो रहा है?
3: वो तो बहुत बीमार है। दो तीन दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ है, हंसना खेलना सब बंद।
1: अरे भाई, बुखार चढ़ने पर तो हंसना खेलना बंद हो ही जाता है, क्यों डॉक्टर?
2: चलिए एक बार मैं भी देख लूं। ओ, लगता है सोया हुआ है। डॉक्टर लॉरेंस, बुखार अभी भी है।
1: That doesn't matter, doctor. Slight fever only. मैंने दवा दे दी है वैसे।
2: अच्छा, मैं चलता हूँ। भाई कुछ जरूरी काम है, चलो डेजी।
1: ओके,
3: अच्छा
2: बाय डॉक्टर, बाय।
0: ये अभिनय और कितने दिन चलेगा?
1: जब तक जरूरी होगा।
0: मुझसे अब और नहीं सहा जाता। कई दिनों से आप इस तरह का अभिनय करते आ रहे हैं, आखिर ये नाटक क्यों?
1: अपने लिए।
0: लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये।
1: होगा, ये मेरी इच्छा है और आज्ञा भी।
0: मेरी इच्छा को धूल में मिलाने वाले आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं?
1: तुम्हारी कौन सी इच्छा मैंने पूरी नहीं की डेजी?
0: आपसे कहा था जरा बच्चे की जाँच कर लो।
1: जाँच करके अब कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा।
0: ये क्यों नहीं कहते कि आप जाँच करना ही नहीं चाहते? कैसी विडंबना है, अपने बच्चे को कुरूप देखकर एक डॉक्टर पिता उससे दूर खड़ा रहना चाहता है।
1: जैसे तुम मेरी निराशा नहीं समझ सकते।
0: डॉक्टर रामदास अभी आए थे, उन्होंने भी बच्चे को देखा था, लेकिन उन्होंने उसकी कुरूपता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।
1: हमारे सामने कुछ नहीं कहा, यही ना, समझदार आदमी है वो। लेकिन क्या ये बच्चे के सुंदर होने का सर्टिफिकेट है?
0: बंद भी करो ये सब। बाहरी चमक को सौंदर्य समझने वाले आप।
1: तुम शायद कुरूपता में सौंदर्य देख सकती हो डेजी, बेनी में भी तो तुमने सौंदर्य देखा।
0: बेनी को यहाँ क्यों घसीट लाया?
1: मैं घसीट लाया? ये कहो, बेनी को तुमने हर जगह बसा रखा है, अपने मन में, विचारों में, इस कमरे में, इस घर के कोने कोने में बेनी बसा हुआ है। और शादी के बाद भी तुमने बेनी की कब्र पर जाने की इच्छा की।
0: क्या मैंने कोई गलत बात की थी? इसमें बिगड़ने की क्या बात है?
1: तुम्हारा निकट का संबंध किससे ज्यादा है, मरे हुए बेनी के साथ या जीवित डॉक्टर लॉरेंस के साथ?
0: क्या सवाल कर रहे हो तुम?
1: ने मन में कौन बसा रखा है, मैं या बेनी?
0: तुम्हें क्या हो गया है?
1: तुम उससे ज्यादा बेनी के इस फोटो से प्यार करती हो, तुम इसकी पूजा करती हो, लेकिन लेकिन अब ये सब नहीं होगा। ये फोटो अब यहां नहीं रहेगी।
0: मिल गया संतोष।
3: मुझे क्षमा करना बेनी, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। जीने के लिए तुम्हारी मधुर यादें काफी थी बेनी। कौन कौन है
2: डेजी? एक चीज

0: भूल गया था मैं, ये डायरी। अरे लॉरेंस कहाँ है?
1: अभी बाहर गए हैं डॉक्टर। डॉक्टर आपको मेरी एक शंका दूर करनी है।
0: कैसी शंका?
1: मेरा बच्चा कुरूप क्यों है? क्या क्या बेनी को सदा याद करते रहने से ऐसा हुआ है डॉक्टर?
0: ओह डेजी, तुम्हारे सवाल बड़ा विचित्र है।
1: लेकिन ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर?
0: नहीं।
1: हाँ, मुझे तो लगता है लॉरेंस को ऐसी कुछ शंका है।
0: लॉरेंस को? नो नो नेवर, वो ऐसी कोई शंका नहीं कर सकता।
1: तब ये हुआ कैसे डॉक्टर?
0: डेजी, इसके कई कारण हो सकते हैं। पति या पत्नी के परिवार में पहले किसी का रंग काला रहा हो, या फिर कोई बहुत कुरूप रहा हो, तभी यह संभव हो सकता है कि उसकी संतान में या संतानों की संतान में इस तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाए।
1: ये बात लॉरेंस को समझा सकेंगे डॉक्टर?
0: लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है देजी? क्या हुआ? बोलो देजी, बोलो क्या हुआ?
1: बच्चे के जन्म के बाद से ही लॉरेंस मुझसे और इस बच्चे से नफरत करने लगे।
0: क्या?
1: हाँ डॉक्टर, आजकल मैं एक अग्नि चक्र में से निकल रही हूँ। पहले जब आप आए तब हम केवल अभिनय कर रहे थे।
0: क्या?
1: लेकिन वास्तव में डॉक्टर आप मुझ पर एक कृपा कीजिए।
0: बोलो।
1: प्लीज डॉक्टर, मेरे बच्चे को एग्जामिन कर लीजिए।
0: मैं?
1: डॉक्टर मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर, उसकी हालत ठीक नहीं है। प्लीज डॉक्टर उसे देख लीजिए डॉक्टर।
0: नहीं नहीं डेजी नहीं, ये ठीक नहीं है। बच्चा डॉक्टर लॉरेंस के ट्रीटमेंट में है, मैं ऐसा करना ठीक नहीं समझता। आई एम सॉरी।
1: प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर। देखिए ये खिलौने आप इस बच्चे के लिए लाए हैं ना, उस बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज।
0: नहीं डेजी, नहीं डेजी, ये ठीक नहीं है।
1: प्लीज डॉक्टर।
0: अच्छा चलो, मैं बच्चे को देख लेता हूँ।
1: डॉक्टर रामदास बच्चे को एग्जामिन कर ही रहे थे कि बीच में लॉरेंस लौट आए। उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गए। उन्होंने डॉक्टर रामदास का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन फाड़ डाला और रामदास को बड़ी निर्दयता पूर्वक घर से बाहर निकाल दिया। और तब मैं अपनी वेदना नहीं छिपा सकी। नतीजा ये हुआ, लॉरेंस ने कस के एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। और कुछ बाद मेरा कुरूप बच्चा दुनिया से चल बसा। मेरे दुख की कोई सीमा न रही। बच्चे के खाली पालने को देखकर मैं रोती। एक दिन मैंने बेनी के गिटार को बच्चा मानकर पालने पर रख दिया और लोरी गाने लगी। तभी लॉरेंस आ धमकी और गिटार को निर्दयता से जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। बोले ये बेनी का प्रेत है।
2: बेनी का प्रेत?
1: हाँ, मैं चीख उठी। थोड़ी देर बाद जब मैंने घर से बाहर निकल जाना चाहा तो देखा सामने से डॉक्टर रामदास आ रहे हैं। मैं खामोश एक तरफ खड़ी हो गई।
0: डॉक्टर लॉरेंस।
2: ओ डॉक्टर रामदास,
0: उस दिन तुमने मुझे जिस तरह दुत्कार कर निकाल दिया था, उसके बाद मेरा यहां आना अशिष्टता ही समझी जाएगी।
2: बैठ जाइए
0: लॉरेंस। आप जैसा चाहते थे बच्चा चल बसाना
2: जी,
0: शायद ये सोचकर कि मेरा ट्रीटमेंट कहीं बच्चे को बचा न ले, आपने मेरा प्रिस्क्रिप्शन फाड़ दिया था।
3: नहीं तो, लेकिन बिना बताए मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों को उस खेल ने, उस अभिनय ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया था और मैं
0: आपको अरे जिसने अभिनय ही अपना स्वभाव बना लिया है, अगर ऐसा लगा तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं।
3: समझा नहीं?
0: कोई कुछ समझ न सके, इसी में तो आपकी जीत है। बिना किसी स्टेज फाइट के तुमने जीवन मंच पर कितना बढ़िया अभिनय किया लॉरेंस।
3: What do you mean, डॉक्टर रामदास, आप क्या कह रहे हैं?
0: बेनी को आपने ही तो मारा था ना
3: डॉक्टर।
0: कांपो नहीं, मेरे सच बोलने पर चौंक क्यों पड़े तुम?
3: नहीं नहीं, पता नहीं आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं।
0: डॉक्टर लॉरेंस, काश इस समय तुम अपना चेहरा देख सकते। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद ही मैं ये बात अधिकार पूर्वक कह रहा हूं। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस रहस्य की सूचना मुझे तुम्हारे असिस्टेंट डॉक्टर आशीष ने दी।
3: स्टॉप दिस नॉनसेंस आई से डॉक्टर।
0: नो, इट इज नॉट नॉनसेंस बट ए ट्रुथ, ए बर्निंग ट्रुथ।
3: डॉक्टर रामदास, आधार रहित आरोपों से लोगों को बदनाम मत कीजिए। क्या क्या क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे जहर देकर मार डाला?
0: नहीं, नहीं, तुम इतने बेवकूफ नहीं कि जहर देकर मार डालो। ऐसे ऑपरेशन के बाद तुमने रोगी को वो इंजेक्शन दिया जो उसे कभी नहीं देना चाहिए था। क्यों, ये सच है ना? दो घंटे के बाद ही पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी। ड्यूटी नर्स दौड़कर बुलाने के लिए गई, लेकिन उस वक्त तक आप बाहर जा चुके थे। ये सब आपने जानबूझकर किया। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी मर चुका था।
3: डॉक्टर, डॉक्टर, दैट वाज मेयर डेथ। एक बिल्कुल नेचुरल डेथ थी।
0: नो, इट वाज नॉट ए मेयर डेथ, इट वाज ए क्लियर मर्डर।
3: डॉक्टर, नो, नो डॉक्टर,
0: तुमने एक हत्या की है डॉक्टर लॉरेंस, तुमने एक हत्या की है। और सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही मैं ये बात कह रहा हूं, डेजी के सौंदर्य पर मोहित होकर तुमने बेनी की हत्या की।
3: नो, नो, नो। क्यों डॉक्टर,
0: सच है ना? सच है ना? तुमने सबसे यही कहा कि अपने घनिष्ठ मित्र के स्नेह से उर्ण होने के लिए तुमने उसकी विधवा से विवाह कर लिया। क्यों बोलो? अरे तुम पसीने में डूब क्यों गए, इतना हाथ क्यों रहे हो? क्यों डॉक्टर लॉरेंस, ये सब अक्षर अक्षर सच है ना?
3: डॉक्टर, डॉक्टर
0: लॉरेंस, मैं कहता हूं साफ साफ कह दो, ये सच है ना? ये सच है ना?
3: सच है, सच है डॉक्टर। लेकिन उससे गलती हो गई डॉक्टर, गलती हो गई।
0: बेचारा बेनी। मैं ये बातें करने इसलिए ऐसे वक्त पर आया हूं जब तुम्हारी तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है। खैर डॉक्टर लॉरेंस, जो कुछ हो गया सो हो गया। भविष्य में एक अच्छे पति होकर शराफत के साथ जीवन बिताओ, समझे? इस सेंसिटिव लड़की को और ज्यादा तकलीफ मत पहुंचाओ।
3: डॉक्टर, मुझसे गलती होगी डॉक्टर, लेकिन प्लीज डॉक्टर, प्लीज ये सब बातें आप किसी और से न कहिएगा।
0: नहीं कहूंगा।
3: थैंक यू।
0: नहीं कहूंगा।
3: थैंक यू डॉक्टर।
0: क्योंकि न कहने में ही तुम्हारा भला है। अच्छा डॉक्टर रॉबिन्स, मैं अब चलता हूं।
3: मैंने क्या कर डाला है? मैं क्यों भूल गया कि इंसान जो भी करता है उसकी उसकी कीमत एक न एक दिन से चुकानी होती है। अरे अरे डेजी, अरे इतनी जल्दी कैसे लौट आई?
1: तुम्हारी आवाज ने मेरे पांव रोक दिए, इसलिए जा नहीं सकी।
3: डेजी, डेजी मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
1: अरे इतनी सी देर में क्या हो गया?
3: वो तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने ऊपर ग्लानी होने लगी। देखो डेजी, मुझे तुमसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो डेजी।
1: लॉरेंस, तुम अचानक।
3: मैंने तुमसे कितनी कड़वी बातें कही, तुम्हें मैंने कितनी तकलीफ दी।
1: मैंने भी तो तुमसे झगड़ा किया।
3: हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा। कोई कष्ट नहीं दूंगा डेजी।
1: मैं भी तुम्हें।
3: डेजी, जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ डेजी, सब भूल जाओ।
1: भुला दूंगी।
3: हाँ,
1: हमेशा के लिए भुला दो।
3: वो डेजी, मैंने मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी है।
1: हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ।
3: हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे लौटने पर हम दोनों एक साथ पिएंगे। डेजी, वो जो बेनी का फोटो है ना, हाँ, उसको फ्रेम करवा के यहाँ रखेंगे। मुझे बहुत दुख है कि मैंने उसका किताब तोड़ दिया। मैं नया किताब ले आऊंगा डेजी। हाँ, उस गिटार को बहुत जतन से रखेंगे। और सुनो, वो तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, वही वाली। हाँ, आज उसे ही पहने। हाँ, वो दीदी, हम ऊटी का प्रोग्राम भी बनाएंगे। हम ऊटी भी जरूर चलेंगे, चलेंगे ना?
1: हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। लो कॉफी पियो। डॉक्टर साहब,
3: डेजी,
1: तुमने मेरे प्राण प्रिय बेनी को मार डाला ना?
3: ये क्या कर रही हो तुम डेजी?
1: मेरे रूप और सौंदर्य ने तुम्हें ये घृणित काम करने की प्रेरणा दी थी ना?
3: डेजी,
1: तुमने अपने सहपाठी और अपने परम की जान ली।
3: नहीं नहीं नहीं, डेजी सुनो तो।
1: सुनो डॉक्टर, ये घृणित सत्य जान लेने के बाद अब हम साथ नहीं रह
3: सकते। डेजी, ये सच नहीं है। मैं कहता हूँ डेजी,
1: झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर रामदास का एक एक शब्द मैंने सुन लिया है।
3: ओह माय गॉड,
1: मैं जा रही थी लेकिन डॉक्टर रामदास को इधर आते देख एक कोने में खड़ी हो गई थी।
3: ओह नो,
1: मेरे लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आपसे विदा ले रही हूँ।
3: विदा?
1: मैंने अभी जो कॉफी पी है ना, उसमें जहर खुला हुआ
3: था। डेजी, डेजी,
1: मैं कुछ ही पल की मेहमान हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई हो उनके लिए मुझे माफ कर देना।
3: मेरी नजर टूट रही है डेजी। डेजी, तुमने मुझसे प्रतिशोध लिया है डेजी।
1: नहीं लॉरेंस, नहीं लॉरेंस, विश्वास करो, मैंने प्रतिशोध नहीं लिया है। ये क्या हुआ? ये कॉफी की प्याले तो नहीं बदल दिए? ये क्या हो गया? ये पहली कॉफी तो मेरी थी, तुमने वो कप कैसे ले लिया? लॉरेंस, लॉरेंस, मैं भागी भागी हॉस्पिटल गई। डॉक्टर आए लेकिन तब तक लॉरेंस खत्म हो चुके थे। मैं मूर्ति बनी खड़ी रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये गलती कैसे हो गई। मैंने तो दोनों प्याले अलग अलग और दूर रखे थे। फिर पुलिस, अदालत, मुकदमा, हत्या का आरोप, सजा और जेल की एक कोठरी। की लपटों का एक गोल घेरा जिसमें से मुझे बिना झुल से बाहर निकलना था।

0: मुझे तो लगता है मेरा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं इस अग्नि चक्र से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। आप क्या सोचने लगे?
1: एक छोटी सी बात।
0: क्या?
1: यही कि संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं?

आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक थे भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिकता भी।

0: तो कभी था।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। ये पंक्तियाँ लिखने वाले कवि और गीतकार थे प्रदीप जी। जी हाँ, वही प्रदीप जिन्होंने लिखा दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिनकी कलम से निकला ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जिन्होंने कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, वही कवि प्रदीप, यानी शब्दों की आकाश गंगा में एक चमकता हुआ सितारा। उनके गीतों में देशभक्ति का जज्बा था, यानी जब जब हम गंगा जमुनी तहजीब पर भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे, तब तब हमें महान कवि प्रदीप जी को, उनकी रचनाओं को याद करना ही होगा। और आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को ही याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया
2: जी,
3: क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है। आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं
2: जी,
3: है ना। मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी कि जिसने विविध भारती नहीं सुना हो। तो ये हमारी रग रग में बसा हुआ है
2: जी।
3: तो खूब धन्यवाद, आभार आपका
2: जी। बिल्कुल, आपका भी आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त आज हमें दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके पिता और राष्ट्र कवि प्रदीप जी के बारे में
3: जी।
2: सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कैसी हैं।
3: मैं तो अच्छी हूँ
2: मित्र जी। आप राष्ट्र कवि गीतकार प्रदीप जी की सुपुत्री हैं, और आप अपने पिता जिनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था, उनके बारे में हमें बताइए कि उनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी से प्रदीप कैसे पड़ा, और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था, और आपके घर परिवार में कौन कौन थे।
3: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी मतलब कवि प्रदीप, उन्होंने अपनी जो लेखनी की शुरुआत की, मतलब लिखना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स डे से, जब वो विद्यार्थी थे, इलाहाबाद में पढ़ते थे।
2: अच्छा।
3: तो इलाहाबाद और लखनऊ की उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, हिंदी भाषा के मतलब जो एक उच्च स्तर का उनकी जो लेखनी थी वो बहुत उच्च स्तर की हिंदी थी। और वो कवि थे
2: जी,
3: कवि सम्मेलनों में जाया करते थे विद्यार्थी जीवन में भी। तो उनका जो उन्होंने उपनाम रखा रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, तो प्रदीप उनका उपनाम था।
2: अच्छा जी।
3: और ज्यादातर लेखक हैं, कवि हैं, वो अपना उपनाम रखते
2: ही हैं।
3: तो जब कवि थे और वो कवि सम्मेलनों में जाते थे तब तो वो नाम चलता था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप।
2: अच्छा।
3: लेकिन जब वो मुंबई आए, मुंबई तो वो घूमने के लिए आए थे, और तब तो मुंबई नहीं बम्बई थी
2: जी, बिल्कुल।
3: और 1939 में वो बॉम्बे आए घूमने के लिए, ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ पर वो बस जाएंगे, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि नियति डेस्टिनी, तो उन्होंने उनको मुंबई तक खींच के ले आई उनकी नसीब। और ऐसा हुआ कि यहाँ पर उनको एक छोटे से कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने का उस वक्त मौका मिला। तो वो छोटी सी कवि सम्मेलन नहीं था
2: जी,
3: बहुत बड़े बड़े यहाँ के नामी कवि जो मुंबई के थे वो उसमें बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का आया है इलाहाबाद लखनऊ से, तो हम उनकी कविता सुनेंगे। तो यहाँ के जो बड़े कवि बैठे थे वो सब गुजराती थे।
2: अच्छा।

और हिंदी कवि वो सिर्फ एक थे, उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में कविता कहूंगा, तो कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तो सब सुनेंगे आपकी कविता। तो उन्होंने वहां पर अपनी कविता

0: अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु रॉय के ऑफिस में
1: जी।
0: वहाँ पर देविका रानी बैठी थी, हिमांशु रॉय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे। वहाँ पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते मैं तो कवि हूँ भाई, मुझे आपके फिल्मों विल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे हीरो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं सुनाइए तो सही। फिर सुनाया अपनी शैली में, उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई और वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। और वो इम्प्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्मों में ये लिखे। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ।
1: अच्छा।
0: तो वापस से वो मैनेजर आए उनके पास दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी को वो लेके गए। हिमांशु रॉय ने कहा हम आपकी कविता को हमारे फिल्म में आप लिखिए हमारे लिए। प्रदीप जी ने कहा मैं कोई तुक्कड़ कवि नहीं हूँ, मैं तो कवि हूँ और कवि फिल्मों में कैसे लिख सकता है। बोलते कोशिश तो करिए हमारे लिए, एक फिल्म करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो अलग तरीके का जो एक राइटिंग है, तो फिर प्रदीप जी को उसमें साइन भी कर लिया गया और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार
1: बन गए। थी कौन से अब सन की बात है और किस फिल्म के लिए उन्हें दिया गया?
0: कंगन फिल्म उनकी पहली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूँ मैं
1: जी।
0: कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे बन गए।
1: बिल्कुल।
0: उनका जो उपनाम था प्रदीप, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई आपका नाम तो बहुत बड़ा है, वो तो अजीब सा लगता है जब स्क्रीन पे आता है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी प्रदीप, तो ये ठीक नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रदीप कर लेते हैं। तो इसमें से वो सिर्फ प्रदीप हो गए, है ना। और तो कवि प्रदीप कैसे हुए? उस जमाने में उसी दौरान एक और नाम था प्रदीप कुमार
1: जी, एक्टर
0: एक्टर। तो लोगों को कंफ्यूजन होता था कि ये प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कंफ्यूजन में फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते प्रदीप के आगे कवि लगा दो। तो कवि प्रदीप अलग हो गए, प्रदीप कुमार अलग हो गए। तो ये आपके सवाल का जवाब है।
1: तो मितुल जी आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया जाए आपकी पसंद का।
0: एक गाना तो सुनना ही चाहिए, सूरज रे जलते रहना।
1: वाह क्या बात है,
0: हेमंत कुमार
1: की आवाज में।
0: ये भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप एक कैसा गोल्डन वो है साथ में,
1: त्रिकोणीय व्यक्तित्व।
0: हाँ
1: हाँ जी बिल्कुल ना? तो आइए सुनते हैं। हाँ। प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो कभी प्रदीप तो बने, लेकिन वो पिता कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन कौन सदस्य थे, और जो मितुल नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा पिता के साथ रहकर, घर में किस तरह का माहौल रहता था।
1: हम दो बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का फर्क था।
0: अच्छा।
1: दोनों बहनों के बीच में तो मैं छोटी और दीदी ज्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी, उनके जो शुरुआत की जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई कोई ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती थी।
0: जी।
1: घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा, तो इसीलिए हम काफी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी, ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज में ले जाते थे।
0: जी।
1: लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है तो उसमें हम जाते थे, तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से। एकदम सीधे सादे व्यक्ति
0: और सिद्धांतवादी,
1: लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है, आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे तो कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया, अवार्ड लेना ही बंद कर दिया।
0: अच्छा।
1: हाँ। तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग, मेन मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती,
0: जी।
1: तो दो कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था, तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चले कि ये इंसान गुजराती नहीं है, हिंदी भाषी है, उतना अच्छा बोलते थे।
0: अच्छा, जी।
1: लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी में ही बोलना है या गुजराती में, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें,
0: इतनी फ्रीडम थी।
1: फ्रीडम, हाँ। तो वो फ्रीडम भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए जिंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना के दिमाग से भी काफी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा नहीं थी। मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने 7 फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
0: अच्छा जी। और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा तो कहा कि मैं आग हूँ और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूँगा, तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी।
1: बहुत बहुत बहुत सारी बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी वो भी काफी फॉरवर्ड विचारधारा के थे और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं, तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ, आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो बापू ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पहले।
0: अच्छा।
1: तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे, तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर है
0: वो गर्म है,
1: मैं गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी, दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया।
0: उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना।
1: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। हाँ। तो बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ, और मैं बिल्कुल फेरे नहीं करूंगा।
0: अच्छा।
1: हाँ, मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज हो। नाना ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। वो बोलते हैं मैं कोई इसमें ज्यादा तामझाम नहीं चाहता हूँ, एकदम सादा विवाह होगा। आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। मैं कुछ लेना नहीं चाहता हूँ, जो मैं दूंगा वही कपड़े वो पहनेंगी। तो ना मेरे नाना नानी ने कुछ मेरी माँ को दिया, ऑफकोर्स दो तीन साड़ियाँ तो दी होगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त इतने फॉरवर्ड विचार के मेरे नाना नानी और मेरे बापू। अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ।
0: अच्छा। सब
1: तो बोले मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर सब लोग पूरे वहां से आ जाए लोग, और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूं।
0: हाँ।
1: तो उन्होंने बोल दिया वहां पर मैं शादी कर रहा हूँ, हम लोग को कोई यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं माँ को लेके। तो वहां से कोई नहीं आया। माँ मेरी दादी मेरे दादा परेशान। उस वक्त तो मोबाइल तो कुछ था नहीं, ना तो कोई ऐसे टेलीफोन्स थे, तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किससे शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहां से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा अरे आप आइए आइए, उनको पता था कि ये, उनका फोटो देखा था। अरे नारायण जी आप आए हैं, आइए। बोलते माफ कीजिए लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है।
0: जी जी।
1: तो दादा और मेरे नाना दोनों बैठे, प्रदीप जी को मतलब मेरे बापू को बुलाया गया कि देखिए आपके पिताजी आए हैं। बोलते अरे आप क्यों आए, तो हम तो आ ही रहे हैं अगले हफ्ते। बोलते नहीं नहीं घर में से सबने कहा कि जाके देख के आओ वे किससे शादी की है।
0: जी।
1: खुश हुए, बहुत सेटिस्फाइड हुए, परिवार को देख के खुश हुए, माँ को देख के खुश हुए। और वैसे मतलब ये जो यूनियन था
0: वो संबंध
1: विवाह का, तो वो खुशी खुशी उसकी समापन हुआ।
0: जी, जी। तो आपकी माँ जिंदगी भर एक पानी बनकर रही,
1: पानी बन के रही। हाँ एक्चुअली वो भी आग थी, लेकिन वो पानी बन के रही।
0: जी ये सबसे बड़ी बात है। जी
1: क्योंकि मेरी माँ को अब ये बताऊं कि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि चाहे आप महिला हैं लेकिन आप लड़के की तरह आप लाठी भी चलाएंगी, और आप कहीं कुछ होगा तो आप उसको गले से भी पकड़ेंगी।
0: मतलब उनकी शिक्षा दीक्षा भी इस माहौल में की गई। हाँ, नाना नानी की द्वारा।
1: हाँ, ऐसे ही उनको सिखाया गया कि कोई भी चीज में आपको पीछे नहीं हटना है। तो वो भी उनकी तासीर भी आग वाली थी, लेकिन जब बापू से शादी हुई तो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया।
0: जी।

0: जब हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी के व्यवहार के बारे में, तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रही, उनके बारे में आपके क्या विचार बने?
1: मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है? कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, जैसे मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना, ये नहीं पता चलता कि दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं, लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई, प्रिंसिपल बोलेंगे मितुल गाना गाएगी। मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पड़ते हैं लोग? फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था, या उनकी क्या हाइट थी, और समाज में वो क्या थे, वो सब पता चलने लगा
0: जी।
1: और खैर वो तो बड़े इंसान थे, लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया।
0: घर में एक आम पिता की
1: आम
0: तरह
1: पिता की तरह
0: जी।
1: मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो, सब मेरी माँ करती थी। तो मेरे पिता को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से। तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा कि कोई स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी। इसके लिए उनकी जो लिखने की शक्ति
0: जी, बिल्कुल,
1: वो और बड़ी मेरी माँ के कारण,
0: बहुत बड़ी बात। और तभी वो राष्ट्रकवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर दिखाया
1: जी, जी।
0: तो मितुल जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
1: जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम इंदौर वहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वो कॉलेज गए, तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई मतलब मेरे ताऊजी वो इलाहाबाद में रहते थे और वहाँ पर उनका घर था। तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू उसको भेजा इलाहाबाद, मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब विद्यार्थी जीवन में थे। तो वो इलाहाबाद में गए, वहाँ पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की। वहाँ पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफ़ी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था, वो इलाहाबाद में था, क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे, और बड़े बड़े जो वहाँ के नेता थे वो वहाँ पर रोज ही उनके वहाँ कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था, और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था। तो तभी से एक माहौल भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई
0: जी,
1: वो उन्होंने वहाँ बहुत नज़दीक से देखा। और इलाहाबाद में ही काफ़ी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी कि जहाँ पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला, कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है, तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया। पहले वो प्रेम की कविताएं लिखते थे, और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है,
0: एक कोई जानबूझ के प्रेरित हुए, क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था।
1: हाँ।
0: तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली, तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है,
1: हाँ,
0: वो आम जन तक पहुंचना चाहिए।
1: हाँ। और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी वहां हत्या हुई
0: जी,
1: इलाहाबाद में, तब भी प्रदीप जी वहीं पर थे।
0: अच्छा।
1: हाँ। तो ये सब चीजें उनको मन में बहुत अंदर तक वो झकझोर दिया।
0: हाँ।
1: और
0: तब तक वो कवि प्रदीप ही थे, मतलब गीतकार नहीं बने थे फिल्मों में?
1: नहीं नहीं नहीं, वो तो, ये तो मैं उनकी विद्यार्थी जीवन की बात कर रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी की। वो तो अपना पढ़ाई लिखाई खत्म होके वो जब ग्रेजुएट हो गए, तब वो आए थे मुंबई
0: जी। हाँ, तो आप बता रही थी उसी दौरान
1: चंद्रशेखर आजाद की भी उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई, और वो काफी, मतलब वो आंदोलन काफी तेज हो गया था उस वक्त।
0: हाँ जी।
1: तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है, वो देशभक्ति के ऊपर ज्यादा हो गया शुरू
0: जी। क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही होगी, आप हमें अगर सुनाना चाहें, या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो, जिस कविता ने?
1: उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था, जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई
0: जी,
1: थी
0: जी,
1: तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: और काफी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूं। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही ये कविता लिखी है। वह इस घर का दिया था, विधि ने अनल स्फुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन सिया था।
0: बहुत।
1: जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे साध थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीन सा पूर्ण कर गया अनंत के शरण। वह था जन्मजात विद्रोही जो विप्लय के तले जिया था।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है लेकिन यही कविता है जो उन्होंने
0: लिखी
1: उसी वक्त लिखी।
0: उसी दौरान उनके भीतर ये अंकुर पैदा हुआ। वहाँ से वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर आए।
1: हाँ
0: जी। तो मित्र जी, आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले हैं। आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो।
1: मैं तो सोचती हूँ कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये सुनाएं, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा।
0: बिल्कुल, हम भी ये गीत सुनना चाहते हैं और इसी गीत पर हम आगे भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अतुल जी, गीत को सुनने के बाद फिर से देशभक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई तो लोग इस गीत को सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनवाया जाए और रील को वापस रिवाइंड किया जाता था और बार बार इस गीत को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी इस गीत से बहुत क्रोधित हो गई थी।
1: अब देखिए, उस वक्त तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में
0: जी।
1: लेकिन जो बातें सुनी और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी
0: जी।
1: जैसे हम लोग कभी बैठे, हमारे कोई रिलेशंस में रिश्तेदार आए, दोस्त आए बापू के, तो बातें होती थी, तो तब मैंने ये सब सुना था। और उसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स इस गाने को सुन के बहुत ही नाराज हो गए, आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि इस कवि को पकड़ो, इसको गीतकार को पकड़ो, इसने हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा खतरनाक सा गीत लिखा है। तो उनके लिए समन्स निकल गया, अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट निकला तो हमारे घर के लोग सब परेशान, माँ परेशान, दूसरे सब रिश्तेदार सब परेशान कि अब क्या होगा, इनको पकड़ के ले जाएंगे। उनको अंडरग्राउंड कर दिया, अंडरग्राउंड मतलब कहीं
0: भूमिगत।
1: तो भूमिगत हो गए तो ठीक है, ये लोग तो ढूंढते रहते थे कि कहाँ है, जब हाथ में आएंगे तो पकड़ लेंगे। उसी दौरान एक अपने जो भारतीय एक ऑफिसर थे वो वहां पर ब्रिटिशरों के साथ काम करते थे
0: जी।
1: उन्होंने कहा कि आप लोग ये इनको वारंट तो दिया है आपने, लेकिन आपको पता है कि ये गीत हमारे खिलाफ नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोलते, मतलब वो जो वहां के ऑफिसर बोलते, कैसे नहीं है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, तो हमको ही बोल रहे हैं ना कि निकलो यहाँ से। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी।
0: बिल्कुल,
1: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है। तो वो बात सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
0: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ गई थी, कहते हैं शब्दों की जो जंग थी,
1: शब्दों की जंग, और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे। और आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये

0: गाना उतना ही पॉपुलर है।
1: बिल्कुल, और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे जो है रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो हिलोरे लेने लग जाता है।
0: और दूर हटो है दुनिया वालों, तो अभी भी हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान पे नजर मत डालो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और आज भी उनके लिखे जो गीत हैं वो आज भी लोगों को देशभक्ति से जोड़ते हैं। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि आज इस वक्त भी जब उनके गीत सुने जाते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं?
0: ये उनकी स्टाइल है, मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल सादा, उन्होंने जो लिखना जो था वो हर एक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, वो उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, तो लोग समझते हैं और समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों के रूह तक सीधे पहुंचती थी, सबसे बड़ी बात,
0: सही बात
1: है ना। और आपने कहा कि गांधी जी पर भी उन्होंने ये गीत लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो?
0: बहुत ज्यादा, गांधी जी उनके हीरो थे। तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा, तो वो आप देखिए कि बच्चों की भाषा में लिखा है।
1: बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: तो वो बच्चों की भाषा है चाहे, लेकिन वो भाषा इतनी सरल है, आप सुनिए तो आखिरी में आप जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है इस गाने के सिवाय वो पूरी नहीं होती।
1: जी, बचता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कविताओं में, गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज्यादा असर था, और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हों या भजन लिखे हों, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक उसका बिल्कुल पहुंचना संभव हुआ। तो आपकी पसंद का एक गीत और सुन लिया जाए, आप कहें तो ये गीत सुना जाए,
0: यही साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।

0: मितुल जी, हमारे भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से गीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने संगीत भी दिया और गाया भी, है ना? लेकिन ऐसे गीतकार और गायक बिरले हैं जिन्होंने अपने लिखे गीत को स्वयं गाकर अमर ख्याति प्राप्त की हो। तो आप समझ सकते हैं मैं कवि प्रदीप जी की ही बात कर रही हूँ। उनका ये गायन, जो उन्होंने गीत गाए हैं फिल्मों में, भजन गाए हैं फिल्मों में, ये गायन कैसे शुरू हुआ, और क्या कोई शास्त्रीय संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी, या किसी संगीतकार या कलाकार की मांग पर उनका गाना शुरू हुआ?
1: ऐसा है कि मेरे बापू बड़नगर में, उनकी पैदाइश बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक छोटा सा कस्बा बड़नगर
0: जी,
1: और वहां पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी। तो मेरे दादाजी थे वो वहाँ के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। गाराखेड़ी में अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहाँ जाते रहते थे, वहाँ खेत खलिहान थे। तो वहाँ पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं, भील जाति के लोग। तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू भी, उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी।
0: अच्छा। हाँ,
1: तो वहाँ क्या होता था, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाना, पानी भरना, फिर अपने चक्की चलाना, गेहूं डाल के आटा बनाना, वो रोज का काम रहता था गांव में। तो मेरी दादी जो है वो चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी, और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ बैठ के वो सुनते रहते थे। तो वो सुनते सुनते वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, लोकगीत, वहां पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे
0: जी।
1: तो ये भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी, रामू वहां जाके बैठे, उनके साथ बैठ के गाए। तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना, जो खनक है
0: जी,
1: वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई
0: नहीं है,
1: सारे गामा नहीं है,
0: कॉपी की हुई नहीं है,
1: कॉपी की हुई नहीं है, और कोई रियाज नहीं है, ठीक है। तो ये जो आवाज उनकी है वो एकदम अलग क्यों है, इसीलिए। फिर यहाँ पर जब वो कवि बने, लेखक बने, गीतकार बने, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे तो वो कहते थे कि कवि जी आप ही अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना आप ही ये गाना गा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके एक एक गीत उनका गाने का शुरू हो गया
0: जी।
1: और उनके गाए हुए जितने गीत है वो सब आज तक पॉपुलर है,
0: बिल्कुल।
1: कोई लाख करे चतुराई, हाँ, फिर पिंजरे के पंछीरे, आज भी पिंजरे के पंछीरे सुन के भी लोग रोते हैं,
0: बिल्कुल। वो दर्शन,
1: छोटे पिंजरे में पंछी क्या सोचता होगा, वो उड़ नहीं पा रहा है। तो ये दर्शन के गीत, और भी कई, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, हाँ। और मतलब ये मैं कहूँ कि इतने सारे गीत हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी, हाँ, अरे बाप रे, मैं आपको क्या बताऊं,
0: दर्पण में
1: उखड़ा देख ले दर्पण में। तो उनके गाए हुए हर एक गीत लोगों को छू गए हैं, और आज भी लोगों के पास सीडीज, कैसेट्स, और उनके प्रदीप जी के गीतों की ये पूरी एक
0: सीरीज है उनके पास, हाँ, आज भी उनके
1: सुनते हैं लोग,
0: प्रशंसक हैं जो आज भी शिद्दत के साथ प्रदीप जी को पसंद करते हैं। क्या कोई गीत अभी आप सुनना पसंद करेंगी?
1: पिंजरे के पंछी सुनिए।
0: चलिए सुनते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

मितुल जी, जब मैं छोटी थी हमारे घर में भी रेडियो का माहौल था। शुरू से प्रदीप जी के गीत हम सुना करते थे, तब शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ पकड़ी, इन गीतों को सुना समझा, लेकिन जितना समझा है वो ये समझा है कि बिरले कलाकार थे वो, और ऐसे कलाकार कहीं मिलते नहीं है जिन्होंने निस्वार्थ लिखा, प्रतिद्वंदिता नहीं रखी, पॉपुलर

0: करने के लिए नहीं लिखा, वो प्रोफेशनल नहीं थे, हृदय के कवि थे, दिल के कवि थे।
1: एकदम सही कहा,
0: दिल से लिखा,
1: दिल से जो लिखा दिल से लिखा।
0: और सबसे बड़ी बात कि उनके गीतों में खरी सच्चाई भी हमें सुनने को मिलती है और आमतौर पर जो इंसानी कमजोरियों को उजागर करती है। तो यानी उनकी काव्य शैली में वो जबरदस्त प्रभाव होता था जिसमें वो 100% की बात भी जो है चुटकियों में कह डालते थे। तो उनके कई गीत हैं जैसे देखते रहे संसार की हालत का अभी आपने जिक्र किया, या हमने जग की अजब तस्वीर देखी, पिंजरे के पंछी रे या मुखड़ा देख ले दर्पण में। यानी कवि प्रदीप जी ने अपनी रचनाओं से जो संसार रचा वो अद्वितीय संसार है मितुल जी। तो आप उसे कैसे देखती हैं आज जब आप इस उम्र तक आ गई हैं, हम कवि प्रदीप जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेडियो से उनके गाने सुनती होंगी, कहीं जाती होंगी उनका जिक्र होता होगा, उस समय क्या माहौल था उनके गीतों को सुनकर और आज क्या माहौल है, एक सुपुत्री क्या महसूस करती है?
1: आपको एक बात बताऊं कि मैं जब छोटी थी तब मैंने जैसे कहा कि उस वक्त तो रेडियो ही था और रेडियो में ही उनके गाने बजते थे। तो हमारे वहाँ पर एक हमारा घर में काम करने वाला भाई थे हमारे, मतलब जो घर का काम करते थे, उनके पास भी एक रेडियो रहता था। तो दोपहर होती थी तो वो उसको आराम करने के लिए वो बैठ जाते थे, लेकिन जब बापू के गाने आते थे तो रेडियो जोर से बजा के साहेब चा गाना आला साहेब चा, मतलब वो मराठी में दौड़ दौड़ के हमको के देखो देखो आई का सर्व लोग आई का, तो सुनिए सब लोग। तो ऐसा होता था, वो माहौल था घर का। मैं छोटी थी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसमें एक लाइन आती है, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो प्यारे बापू के प्राण, मैं सोचती थी कि मेरे बापू,
0: अच्छा
1: हाँ, तो मुझे ये लगता था कि मेरे बापू के प्राण रो रहे हैं। और मैं भी साथ में रोना शुरू करती थी, सब लोग तुम क्यों रो रही हो, मैंने बोला फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि मैं जोर जोर से रोती थी और मेरी माँ मुझे वो कराती थी कि नहीं ठीक है, ये बापू मतलब गांधी बापू, और तब ये नहीं पता था कि बापू मतलब गांधी जी।

0: आपने कहा कि आज मैं क्या सोचती हूँ, हर एक दुख की घड़ी में कोई भी गीत आप ले लीजिए तो आपको मन की शांति देगा
1: जी।
0: जैसे कहीं पर हम लोग कोई दुख की घड़ी हो या कहीं पर ऐसा हो माहौल के जहाँ हम लोग सोचते हैं कि अरे हमारा कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तब अगर हम ये सुने कि कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, गाने से भी हम अपने आप को उसमें से निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है कई लोगों ने ठोकर खाई है तो हम क्या है,
1: मतलब हमें जीवन दर्शन समझ आता है और अपने मन को हम समझा लेते हैं,
0: समझा लेते
1: कि अच्छा इस गीत में इस तरह से कहा गया है कि कर्म का लेख मीठे नारे हाँ। भाई, तो हमें भी भुगतना है अगर हमारे कर्मों में
0: कर्मों में कुछ लिखा है तो। और दूसरा गीत है जो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, तो हमको प्रेरित करते हैं कि अब दूसरों का दुखड़ा जो है दूर करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो आपका भी जो दुख है वो भगवान ले लेंगे, तो दूसरों को आप मदद करिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके बहुत साधारण से सरल शब्द है आज जो मैं अभी समझ पा रही हूँ कि उनके हर एक गीत को हमको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है।

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था पहला भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: उजाले उनकी

0: यादों के।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज एवं एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:02 हुए हैं। प्रस्तुत है युवाओं का अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी। प्रस्तुत करता है सौरभ कुमार।

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम युवानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त मानसी और लेकर आई हूं आपके लिए आज इस सुहानी रविवार की शाम में दिल से जुड़ी कुछ बातें। दोस्तों, मई महीने का अंतिम रविवार अब हमारे सामने है। कुछ ही दिनों पहले तक तपती धूप और गर्म हवाएं लोगों को बेहाल कर रही थी, लेकिन अब मौसम ने अचानक से करवट बदल ली है। चारों ओर बारिश की हल्की फुहारें, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और ठंडी हवाएं मन को एक अलग ही सुकून दे रही है। ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति खुद गर्मी से थके लोगों को राहत का संदेश दे रही हो। बरसात की ये शुरुआत अपने साथ नई उम्मीदें भी लेकर आती है। पेड़ पौधे फिर से खिल उठते हैं, खेतों में हरियाली लौटने लगती है और लोगों के चेहरों पर मुस्कान दिखाई देने लगती है। रविवार की यह शाम बारिश की बूंदों के साथ और भी खूबसूरत बन जाती है। ऐसे मौसम में एक कप गर्मा गर्म चाय, अपने पसंदीदा गीत और अपनों का साथ, बस यही तो छोटी छोटी बातें जिंदगी को खास बना देती है। तो दोस्तों, इसी खुशनुमा मौसम और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में। उसके बाद होगा हमारा दैनिक स्तंभ डेली ट्रिविया। साथ ही दोस्तों, रविवार के खास स्तंभ में आइए जाने संविधान में हम करेंगे चर्चा।

0: जिसमें हमने विषय चुना है संविधान और युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज महीने के अंतिम दिन में हमारे युवानी कार्यक्रम में फोन इन प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें हम किसी भी समसामयिक विषय पर युवाओं से बातचीत करते हैं। आज के इसी विशेष स्तंभ में हम आपको सुनाएंगे फोन इन प्रसारण, जिसमें युवाओं ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में अपने विचार साझा किए हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम में आपकी पसंद के कुछ मधुर गीत होंगे जो आज के कार्यक्रम को बेहद यादगार बना देंगे, और अंत में समसामयिक की फन फैक्ट और समापन बातचीत के साथ संपन्न होगा आज का हमारा कार्यक्रम। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में आज के स्तंभ चर्चा में हम बात करेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में, जो हर वर्ष मई महीने के अंतिम दिन यानी 31 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करना है। दोस्तों, आज के समय में तंबाकू का सेवन एक गंभीर समस्या बन चुका है। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पाद न केवल उसके परिवार और समाज पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं, बल्कि व्यक्ति के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को भी कमजोर बना देते हैं। तंबाकू के सेवन से कैंसर, हृदय रोग और सांस से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां हो सकती है। सबसे चिंता की बात तो ये है कि आज कई युवा भी इसकी चपेट में आ चुके हैं, कभी दोस्तों के दबाव में, कभी दिखावे और तनाव के कारण युवा तंबाकू की ओर आकर्षित हो जाते हैं। शुरुआत भले ही मजाक या शौक के रूप में हो, लेकिन धीरे धीरे यह लत बन जाती है और व्यक्ति इसके नुकसान समझते हुए भी दूर नहीं हो पाता है। दोस्तों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस हमें यह संदेश देता है कि स्वस्थ जीवन के लिए तंबाकू से दूर रहना बेहद ज़रूरी है। हमें खुद भी जागरूक रहना चाहिए और अपने परिवार, दोस्त एवं आसपास के लोगों को भी इसके दुष्प्रभावों के बारे में बताकर सभी को जागरूक करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, इस अवसर पर हम यह संकल्प लें कि न स्वयं तंबाकू का सेवन करेंगे और न ही दूसरों को इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। स्वस्थ युवा ही स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र की पहचान है। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हुए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना,
3: इतनी भी क्या जल्दी थी।
2: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना,
4: और ये
5: मेरी गुड़िया के ना।
6: पर दादी,
5: हाँ,
6: आपके नाम?
7: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
8: शुभ शुभ बोलो।
6: क्या
7: आरबीआई कहता है?
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, इसके बाद बारी आती है हमारे दैनिक स्तंभ डेली ट्रिविया की, जिसमें हम आपसे आकाशवाणी संबंधित एक प्रश्न पूछेंगे। आज का प्रश्न है, भारत में वर्तमान में आकाशवाणी के कुल कितने केंद्र हैं? जिसका सही जवाब हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। तब तक के लिए यूं ही बने रहिएगा अपनी रेडियो दोस्त मानसी के साथ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल, जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
10: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है, क्योंकि युवाओं की सोच, ऊर्जा और जिम्मेदारी ही समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाती है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए आज के इस विशेषतम आइए जाने संविधान में हम बात करेंगे संविधान और युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी के बारे में। साथ ही जानेंगे कि देश के विकास में युवाओं का योगदान कितना महत्वपूर्ण है और आने वाले भारत के निर्माण में उनकी क्या भूमिका हो सकती है, एवं एक जागरूक युवा के रूप में हमारे क्या कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं। दोस्तों, भारत का संविधान हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। यह हमारे समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा और अभिव्यक्ति जैसे कई अधिकार प्रदान करता है। लेकिन केवल अधिकारों की जानकारी होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझना भी उतना ही जरूरी है। यहाँ सबसे बड़ी भूमिका युवा पीढ़ी की होती है, क्योंकि युवा ही देश का वर्तमान और भविष्य दोनों है। आज के युवा शिक्षा, विज्ञान, खेल, कला और तकनीक जैसे हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ युवाओं की जिम्मेदारी यह भी है कि वे संविधान के मूल्यों जैसे एकता, समानता, भाईचारा और लोकतंत्र को अपने जीवन में अपनाएं। समाज में फैल रही गलत सूचनाओं, भेदभाव और हिंसा से दूर रहकर सही सोच और जागरूकता फैलाना भी युवाओं का ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है। युवा यदि अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझे तो देश और समाज दोनों मजबूत बन सकते हैं। मतदान करना, कानून का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना, ये सभी एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है। देश के भविष्य को बेहतर बनाने में युवाओं की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। उनकी ऊर्जा, नई सोच और सकारात्मक प्रयास हमारे जीवन और हमारे देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि युवा केवल अपने सपनों तक सीमित न रहें, बल्कि देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें। तो आइए दोस्तों, हम सभी मिलकर एक जागरूक और जिम्मेदार युवा बनने का संकल्प लें और संविधान के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। दोस्तों, आज के स्तंभ आइए जाने संविधान में बस इतना ही। दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे आज के विशेष मासिक स्तंभ का, जिसमें हमने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर कुछ युवाओं से कॉलिंग के जरिए बातचीत की और जाना कि तंबाकू को लेकर उनकी क्या सोच है तथा वे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। इस खास फोन इन कार्यक्रम में युवाओं ने अपने विचार बहुत ही खुलकर साझा किए हैं। बातचीत के साथ साथ आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे हमारे युवा साथियों के मनपसंद गीत। तो आइए मित्रों, सुनते हैं युवाओं की आवाज़, उनके विचार और उनके मनपसंद गाने। फोन इन युवाओं की पसंद कुछ बातें कुछ गाने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम मधुलिका है।
0: जी, आप क्या करती हैं?
1: मैं पीजी की छात्रा हूँ।
0: तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है, तो युवाओं को तंबाकू से दूर रहना क्यों जरूरी है, इसके बारे में आप कुछ बता सकती हैं?
1: जी हाँ, युवाओं को तंबाकू से दूर रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। तंबाकू लगातार खाया जाए या उसका सेवन किया जाए तो शरीर पे इतना इफेक्ट होता है कि इससे कैंसर हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकते हैं।
2: तो युवाओं में कम उम्र में भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है।
1: हाँ, ये लक्षण देखे जा रहे हैं, इसलिए युवाओं को सतर्क रहना चाहिए। उनका रुझान पढ़ाई की तरफ से भी हट रहा है। अभी नशे में अगर वो है तो उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है इस तरह से। तो इसलिए तम्बाकू से अगर वो दूर रहे तो ज्यादा बेहतर होगा।
0: तो हम सभी युवाओं को मिलकर स्वस्थ और सफल जीवन के लिए दूसरे युवाओं को जागरूक करते रहना चाहिए और तंबाकू से दूरी बनानी चाहिए।
1: जी,
0: तो अब आप बताइए कि फोन इन युवाओं की पसंद में आप अपनी पसंद का कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: वो फिल्म परम सुंदरी का परदेसिया फिल्म जो गाना है वो।
0: जी, बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये।

0: जुनूनी युवाओं की पसंद कुछ बातें कुछ गाने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम खुशबू कुमारी है
0: जी। क्या करती हैं आप खुशबू?
1: मैं बीएससी की स्टूडेंट हूँ
0: जी। बहुत बढ़िया। आज मैं आपसे 21 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि तंबाकू से हमारे शरीर पर क्या बुरा असर पड़ता है?
1: तंबाकू का सेवन शरीर के लिए लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचाती है। अधिक प्रभाव फेफड़ों, हृदय और मुंह पर पड़ता है। फेफड़ों का कैंसर, टीबी, अस्थमा और सांस लेने जैसी
0: बीमारियां भी हो सकती है।
1: हाँ,
0: धीरे धीरे व्यक्ति को इसकी लत लग जाती है जो कि जल्दी छूटती नहीं है।
1: इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए
0: जी और स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर होना चाहिए। आज के कार्यक्रम में आप अपनी पसंद का कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: मैं एनिमल मूवी का सतरंगा सॉन्ग।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: कोनिंग युवाओं की पसंद कुछ बातें कुछ गाने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सोनम कुमारी है
0: जी। क्या करती हैं आप सोनम?
1: मैं स्टूडेंट हूँ
0: जी। बहुत अच्छा। तो जैसा कि आप युवा लोगों में तंबाकू का असर देखा गया है, खासकर जब स्कूल कॉलेज में दबाव होता है, इस 31 मई को हम तंबाकू से होने वाले नुकसान पर जोर दे रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि एक छोटा फैसला जैसे तंबाकू न लेना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? तो क्या आप ये बता सकती हैं कि तंबाकू निषेध के लिए सरकार और प्रशासन क्या कदम उठा रहे हैं?
1: सरकार को कानूनी रूप से कार्रवाई करना चाहिए, जैसे उस पे तंबाकू जो लेते हैं उस पे करना चाहिए
0: जी, जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित करनी चाहिए और नियम तोड़ने वाले पर जुर्माना लगाना चाहिए जी। जैसे स्कूल और कॉलेजों के आसपास भी तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगानी चाहिए
1: उस पे भी कानूनी कार्रवाई करना चाहिए
0: जी। केवल कानून से ही नहीं बल्कि जागरूकता से ही तंबाकू मुक्त समाज बनाया जा सकता है। आज के कार्यक्रम में आप अपनी पसंद का कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: अरिजीत सिंह का ओ माई सॉन्ग
0: जी। हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: टोनी युवाओं की पसंद कुछ बातें कुछ गाने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका?
1: जी आरती कुमारी।
0: जी क्या करती हूँ आरती आप?
1: अभी बीएड की स्टूडेंट हूँ मैं।
0: जी बहुत बढ़िया। आज मैं आपसे 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो पता है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
1: विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का उद्देश्य यह है कि हम तंबाकू के प्रति उन्हें जागरूक कर सके, उन्हें नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित कर सके, उन्हें यह समझा सके कि तंबाकू का सेवन करना न सिर्फ उनके लिए हानिकारक है बल्कि उनके पारिवारिक, आर्थिक, मानसिक सभी स्थितियों में उन्हें इससे हानि होती है।
0: जी बहुत बढ़िया। जब हम लोग स्वयं जागरूक होंगे तभी एक स्वस्थ और तंबाकू मुक्त भारत का सपना साकार हो सकेगा। आज के कार्यक्रम में आप अपनी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: देखा तेनु ये वाला सॉन्ग मिस्टर एंड मिसेज माही के मूवी का।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

दोस्तों, अब समय है हमारे दैनिक इसम समसामयिकी का। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रगति की बैठक

में अध्यक्षता की, जो कि 91वीं बार थी, जिसमें प्रमुख अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा और जल संसाधन परियोजनाओं की समीक्षा की गई। त्रिपुरा राज्य में अनानास उत्पादकों के लिए 236 करोड़ रुपए का मिशन क्वीन पाइनएप्पल लॉन्च किया गया। आज के समसामयिक ज्ञान में बस इतना ही दोस्तों। मित्रों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने स्तंभ डेली ट्रिविया के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा था आपसे कि भारत में वर्तमान में आकाशवाणी के कुल कितने प्रसारण केंद्र कार्यरत हैं, जिसका सही जवाब है 591 केंद्र। दोस्तों, स्तंभ डेली ट्रिविया के बाद अब हम बताएंगे आपको हमारे अगले दैनिक स्तंभ फन फैक्ट के अंतर्गत आकाशवाणी संबंधित एक रोचक जानकारी। क्या आपको पता है मित्रों, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 8 जून 1936 को हुई थी। इससे पहले ISBS यानी इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से जाना जाता था, जिसे बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। साल 1957 से इसे आधिकारिक तौर पर आकाशवाणी भी कहा जाने लगा। आज के फन फैक्ट सेगमेंट में बस इतना ही। इसी के साथ आज का युवानी कार्यक्रम अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। उम्मीद है कि आज की यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने हर कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया होगा। अगर आपको कार्यक्रम का कोई भी हिस्सा पसंद आया हो तो आप अपनी राय हमें पत्र या ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है युवानी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर, पिन कोड नंबर 812001। हमारा ईमेल एड्रेस है phair.bhagalpur@gmail.com। अब दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त मानसी को। अगली मुलाकात तक के लिए शुभ संध्या एवं नमस्कार।

युवावाणी कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। प्रस्तुतकर्ता थे सौरभ कुमार। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। आरंभ में सुनिए दिलवाले फिल्म का गीत, कुमार सानू, अलका याग्निक और अजय देवगन की आवाज़ों में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: ए आर रहमान की आवाज़ में सुनिए दिल से फिल्म का गीत। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं ए आर रहमान।

रंग फिल्म का गीत सुनिए अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। समीर के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।

संदेश से पहले आप सुन रहे थे फिल्म संगीत आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। इसमें सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष एवं कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं इनका प्रसारण समय। पहले आज के शेष कार्यक्रमों पर एक नज़र। अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6 बजे से आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 7:10 पर लोकगीत सुनेंगे मधु मिश्रा से। 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में आनंद कुमार सिंह को आप सुन पाएंगे। 8 बजे रजनीगंधा कार्यक्रम में फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे। 9:30 पर फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे। 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये तो थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब कुछ जानकारियाँ हम आपको देंगे कल के कार्यक्रमों की। कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी 5:48 पर। 5:55 पर आप सुनेंगे खेत खलिहान कार्यक्रम में कृषि आधारित वार्ता चिंतन मनन का प्रसारण किया जाएगा। 6:05 पर। 6:10 पर भक्ति संगीत सुनेंगे वंदना कार्यक्रम में। 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में डॉक्टर गौर मोहन मजुमदार से सचिन कुमार की बातचीत होगी बदलते मौसम में सावधानियां विषय पर। 6:40 पर रामचरितमानस कांड का प्रसारण किया जाएगा। 7 बजे से 7:55 तक मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में ध्रुव कुमार से आप सुनेंगे सुगम संगीत। श्रीमती सीमा सिन्हा से अंग्रेजी वार्ता सुनेंगे चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड डिप्लेटिंग नेचुरल रिसोर्सेस। इसके अलावा फिल्म संगीत रेल सूचना मौसम सूचना अखबारों की सुर्खियां और कुछ बातें होंगी इतिहास की। प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। कल के कार्यक्रमों में फिल्मी गीतों का समय याद रखेंगे 9:06 पर। 10 बजे 11 बजे 11:30 पर एवं दोपहर 2:30 पर। 9:30 पर सुगम संगीत सुनेंगे शंकर मिश्र नाहर से। 10:30 पर लोकगीत सुनेंगे कपिल देव ठाकुर से। 12 बजे नारी लोक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रस्तुतकर्ता होंगी श्री पार्वती के। 12:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनेंगे उमंग। 1 बजे लोकरंग कार्यक्रम में चामालाल मंडल से लोकगीत सुनेंगे। 1:30 पर घर आंगन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 3 बजे आप सुनेंगे बांग्ला गान। 3:20 पर देशभक्ति गीत सुनेंगे। 3:25 से शाम 5 बजे तक विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल शाम 5 बजे युवा सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुतकर्ता होंगे सौरभ कुमार। 5:30 पर फिल्म संगीत सुनेंगे। 6 बजे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 7:10 पर लोकगीत सुनेंगे संजीत कुमार सिंह से। 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में चंद्रशेखर को आप सुन पाएंगे। 8 बजे रजनीगंधा कार्यक्रम में फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे। 8:15 पर कार्यक्रम खेल खिलाड़ी का प्रसारण किया जाएगा। प्रस्तुतकर्ता होंगे मोहम्मद सरशार अहमद। 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम दिल्ली से रिले करेंगे। 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कलाकार होंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खां और साथी। 10:30 पर श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनेंगे पसंद आपकी। 10:50 में आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष एवं कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं इसका प्रसारण समय। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। शाम के 6 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। प्रस्तुत करता है अतुल कुमार प्रियदर्शन।

0: ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता भाइयों बहनों को लाखों का नमस्कार।
1: साथ में अकलू के भी नमस्कार, लाखों भाई अपनों को नमस्कार।
0: नमस्कार और हार्दिक स्वागत अकलू भाई। और सब सुनाइए, क्या हाल समाचार है?
1: सब बढ़िया छे है। देख लो जे पिछला 4-5 दिन पे ना जे आंधी तूफान चल रहे, बरसा हो ले, एरास थोड़ा सा जैसे तकलीफ तो होबे कर ले, लेकिन मौसम जैसे खुशगवार हो गलो
0: मौसम।
1: लेकिन फैनो देखो, अब फैनो गर्मी धीरे धीरे बढ़ा लगलो छे।
0: बिल्कुल, लेकिन हमारे किसान भाइयों को काफी फसलों में क्षति हुई है। जितने भी मक्का बोए हुए किसान थे उनकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई थी, वो सब भींग गए हैं पानी में। केला के फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है।
1: आरो जे आम और बगीचा, लीची बगीचा चले, वहां देख लो कतर ढंगराए गए आम और टूटी टूटी काफने से।
0: बिल्कुल,
1: तेना में बर्बादित हुए कर ले फसल के। लेकिन की करबो, है तो प्रकृति के नियम छके कि वो अपनो जे छे बदला लाए ले छे और परिवर्तन होता रहे छे। लेकिन फिर भी एकरा से हमरा सनी के सीखना छे कि जे भी छे ओ परिवर्तनशील छे, चाहे अपनो दुनिया में अपनो जिंदगी में दुख आरो सुखी केहन रह, दुख भी सब दिना नहीं रहते तो सुख भी सब दिना नहीं रहे छे, दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख ऐता रहते। लेकिन अपनो सनी का एक रंग बनी करी का जीवन में आगे बढ़ते चले जाना छे।
0: बिल्कुल, और ऐसी प्राकृतिक आपदाएं कभी कभी आती है अकलू भाई, जिनसे हमें हमारे जान माल की काफी क्षति होती है।
1: देखो लाखो भाई, है जे प्राकृतिक आपदा छे, है तो बिना बोले ले आबी छे।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन कुछ एहनो चीज छे जे की ओकरा हम सब खुदे बोला ले छे और ओकरा से अपनो स्वास्थ्य से हाथ धो बैठे छे।
0: बिल्कुल,
1: और यही वास्ते समय समय पर हम सनी जागरूक करे वास्ते विशेष विशेष दिवस मनाए छे। जना करी आज के देखो, आज के 31 मई, आरो आज के हम सनी अपनो स्वास्थ्य कवर का अच्छा करे वास्ते, स्वास्थ्य पर विचार करे वास्ते कि स्वास्थ्य बनलो रह, एकरा वास्ते हम सनी मनाए छे आज के विश्व तंबाकू निषेध दिवस। कि तंबाकू का निषेध करना छे, तंबाकू के उपयोग नहीं करना छे और दूसरों को बताना छे कि तंबाकू कत्ता हानिकारक छे, एकरा छोड़ो और जिंदगी का अच्छा से जियो।
0: बिल्कुल, देखिए अकलू भाई, जहाँ तक धूम्रपान का प्रभाव है वो नकारात्मक तो होता ही है, और जानबूझकर हम अपने शरीर में ऐसे विषैले पदार्थों का ग्रहण करें ताकि हमारा स्वास्थ्य और अच्छा ना हो, ये तो अच्छी बात नहीं है
1: एकदम ने।
0: इसलिए आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर हम और हमारे जितने भी आसपास सुनने वाले श्रोता भाई बंधु हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि आज ही से आप धूम्रपान को बंद करें, बिल्कुल उसे धूम्रपान का सेवन ना करें। और आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है, यह हमारे स्वास्थ्य पर असर डालता है, साथ ही सामाजिक आर्थिक नुकसान के बारे में भी वैश्विक जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस हम लोग आज मनाते हैं।
1: लाखो भाई, स्वास्थ्य पर असर तो डालवे कर छे, लेकिन कैनो असर डाले छे, अच्छा कि खराब?
0: बिल्कुल, देखिए इसमें
1: खराब असर ना,
0: बिल्कुल खराब असर डालते हैं।

0: और इसके मुख्य कारण जो होते हैं अकलो भाई, इस दिवस को मनाने का उसके प्रति हमें जागरूकता बढ़ाना होता है। तंबाकू के सेवन से देखिए कि कैंसर, फेफड़े की बीमारी, दिल का दौरा जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती है। इसके कारण दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हो जाती है। और इसको मनाने का की शुरुआत जो है और इसका जो इतिहास है, 1987 से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तंबाकू महामारी और इसके घातक परिणाम की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिन की स्थापना की गई थी। और इसके मनाने का और मुख्य कारण जो है कि तंबाकू उद्योग को भी बेनकाब करना है। इसका मुख्य उद्देश्य तंबाकू कंपनी की व्यावसायिक रणनीति और युवाओं को जो उनके लुभाने वाले तौर तरीके होते हैं उन्हें भी उजागर करना इसका मुख्य कारण है। और अकलू भाई, तंबाकू नियंत्रण की भी नीतियों जो होती है इसके कारण होती है। यह दुनिया भर में सरकार को तंबाकू की खपत को कम करने वाली जो प्रभावी नीतियां लागू करने के लिए होती है उसे भी प्रोत्साहित करता है। और तंबाकू के सेवन से कई प्रकार के ऐसे कैंसर होते हैं जैसे कि फेफड़े का कैंसर, स्वर यंत्र का, मुंह का, ग्रासनली का, गला का, मूत्राशय का, गुर्दा का, यकृत का, पेट का, अग्नाशय का, गर्भाशय ग्रीवा का, साथ ही तीव्र माइलोइड ल्यूकेमिया का भी प्रमुख कारण है।
1: देखो लाखो भाई, इतना इतना प्रकार के कैंसर जरा नामलेस भी आदमी से डरे छे, हाउ बीमारी होय छे, आ तैयो जे छे जिसे आदमी नशा करेला बाजने आबि रहलो छे, धूम्रपान करिये रहलो छे, तो यही वास्ते त ओकरा जागरूक करे वास्ते ही त हम असनी आज के दिन मनाय रहलो छे विश्व तंबाकू निषेध दिवस। कि तंबाकू यारो तंबाकू से जे बनलो ओकरो उत्पाद छे ओकरो उपयोग नहीं करो तो अच्छा रहता, केना कि है जिंदगी है स्वास्थ्य तोरज खाँ, जिंदगी फेनु दूसरो बार नहीं मिले छे, एक के बार मिले छे, ओकरा अच्छा से हंसी खुशी से और अच्छा स्वास्थ्य के साथ अगर गुजारबो तो अच्छा रहते, केना कि दुख तकलीफ जे शरीर में होय छे वो दूसरा नहीं बांटे छे, वो हमरा खुदे जैसे तकलीफ सहेल पड़ते है समझो, और यही वास्ते तंबाकू का ना कहो।
0: अनुमान है अकलू भाई कि तंबाकू के सेवन से प्रति वर्ष 1 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है।
1: कत्ता है सोचने विषय है।
0: और तंबाकू न केवल हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है अकलू भाई, बल्कि कई तरह के पर्यावरण पर भी असर डालता है।
1: पर्यावरण पर असर डालवे करे छे, साथ ही साथ परिवार आरु समाज कभी तबाह कर दे छे।
0: बिल्कुल। और यह विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज जो हम लोग 2026 में मना रहे हैं इसका एक विषय है आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला। यह विषय इस बात को उजागर करता है अकलू भाई कि तंबाकू और निकोटीन उद्योग बच्चों और किशोरों को लुभाने के लिए उत्पाद को किस प्रकार पुनर्व्यवस्थित करते हैं और फिर उसका विपणन भी करते हैं।
1: और जानबे करे छो आजकल कि जे दिखे छे से बिके छे, ये अवस्था आकर्षक विज्ञापन डाल लखो, आकर्षक रूप से सजल खो, बोल लखो कि ताकि युवा या जे भी हो विज्ञापन के देखे छे तो ऊ जे छे ओकरा अंदर लुभावी जाए छे, ता ओकरा आरो जब ओकरो उपयोग कर लागे छे तो अपना स्वास्थ्य से हाथ धो बैठे छे, ये अवस्था आकर्षित ओकरा अंदर नहीं होना छे, तंबाकू का हमें ऐसा ना कहना छे, कहना कि तंबाकू छोड़वो तभी जीवन जे छौ अच्छा सा बितथौ।
0: देखिए इसके अलावे भी तंबाकू की खेती से मरुस्थलीय का खतरा अधिक हो जाता है। इसके अलावे तंबाकू की खेती में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का जो भारी उपयोग होता है अकलू भाई, जिससे क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है और परिणाम अन्य खाद्य फसलें का उत्पादन जो है कि घट जाता है। और परिस्थिति को देखते हुए तंबाकू खेती पर अंकुश लगाने और किसान को अन्य खाद्य फसलों की ओर अग्रसर करने में सहायता करने के लिए तत्काल जो विधायी कार्रवाई की आवश्यकता है उस पे हमें जोर देना है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस वार्षिक थीम पर

आधारित अभियान चलाकर इन उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा करता है। अकलू भाई देखिए, धूम्रपान और तंबाकू के सेवन से

0: हर साल लगभग 35 लाख हेक्टेयर भूमि नष्ट हो जाती है अकलू भाई, और हर साल 2 लाख हेक्टेयर वनों की कटाई भी हो जाती है। और उस वनों की कटाई के कारण क्या होता है कि मिट्टी का क्षरण भी होने लगता है, और विश्व स्तर पर हर साल 45 लाख करोड़ सिगरेट के टुकड़े ठीक से नहीं फेंके जाते हैं, जिससे क्या होता है कि पर्यावरण पर असर पड़ता है, और इसके विषैले रसायन जो होते हैं हवा में भी घुल जाते हैं, पानी में भी घुल जाते हैं, और मिट्टी में भी यह मिलकर पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो तंबाकू की खेती में भी बड़ी मात्रा में पानी का भी उपयोग होता है, और पृथ्वी पर जल संसाधन को कम करने में भी यह तंबाकू खेती काफी जो है कि असर डालता है।
1: तो कहर कलम छे कि तंबाकू खाली अपनो शरीर पर ही नहीं बल्कि है पर्यावरण पर भी बुरा असर डाले छे। ये
0: बिल्कुल
1: वास्ता तंबाकू का जे छो ओकरो उपयोग नहीं करो तो बढ़िया रहते। और देखो एक बात छे कि दूसरो कतनो अगर खराब छे तो हो तो जे खराब छे छेबे करे, लेकिन अपनों के ना है समझल पड़ते कि हमारा वास्ता की अच्छा छे आरु की खराब छे।
0: बिल्कुल
1: तो जब हम ये समझी जेबे, जब हम शिक्षित हो जेबे कि फलना चीज जे छे वो हमारा स्वास्थ्य वास्ते खराब छे और दूसरो जे चीज छे फलना चीज वो हमारा स्वास्थ्य वास्ते अच्छा छे, तो जे अच्छा चीज रहते ओकरे ने ग्रहण करबे तो है
0: बिल्कुल
1: सबसे बड़ा चीज छे। ये वास्ते तो पढ़लो लिखलो इंसान छो, सब जितना भी श्रोता भाई बहन छे जितना भी सुनी रहलो छे, कम से कम वो जागरूक हुआ कि ओकरा वास्ते तंबाकू खराब चीज छे, ओकरो स्वास्थ्य वास्ते खराब चीज छे, ओकरो जीवन वास्ते खराब चीज छे, आसपास के पर्यावरण पानी धरती वास्ते भी खराब छे। तो ये वास्ते वहनो चीज का हम अपनेबे कथी ला तो ओकरा से दूरी बनाबो। और बहुत बार लाखो भाई यो हो छे कि बहुत युवा जे छे या फिर बहुत आदमी जे छे वो
0: बिल्कुल
1: आजकल तो खैर ज्यादा हो गेलो छे कि वो तंबाकू के उपयोग ज्यादा कर लगलो छे, और तंबाकू के जब उपयोग करे छे तो तंबाकू के लत लगी जाए छे ओकरा, तो वो
0: बिल्कुल
1: चाह
0: बिल्कुल
1: करी कभी ओकरा नहीं छोड़ा पा रहे छे। तो एना में सरकार भी जे छे वो बहुत प्रकार के योजना चलाए छे, और ओकरा में देखो नशा मुक्ति केंद्र भी चलाए रहलो छे, तो
0: बिल्कुल
1: जे युवा एकदम आत्मविश्वास से परिपूर्ण होए करी का वह नशा अगर छोड़ चाहे छे तंबाकू के उपयोग अगर छोड़ चाहे छे नहीं छोड़ पा रहे छे लेकिन वह चाहे छे कि मैं छोड़ दूं, तो वो नशा मुक्ति केंद्र में जाए जेते और वहां जाए करी का थोड़ा दिन वहां रहल पड़े छे, और ओकरा जब नियमित दिनचर्या अपनावे छे तो ओकरा नशा जे छे वह नशा से दूरी बनाए ले छे। एहनो लोग जे नशा के गिरफ्त में छे आरो एकरा से मुक्ति पावी करी का जीवन के शुरुआत करे चाहे छे ओकरे वास्ते नशा मुक्ति केंद्र भी बने लगलो छे, वहां
0: बिल्कुल
1: उ नशा से दूरी बनाए लेते आरो फेनु अपनो दुनिया में वापस लौटी करी का मजबूत इच्छा शक्ति आरो परिवार के समर्थन पावी करी का फेनु एक अच्छा जीवन यापन करे में जे छे उ आगे बढ़ते। है ध्यान रखना छे
0: बिल्कुल
1: कि नशा जे छे उ अगर लत लगी रहे छे तो ओकरा छोड़ावा भी पारे छो, बस जरूरत छे अपनो मन का बुलंद करे का इच्छा शक्ति के एकदम दृढ़ करे का आरो जे छे नशा से दूरी बनावो। एहनो कोई बात नहीं छे कि नशा छोड़न पर छो, नशा छोड़ो जा सके छो, बस तो जो अपना मन सोच ला कि हमरा नशा छोड़ना चाहिए, कहना कि ई हमरो जीवन वास्ता आसपास के जीवन वास्ता परिवार वास्ता
0: बिल्कुल
1: समाज
0: बिल्कुल
1: वास्ता देश वास्ता पर्यावरण वास्ता बहुत खराब छे। तो है आज के दिन हम असनी सब संकल्प है मिलिक लो कि तंबाकू के निषेध करना चाहिए, तंबाकू के उपयोग नहीं करना चाहिए, और
0: बिल्कुल
1: दूसरा
0: बिल्कुल
1: कभी जागरूक करना चाहिए कि तंबाकू के उपयोग नहीं करो तो अच्छा रहते। तभी जे आज के हम असनी है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मना रहल छे, एकरो जे छे जे लक्ष्य छे ओकरा पर हम असनी खड़ा उतरबे और लक्ष्य अच्छा से अच्छा तरीका से पेबे, छे कि नहीं?
0: बिल्कुल
1: तो चलो
0: बिल्कुल
1: एने आरो हम असनी ढेर को बात करबे लेकिन
0: बिल्कुल
1: अभी सुन छे कुछ संदेश।

0: Akashvani at 90.
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: भाई
4: संदेश का सुनला के बाद एक बार फैनू से सभ्य श्रोता भाई बहन के स्वागत करे छे हुनको पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में। आरो जना संदेश से पहना मसनी चर्चा कर लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर, तो हम असनी है ठानी लो कि तंबाकू से दूरी बनाना छे, तो तभी हम के स्वास्थ्य अच्छा रहते। और स्वास्थ्य अच्छा तब रहते कि तब जब कि हम असनी कोनो भी प्रकार के बीमारी से दूर रहबे।
3: बिल्कुल। और देखिए हमारे शरीर में खून की कमी ये कई बार देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, उससे क्या होता है कि बहुत सारे रोग जो है हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं।
4: उनमें के कमी से जो रोग हो छे जहाँ तक हमारा याद छे ओकरा एनीमिया कहे छे कि
3: हाँ, एनीमिया के कारण जो है हमारे शरीर में बहुत सारी कमजोरी हो जाती है, सिर दर्द होता है और भी बहुत सारे लक्षण है। इसके विस्तार पूर्वक जानने के लिए आइए एक पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से एनीमिया के कारण एवं बचाव सुनते हैं और अपने श्रोताओं को सुनाते हैं। वार्ताकार हैं डॉक्टर शोभा रेवन।
5: हमारे शरीर को अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए लौह तत्वों की आवश्यकता होती है, विशेषतः हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। ये हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है, इसी के कारण हमारे खून का रंग लाल है। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम है फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना। हमारे शरीर को लौह तत्व हमारे भोजन से मिलता है, ये अस्थि मज्जा के द्वारा हमारे रक्त तक पहुँचता है, क्योंकि अस्थि मज्जा में ही रक्त कोशिकाएं बनती हैं। रक्त कोशिकाओं में ये लौह तत्व प्रोटीन से मिलकर हीमोग्लोबिन बनाती हैं। जरूरत से ज्यादा लौह तत्व हमारे लीवर में जमा हो जाता है, जो कभी जरूरत पड़ने पर काम आती है। इस तरह अगर किसी कारणवश हमारे शरीर में लौह तत्वों की कमी हो तो अस्थि मज्जा में भी लाल रक्त कोशिकाओं का बनना कम हो जाता है, साथ ही हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम होने लगती है। शरीर में हीमोग्लोबिन की इसी कमी को एनीमिया कहा जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा के अनुसार हम एनीमिया को निम्न वर्गों में विभाजित करते हैं। सामान्य 11 ग्राम या इससे ऊपर, हल्का 10.9 ग्राम से 9 से 5 ग्राम, मध्यम 9.4 ग्राम से 8.1 ग्राम तक, खतरनाक 7.9 ग्राम से 6.5 ग्राम तक, और प्राणघातक 6.5 ग्राम से भी कम। एनीमिया होने के क्या क्या कारण हैं? पहला, रक्तस्राव। शरीर के किसी भी भाग से कम मात्रा में धीरे धीरे रक्तस्राव, जैसे कि मल मूत्र के द्वारा या फिर मृत चमड़े की कोशिकाओं से, जैसा कि जले हुए भाग से होता है।

एक्सीडेंट्स, चोट, शल्यक्रिया के दौरान, प्रसव के दौरान, माहवारी में अत्यधिक रक्तस्राव, खूनी बवासीर, आंत की अल्सर इत्यादि में ज्यादा रक्तस्राव होता है। दूसरा कारण है शरीर को ज्यादा लौह तत्व की आवश्यकता का होना। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब शरीर को सामान्य से ज्यादा लौह तत्व की आवश्यकता होती है, जैसे समय पूर्व पैदा हुए शिशुओं को, बढ़ते हुए बच्चों एवं किशोरों को, धावकों या ज्यादा शारीरिक श्रम करने वालों को, मासिक चक्र शुरू होने पर किशोरियों को, गर्भवती महिलाओं को, दूध पिलाने वाले माताओं को। और अन्य कारण है किसी शारीरिक बीमारी की वजह से खून में लौह तत्वों का अवशेषण नहीं होना या हमारे दैनिक भोजन में लौह तत्वों की कमी का होना। अंत में हुकवॉर्म इन्फेक्शन, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अभिशाप है। एनीमिया के क्या लक्षण हैं? हल्के काम के बाद भी सांसों का फूलना, हमेशा थकावट महसूस करना, धड़कन का बढ़ जाना, शरीर का पीला पड़ना, हाथ पैर और चेहरे में सूजन आना, चक्कर आना, भूख में कमी, मासिक धर्म में गड़बड़ी इत्यादि। इन सभी बातों से हमें ये पता चलता है कि एनीमिया होने का मूल कारण हमारे भोजन में लौह तत्वों की कमी है। क्यों? आइए इस पर भी दो चार बिंदुओं पर बात कर लें। आज की आधुनिक पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से अनेक मामलों में अलग है। आज वे सजग हैं, शिक्षित हैं, विशेषज्ञ नौकरी पेशा हैं और किसी पर आश्रित नहीं हैं। अपने कार्यों, घर, परिवार, समाज एवं देश के प्रति समर्पित हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वे स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति बेहद उदासीन हैं। इसी भागदौड़ भरी जिंदगी में जो मिला थोड़ा खा लिया, या फिर आज की किशोर पीढ़ी स्वयं को दुबला, छरहरा और स्मार्ट दिखाने की होड़ में भोजन से परहेज करने लगे हैं। इसी तरह आजकल के फास्ट फूड ने बच्चों और किशोरों को संतुलित और पौष्टिक आहार से दूर कर दिया है। गरीबी एवं अज्ञानता भी एनीमिया का एक प्रमुख कारण है। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें संतुलित आहार के बारे ज्ञान नहीं है। कुपोषण हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। गरीबी इतनी है कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। बेटे बेटियों के फर्क ने भी एनीमिया को बढ़ावा दिया है, क्योंकि अक्सर बेटियों की उपेक्षा की जाती है एवं उन्हें बचा खुचा भोजन या जूठन ही नसीब होती है, जबकि शारीरिक श्रम उनसे ज्यादा लिया जाता है। कम उम्र में शादी, जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करना या ज्यादा बच्चे पैदा करना भी एनीमिया के कारणों में एक है। तो हम एनीमिया से बचाव कैसे करें? बिल्कुल सरल, अपने आहार में लौह तत्व युक्त पदार्थों को शामिल करें। नवजात शिशुओं के पूर्ण आहार के लिए 6 माह तक उन्हें सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो, उसके आहार में अनाज के साथ हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह देना शुरू करें। फास्ट फूड या जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक से उन्हें दूर रखें। किशोरियों को मासिक धर्म शुरू होने पर लौह तत्व युक्त भोजन एवं आयरन की गोली देनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था स्कूल प्रबंधन या सरकार की तरफ से होनी चाहिए। समय समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं या दूध पिलाने वाली माताओं के भोजन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें भी नियमित जांच एवं आयरन की गोली देनी चाहिए, क्योंकि औसतन एक वयस्क पुरुष को प्रतिदिन 8 मिलीग्राम आयरन और एक वयस्क महिला को 18 मिलीग्राम आयरन की जरूरत होती है। अनेक शोधों से यह बात सामने निकल कर आती है कि 95% एनीमिया

0: भोजन में लौह तत्वों की कमी से होता है, इसलिए मांसाहारी भोजन लौह तत्वों के लिए सर्वोत्तम है, जिसमें रेड मीट, लीवर, अंडा और छोटी मछली आती हैं। लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूर्व निर्धारित शाकाहारी भोजन भी आपको एनीमिया से बचा सकती है। इसके लिए आपको अपने भोजन में अनाज के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फल, ड्राई फ्रूट, फलों का जूस, बीट इत्यादि शामिल करने होंगे। इनका आयरन आपके शरीर में पूरी तरह अवशोषित हो, इसके लिए विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ साथ में लेना जरूरी है, जैसे आंवला, अमरूद, टमाटर, शिमला मिर्च या फिर संतरे का जूस। आहार जनित एनीमिया के अलावा अगर और किसी दूसरी वजह से आपको एनीमिया हो तो चिकित्सक से मिलें, जो एनीमिया के कारणों की जांच करेंगे, फिर उसी अनुसार आपको दवा भी देंगे, इलाज भी करेंगे। अंत में हुकवर्म एनीमिया से बचने के लिए खुले में शौच ना करें, खाली पैर शौच या खेतों में ना जाएं, हमेशा शौचालय का इस्तेमाल करें, अपने घर एवं परिवेश की सफाई पर ध्यान दें और समय समय पर कृमिनाशक दवा खाते रहें। यह हर सरकारी अस्पताल में मुफ्त मिलता है।
1: हाँ अखिलू भाई, एनीमिया के कारण एवं बचाव के ऊपर हम लोग विस्तार पूर्वक अभी जानकारी प्राप्त कर रहे थे।
2: तो इतना अच्छा वार्ता वास्ता वार्ताकार डॉक्टर शोभा रेवन के बहुत बहुत धन्यवाद दे छे, और एक राज जैसे बहुत कुछ सीखेल भी मिलले ना। देख लो कितना अच्छा बात बोल के कि जे खुला पैर से जैसे शौच नहीं जाना चाहिए, आरो जैसे एक उपाय करना चाहिए। अगर अगर पता लगी जाए कि एनीमिया है तो जितना जल्दी हुआ अपनो चिकित्सक से सलाह लो, ओकरा से मिलो और अच्छा से अपनो उपाय करो, ठीक ना?
1: बिल्कुल,
2: तभी है रोग से बचते। तेना कोई भी रोग व्याधि छे ओकरा से तबे बचबे, जबकि हम असनी ओकरा से ना सजग हो जबे, जानी जबे और तब फेनो बचाव के उपाय करबे। और एक रोज बड़ा बात छे कि अपनो दिनचर्या के सही करो, सही समय पर जागो, सही समय पर सुतो, सही सही खा, अच्छा से खा, आरो घूमो फिरो, व्यायाम करो। अभी देखो कि बहुते स्कूल कॉलेज में जैसे गर्मी छुट्टी भी शुरू हो गेलो छे, एनाम जैसे अभी आदमी पास बाल बच्चा पास जैसे समय भी छे, तो भोरे भोर जे सूरज उगलास पहना उठी जा आरो पर मैदान करी करी कर फेनु घूरे निकली जा, बगीचा में थोड़ा घूरो फिरो आरो अच्छा से स्वस्थ स्वच्छ वायु ला, आरो थोड़ा व्यायाम भी करी ला, आसन करी ला थोड़ा, आरो वहाँ जेबो तो दो चार आदमी से हंसबो बोलबो तो जानबे कर छो हंसलो बोलला जे छे ओ स्वास्थ्य अच्छा होय छे। ते वास्ते एनहसनी जे छ अपनो दिनचर्या बनाबो कि स्वस्थ रहो, स्वस्थ हो जा और दूसरों का स्वस्थ रखो, तभी जो गीत संगीत सुनने में भी आनंद देता हूं।
1: आइए एक देवी गीत हम लोग सुनते हैं।

0: AIR at 90.
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: AIR at 90.
1: हाँ क्लो भाई, इस सुहावने मौसम में जबकि अभी बारिश हुई है तो कई लोग जो है कि गर्मी से राहत पाए होंगे और इस राहत में झूमने का भी मन करता होगा।
2: जानी रहलो छी जानी रहलो छी, तोरा मन हम पहचान लिए कहना कि नहीं कि यार पूछ पूछ तो सोच रहलो छो कि है मौसम में थोड़ा गीतलाद हो जाए जे कि मन जे छौ झूमा लागे।
1: हाँ,
2: ना तो चलो सब है मिली कर सुने छे गीत संगीत से भरलो है झूमर जिसकी सब खुश हो जाए।

0: हाँ लो भाई, इस झूमर को सुनने के बाद हम अपने किसान भाइयों को जानकारी देना चाहेंगे कि मौसम संबंधी जो पूर्वानुमान है, आने वाले 2 दिनों के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी, जिनकी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार हो सकती है, चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है, एवं इसके बाद मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% तथा दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है।
1: आरो सामान्य सलाह देलो जाय छे कि आवे वाला दिनों में झड़ बुनी के संभावना का देखता हुआ खेत में कटलो फसल का सुरक्षित स्थान पर ढकी करी कर रखीला। खड़ा फसल में सिंचाई अभी रोकी दहो और खाद कीटनाशक के छिड़काव तब करो जबकि आकाश साफ रहो।
0: बिल्कुल। और वहीं पर मक्का फसलों की बुआई, खरीफ मक्का फसलों की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नत्रजन, 60 किलो स्फूर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे कि सुवान, देवकी, शक्तिमान 1-2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11 शामिल है।
1: है चले जे हो किसान भाई वास्तन जे मक्का के फसल लगाएल चाह रहे छे। अब
0: बिल्कुल।
1: थोड़ा मूंग वास्तन छे कि मूंग आरो उड़द के फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी आरो थ्रिप्स कीट के निगरानी करो किसान भाई। बचाव के वास्ता मैलाथियन 50 EC या फेनु डाई मेथोएट 30 EC के 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से फसल में छिड़काव आकाश साफ रहला पर करना छे।
0: बिल्कुल। और वहीं पर पशुपालक भाइयों के लिए भी सलाह है कि गलघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले करीब 2 घंटा पानी में फुला लें एवं 50 ग्राम खनिज मिश्रण तथा 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें।
1: आंधी, बिजली और तेज हवा से मक्का, केला जना ऊंची फसल के गिरे के आशंका ज्यादा हुई छे। तो बागवानी फसल में अपरिपक्व फल के झड़े और कटाई कार्य में बाधा हुआ पारे छो। तो किसान का खेत के कार्य स्थगित करे और फसल और पशु का सुरक्षित रखे के सलाह दिलो जाए छे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हुए एक और झूमर हम लोग सुनते हैं।

0: हाँ क्लू भाई, अभी हम लोगों ने झूमर सुना।
1: देखो गीत संगीत तो चलते रहते, कहना कि गीत संगीत अगर नए रहता हूँ जीवन में तो जीवन जो नीरस हो तो जीवन का नीरस बनाना नहीं छे, एक जो एकदम हंसी खुशी से गुजारना छे, है तभी होते जबकि आपनों सने के स्वस्थ जीवन होते और उस जीवन में गीत संगीत होते ठीक ना।
0: बिल्कुल, रस तब... रस की बात आपने जहां तक की, देखिए रस और नीरस दो अलग अलग चीज है, लेकिन रस वाले पदार्थों का अभी मौसम है।
1: ओहो, आम और लीची ना, खास करके आम के,
0: आम के।
1: अच्छा तो एक रास की याद लो तरह
0: आम के, अभी जो हम लोग आम खाते हैं ये, और हम इस सीजन के अलावे,
1: सीजन में
0: हाँ मतलब इस मौसम के
1: अच्छा, अलावे, मौसम में
0: हाँ
1: अच्छा,
0: अलावे अच्छा। भी हम उसका उपयोग करते रहें, इसके लिए बहुत सारे उनके संरक्षित पदार्थ बनाते हैं।
1: जना की
0: जैसे उनका मुरब्बा बनाते हैं, अचार बनाते
1: हैं। अचार, आहा, मुंह में तो पानी आ जाए अचार सुनी करी का।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आरू होचे हो?
0: हाँ।
1: कुछ किसे आम कुठला,
0: सिरका, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको बना के हम सालों भर उनका।
1: अच्छा लाखो भाई, वो अमोट खेलो छो?
0: हाँ बहुत मीठा लगता
1: ना,
0: है
1: अमोट लगता हूँ कि आम और रोटी रहा।
0: बिल्कुल,
1: आमो
0: बिल्कुल।
1: के रस का जो है सुखाए करी का एकदम रोटी रंग पपड़ी बनाए दी छे, और ओकरा जो तो बेमौसम भी आम के मजा तो ओकरा से लिए पारे छो।
0: बिल्कुल,
1: तो कोनो भी फसल फल के हम तभी स्वाद लिए पारे छे जबकि ओकरा संरक्षण करी रखबे। अब हमरा आम छे जना, अभी आम के मौसम छे, अभी है गर्म, अभी जे मौसम छे तो आम के छे, एकरा में तो आम खाइबे करे छे, लेकिन है मौसम के बाद साल भर जे मौसम रहते आगे ओकरा भी आम के हमरा सनी के स्वाद मिलता रह, एकरा वास्ते ओकरो संरक्षित पदार्थ बनाए के जरूरत छे।
0: तो
1: संरक्षित पदार्थ केना बनेबे आम के, एकरा पर हम सनी फरछाए जाने छे है पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता के माध्यम से। भेंट वार्ता कर के संगीता कुमारी।
2: सभ्यता में इस समय आम का मौसम है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि फल बर्बाद हो जाते हैं, तो कौन कौन से संरक्षित पदार्थ हैं जो आम के बनाए जा सकते हैं?
3: आम के बहुत सारे संरक्षित पदार्थ बनाए जा सकते हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा कॉमन है अमावट
2: जी,
3: इसके अलावा अचार, जैम, जेली, स्क्वैश
2: जी। सबसे पहले हम बात करें अमावट बनाने की, तो किसान भाई इसे किस तरह से बना सकते हैं?
3: आमतौर पर हमारे घर में अमावट बनाया जाता है, लेकिन वो बहुत सही तरीका नहीं है क्योंकि उसमें मक्खी वगैरह ज्यादा लगते रहते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सही ढंग से बनाया जाए तो उसके लिए क्या करते हैं कि आम का गूदा निकालने के बाद एक ओवन खरीद लेते हैं, जिससे डायरेक्ट सनलाइट में यूज ना करें तो मक्खी वगैरह ना लगेगी। और इस ओवन का काम है कि ये 5 से 6 घंटे में अमावट तैयार कर देता है। इसके लिए एक ओवन में ट्रे होता है, उसमें ग्लिसरीन लगा करके आम का गूदा निकाल पहले से निकाल लेते हैं, अगर पल्पर है तो ठीक है, नहीं तो जैसे किसान भाई निकालते आ रहे हैं वैसे ही निकाल करके प्रयोग किया जा सकता है। तो आम का गूदा निकालने के बाद उसको हल्का सा छलनी से छान लें ताकि रेशा वगैरह निकल जाए, और उसके बाद उसको ट्रे में 1 से 1.5 इंच मोटा टब लगा करके ड्राई ओवन में उसको डाल दें, जो कि ड्राई भी होते रहेगा वो
2: जी।
3: तो 5 से 6 घंटे बाद तो तैयार हो जाता है, फिर उसको काट करके पैकिंग कर सकते हैं।
2: अच्छा, अमावट बनाने के लिए जब गूदा किसान भाई निकाले आम का, तो कौन कौन सी सावधानियां बरतें उसमें?
3: गूदा निकालते समय देख लें कि आम सही ढंग से पका है या नहीं, क्योंकि कच्चा आम रहेगा तो उसमें एसिडिटी ज्यादा होगी
2: जी।
3: और सही पका आम हो और गूदेदार हो
2: जी,
3: और
2: साफ सफाई का भी ध्यान,
3: सफाई का ध्यान रखें
2: जी। और अमावट बनने के बाद और भी संरक्षित पदार्थ हैं, जैसे कच्चे आम का स्क्वैश है, पके आम का स्क्वैश है, तो कच्चे आम का स्क्वैश कैसे बनाएंगे किसान भाई?
3: कच्चे आम का स्क्वैश बनाने के लिए कच्चे आम का तैयार गूदा लेते हैं
2: जी,
3: 1 किलो के लगभग, और चीनी उसमें 2 किलो के लगभग लग जाएगा, 1 किलो पानी, और साइट्रिक एसिड आता है मार्केट में वो 2 चाय चम्मच ले लें, और पोटेशियम एटेबाइल सल्फाइड नाम का एक सराची आता है वो 2.3 ग्राम या 1 चाय चम्मच, और ग्रीन मैंगो एसेंस आता है आवश्यकता अनुसार वो ले लें, और चाहे तो उसमें हमारा आम का रंग जो भी खाने वाला होता है वो डाल सकते हैं। इसकी जो विधि है वो इस तरह से है कि स्वस्थ कच्चे आम को पहले पानी से धोए और उसको स्टेनलेस स्टील के चाकू से, अगर लोहे के चाकू से काटेंगे तो फिर वो उसका कलर खराब हो जाएगा, तो स्टेनलेस स्टील का चाकू लेकर के उसका छिलका वगैरह उतार करके छोटा छोटा टुकड़ा कर लें और गुठलियां निकाल करके फेंक दें। फिर वो कटा हुआ टुकड़ा है उसको एक चौड़े वाले बर्तन में डाल करके इतना पानी डालें कि टुकड़ा पानी से ढक जाए, फिर उसे आंच पे रख करके गला लें। जब वो मुलायम हो जाएगा तो गोभी को छान लें और दीगर जो भी पानी की मात्रा है 1 किलो मैंने बताया था उसमें चीनी डाल करके 5-6 बार उबालें ताकि चाशनी जैसा बन जाए और उसमें साइट्रिक एसिड डाल करके छान करके ठंडा कर लें।
2: अधिक होने से क्या नुकसान हो सकता है, खराब भी हो सकता है?
3: अधिक होने से चूंकि केमिकल है तो केमिकल ज्यादा नहीं डालना चाहिए, तो 2.3 ग्राम है उसका सही मात्रा है। अधिक डालने से एक तो कलर लगेगा और दूसरे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत सही नहीं है वो।
2: उसके बाद बताते हैं जब आम पक जाता है उस समय ज्यादा खराब होने की स्थिति होती है, तो उस समय कैसे उसका स्क्वैश बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे किसान भाई?
3: तो पक्के आम का भी स्क्वैश बना सकते हैं, इसके लिए खास करके जो बीजू आम होता है वो ज्यादा उपयुक्त होता है। गुदे वाले आम का भी बना सकते हैं लेकिन बीजू आम है तो ज्यादा सही है।
2: कौन कौन सी विधि होगी उसमें?
3: तो उसमें पके आम का रस ले लेंगे 1 लीटर और पानी 1 लीटर, चीनी 2 किलो, साइट्रिक एसिड 4 चम्मच लगेंगे क्योंकि थोड़ा एसिडिटी मेंटेन करना होता है, कच्चे आम में ये बात नहीं थी, और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड 2.5 ग्राम, पके आम का एसेंस आवश्यकता अनुसार, और पके आम का जो रंग होता है केसरिया रंग का वो भी आवश्यकता अनुसार ले लेंगे। इसको बनाने के लिए पके आम को जो कि दाग रहित होना चाहिए, उसमें सड़ा वाला नहीं होना चाहिए, धोकर के रस निकाल लेंगे और चमनी से छान लेंगे उसको। पानी और चीनी की दी हुई मात्रा को मिला करके आँच पे चढ़ा देंगे लेकिन वो बहुत उबलना नहीं चाहिए, उबलने से पहले उसको उतार लिया जाता है, उसको ठंडा करके साइट्रिक एसिड मिला दिया जाता है।
2: फिर
3: चीनी का घोल ठंडा करके उसमें मिला लें और उसके बाद उसमें एसेंस और कलर भी मिला दें और सारे घोल को मिला करके एक समान कर लें। उसके बाद उसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड की दी हुई मात्रा को थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो करके उसमें मिला लें और स्क्वैश तैयार हो गया है और इसको किसी पहले से साफ किए हुए बोतल में जो कि स्टरलाइज किया हो उसमें डाल करके और उसको सील कर दें।
2: जब पैकिंग करेंगे इन सब चीजों की तो ये खराब होने वाले पदार्थ हैं, संरक्षित पदार्थ हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो पैकिंग करते समय कौन सी बात ध्यान रखेंगे, बोतल को किस तरह से लाएंगे, कैसे स्टरलाइज करेंगे और क्या उसके मुंह पर मोम वगैरह भी लगाएंगे?
3: बोतल को स्टरलाइज करने के लिए सबसे पहले उसको अच्छे से धो लें। अगर आप घर में कर रहे हैं तो उसको कम से कम 45 मिनट तक पानी में बॉयल कर लें। उसके बाद उसको सुखा करके उसमें फिर स्क्वैश डाल करके उसको मोम से सील कर दें। और अगर किसी कारण से पहले से बोतल को नहीं स्टरलाइज किया गया है तो स्क्वैश डालने के बाद उसको पानी में डाल, सील करने के बाद उसको पानी में डाल करके आधा घंटा तक बॉयल करें तो भी स्टरलाइज हो
2: जाता है।
3: ये कम से कम 6 से 8 महीने तक खराब नहीं होता है।
2: और आम का क्या क्या बन सकता है इसके अलावा?
3: इसके अलावा आम का तो घर में लोग अचार बनाते हैं, मीठा अचार बनाते हैं, मुरब्बा बनाया जा सकता है और फ्रूट बार आजकल बहुत फैशन में फ्रूट बार सुनने को मिलता है, तो एक्चुअली वो अनावट का ही एक रूप है। उसको पैकिंग अच्छे से की जाती है, उसका साइज से थोड़ा अलग होता है, तो किसान भाई चाहे तो उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं।
2: और मुरब्बा कैसे बना जाएगा आम का?
3: आम का मुरब्बा बनाने के लिए कच्चा आम लेते हैं, उसके 2 तरह से मुरब्बा बना सकते हैं, एक तो आप पीस बड़ा रख सकते हैं और एक बिल्कुल छोटा रख सकते हैं। तो अगर पीस बड़ा रखना है तो आप उसको गोद लें और चीनी में कम से कम 2 गुना चीनी होना चाहिए, तो काटने के बाद उसको चीनी में डाल करके रात भर छोड़ दें, फिर सुबह उसमें से आम के टुकड़े निकाल करके उस चीनी में पानी आ जाएगा, उसकी चाशनी बना लें तीन तार की और फिर उस आम को डाल करके उसमें छोड़ दें तो वो दो दिन में तैयार हो जाता है, खाने लायक हो जाता है।
2: तो इस तरह से आम के संरक्षित पदार्थ किसान भाई बना सकते हैं और सालों भर आम का जो है वो मजा ले सकते हैं। संगीता जी आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हाँ अखलू भाई, आम के संरक्षित पदार्थ बनाने की विधि और उसके कितने कितने पदार्थ हम लोग बना के सालों भर प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक अभी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। और आज के कार्यक्रम में अब यहीं पे हम लोग अपने श्रोताओं से विदा लेते हैं। सबको लाखों का नमस्कार।
1: सभ्य का अखलू के भी नमस्कार।

ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 7 बजने को है रांची से, सुनिए प्रादेशिक समाचार।

0: कहा है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हिंसा और हमले के लिए कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस घटना के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस हमले को गलत बताया है।
1: हमला कहीं भी लोकतंत्र में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। मैं मानता हूं कि 15 वर्षों तक वहां की जनता को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काफी परेशान किया, प्रताड़ित किया। गुस्सा निश्चित रूप से होंगी जनता की, लेकिन राज्य सरकार को देखना चाहिए, कानून को हाथ में जनता को नहीं लेनी चाहिए और सरकार निश्चित रूप से देख रही होगी।
0: राज्य में 2 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दावा किया है कि महागठबंधन के पास राज्यसभा की 2 सीटें जीतने के लिए पर्याप्त संख्या बल है।
2: उनके पास कितनी संख्या है? 24 है, तो कैसे 28 देंगे? ये पार्टी के प्रति जो आइडियोलॉजी में जिनको विश्वास है, वह पार्टी चुनाव में विधायकों के लिए करती है, तो ये विधायक को भी राज्यसभा चुनाव ये सेंटर का है, आलाकमान का है, आलाकमान ये तय करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ इंडिया गठबंधन की जीत होगी।
0: इधर भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर बावरी ने कहा है कि पार्टी पूरे दमखम के साथ राज्यसभा चुनाव लड़ेगी।
3: आंकड़ा है तो फिर और कुछ चिंता करने की बात क्या है? अब हमारा संवैधानिक अधिकार है चुनाव लड़ने का, हमारी वैचारिक मतभेद है तो हम चुनाव ही ना लड़ेंगे। हम अपने विचारों के साथ, अपने मुद्दों के साथ, अपने लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान में रहेंगे। हमारे लिए 81 मतदाता है और उसमें हमको जीत के लिए 28 सीट चाहिए। हम पूरे आश्वस्त हैं कि हमें 28 जीत के आंकड़े मिलेंगे।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गाँवों तक पहुँचाना है। इससे पहले श्री चौहान ने झारखंड समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस अभियान में उनकी भागीदारी के लिए बात की है। खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा और खूंटी के विधायक राम सूर्य मुंडा ने आज मुरहू स्थित एक आवासीय विद्यालय परिसर में 50 शैया वाले छात्रावास निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सांसद ने बताया कि कल्याण विभाग की ओर से लगभग 2,25,00,000 रुपए की राशि से इस छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज परीक्षा केंद्र पर आज बीएड, एमएड और बीपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान कई अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि दस्तावेज जांच में देरी के कारण वे समय पर परीक्षा कक्ष तक नहीं पहुंच सके और उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया गया। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग से सांसद मनीष जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्ष देश के विकास और आत्मनिर्भरता के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं। हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत में आज सांसद ने कहा कि विभिन्न केंद्रीय योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचा है।

0: अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा हुआ उसकी सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये 12 साल बिताए हैं, और 12 साल में जो रिफॉर्म्स है, 13 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण, 54 करोड़ लोगों को जो है आयुष्मान भारत में 5 लाख का इलाज हो रहा है, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, 5 करोड़ से ज्यादा घर बन गए हैं और 8 करोड़ से ज्यादा गैस का सिलेंडर मिला है। तो सभी फ्रंट्स पे ये देश प्रगति कर रहा है।
1: विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर कुमला सदर अस्पताल परिसर में आज जिले के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने तंबाकू नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जन जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार करने वाले रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पलामू जिले से पुलिस ने एक आपराधिक गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: अब सुनिए लोकगीत कार्यक्रम में मधु मिश्रा से ये झूमर।

लोकगीत आप सुन रहे थे मधु मिश्रा से, प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:30 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, कुछ ही पल में हम सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
1: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
1: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब TV का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
7: आसमान में सिर उठा घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
6: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: इधर आइए, इधर
1: इधर।
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
3: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222504।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बिहार का किया विशेष उल्लेख, सत्तू और जरदालू आम की चर्चा की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर में विक्रमशिला पुल और गंगा पथ परियोजना का किया निरीक्षण, 203 करोड़ रुपए की लागत वाली 84 विकास योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। आईपीएल क्रिकेट 2026 का फाइनल आज, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है। और मौसम विभाग ने आज 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्व भागों के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। मन की बात कार्यक्रम की यह 134वीं कड़ी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है।
1: विज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शन 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमूर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगरा, महाराष्ट्र के अल्फाजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष है, ऐसे ही छाए रहिए।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और कार्यक्रम में विशेष तौर पर बिहार का उल्लेख किए जाने पर प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में भीषण गर्मी से बचाव के लिए बिहार के पारंपरिक पेय सत्तू तथा प्रसिद्ध जरदालू आम का उल्लेख करना राज्य की विशिष्ट पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करता है। श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय उत्पादों और जनजीवन से जुड़े विषयों का उल्लेख राज्यवासियों के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। इधर कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में मन की बात कार्यक्रम को सुना। श्री सिन्हा ने इस कार्यक्रम को देशवासियों के लिए प्रेरणादायक बताया।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात है अंदर लोगों के प्रेरणा देने का, खेल से खिलाड़ी, खेत से खलिहान, स्वच्छता और राष्ट्र गौरव के सारे विषय पर इन्होंने बताए हैं। लोगों को प्रेरणा मिलता है। सभी युवा जो नए आदर्श बेस्ट प्रैक्टिस की चर्चा होती है, इससे हमारे लोगों का मनोबल बढ़ता है, राष्ट्र प्रथम का भाव जगता है।
0: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और विधान पार्षद अरविंद शर्मा समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। डेयरी पशुपालन और मत्स्य मंत्री नंदकिशोर राम ने पश्चिम चंपारण के रामनगर में और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने वाल्मीकि नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ इस कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज भागलपुर में 203 करोड़ रुपए की लागत वाली 84 विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने विक्रमशिला पुल और गंगा पथ परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही विक्रमशिला सेतु पर आवागमन शुरू कर दिया जाएगा।
3: नवंबर को मैं स्वयं आऊंगा और स्कूल को फिर से चालू करूंगा। अभी टेम्पररी चालू हो और दूसरा, जब तक ये पुल चालू नहीं हो तो प्राइवेट गाड़ी हो या आम लोग हो, उसको मुफ्त में इस तरफ से उस तरफ ले जाने की सारी व्यवस्था सरकार के।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा के निलंबन के बाद बिहार के प्रशासनिक हलकों में हाई प्रोफाइल ठेकेदार ऋषु रंजन सिन्हा उर्फ ऋषु श्री के कारनामों की चर्चा तेज हो गई है। जांच एजेंसियों का कहना है कि सरकार में बैठे शीर्ष अफसरों के साथ ऋषु श्री का नजदीकी रिश्ता था। अधिकारियों से अच्छे संबंध का लाभ लेकर करोड़ों के सरकारी टेंडरों अपनी मर्जी से चहेतों को फायदा पहुंचाता था। जांच एजेंसियों ने ऋषु श्री पर शिकंजा कसा तो मामला सामने आया। गौरतलब है कि योगेश कुमार सागर 2017 बैच के और अभिलाषा कुमारी शर्मा 2014 बैच की बिहार कैडर की IAS हैं। श्री सागर उत्तर प्रदेश के बरेली और अभिलाषा कुमारी शर्मा बिहार के नवादा जिले की रहने वाली हैं। दोनों अधिकारी बिहार सरकार में शीर्ष पदों पर कार्य कर चुके हैं। सरकार ठेकों में हेराफेरी के मामलों में इससे पहले जांच एजेंसियों ने IAS संजीव हंस, बिहार प्रशासनिक सेवा के मुमुक्षु चौधरी, भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारिणी दास, नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। भ्रष्टाचार के आरोप में दो IAS अधिकारियों का निलंबन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार का भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत की गई यह बड़ी कार्रवाई है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। यह दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। इधर विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भागलपुर में भाजपा द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ता सरकार और संगठन के बीच सेतु का कार्य करते हैं। इस अवसर पर भागलपुर विधायक रोहित पांडे, पीरपैंती विधायक मुरारी पासवान, विधान पार्षद लालमोहन गुप्ता और डॉक्टर NK यादव सहित पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे।

0: पटना पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप है। शेखपुरा जिला में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा न्यायालय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला जज संतोष कुमार तिवारी ने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई। शेखपुरा जिला के करंडे थाना पुलिस ने एक गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 पिस्तौल, 1 जिंदा कारतूस और 2 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर रंगदारी मांगने और मारपीट करने समेत कई अन्य गंभीर मामले दर्ज हैं। प्रदेश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना हुआ है। वहीं 37.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्व भागों के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है।
1: दिनांक 1 जून उत्तर पूर्व भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों में तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और मेघ गर्जन वज्रपात की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 4 से 8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
0: जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी विधान परिषद चुनावों में एनडीए सभी 10 सीटों पर विजय हासिल करेगा।
2: उम्मीदवार को लेकर जो है शीर्ष नेतृत्व में चर्चा हो रही है, उम्मीदवार तय मंथन किया जा रहा है, जल्द ही हम लोग सार्वजनिक करेंगे। जिस तरह हम लोगों ने 5 सीट राज्यसभा का चुनाव जीते थे, उसी तरह 10 सीट जो है विधान परिषद का चुनाव जीतेंगे।
0: आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मुकाबला आज निवर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच हो रहा है। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बॉलिंग का फैसला किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बिहार का किया विशेष उल्लेख, सत्तू और जरदालू आम की चर्चा की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर में विक्रमशिला पुल और गंगा पथ परियोजना का किया निरीक्षण, 203 करोड़ रुपए की लागत वाली 84 विकास योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। आईपीएल क्रिकेट 2026 का फाइनल आज, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्व भागों के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कैमूर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत पांडे।
2: कैमूर जिले में बीते कुछ दिनों से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। अचानक मौसम में आए बदलाव से एक तरफ जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। आंधी पानी के दौरान तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने से कई इलाकों में कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। वहीं आंधी की वजह से जिले के विभिन्न हिस्सों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित है। बीते दिनों जिले में वज्रपात की घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे नहीं रहने की अपील की है। इधर समय समय पर हो रही बारिश के कारण जिले के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को मौसम में आए इस बदलाव से काफी राहत मिली है। इधर जिले के किसानों ने रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होते ही खेतों में धान का बिचड़ा डालकर खरीफ फसल की खेती की शुरुआत कर दी है। कृषि विभाग ने इस बार जिले में 1,40,000 हेक्टेयर भूमि में धान की रोपनी का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि बिचड़ा डालने के लिए किसानों को अनुदानित दर पर उन्नत प्रजाति के धान का बीज बहुत जल्द मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल की खेती के लिए किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक भी उपलब्ध कराया जा रहा है। श्री कुमार ने किसानों से अपील की है कि विभाग द्वारा निबंधित दुकानों पर यदि निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक की बिक्री की जाती है तो इसकी सूचना तत्काल कृषि विभाग को दें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
3: यदि कोई दुकानदार निर्धारित दर से ज्यादा मूल्य पर उर्वरक की बिक्री करता है तो तत्काल इसकी जानकारी आप कृषि विभाग के पदाधिकारी को दें ताकि इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा सके।
2: राज्य सरकार आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 2 जून को कैमूर जिले में विशेष सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान शिविर में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के जिले के दौरे पर आने की संभावना है। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला ने मां मुंडेश्वरी धाम सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण कर सुरक्षा का जायजा लिया। इधर जिला प्रशासन द्वारा जनता की समस्याओं को त्वरित निष्पादन और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले के सभी कार्यालयों में प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार सह जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक के लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर अधिकारियों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर अपनी समस्याएं रख रहे हैं। जिलाधिकारी द्वारा बीते शुक्रवार को आयोजित जनता दरबार में कुल 16 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों के निष्पादन को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कृषि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा विकसित भारत समृद्ध बिहार योजना के तहत किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए जिले में फार्मर रजिस्ट्री का विशेष अभियान शुरू किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि 12 मई से शुरू किया गया यह अभियान आगामी 30 जून तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान जिले के सभी बसुधा केंद्रों पर किसानों को निःशुल्क पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि किसान अपने पंचायत के कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार एवं राजस्व कर्मचारी से संपर्क स्थापित कर आसानी से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। कैमूर जिले में ज्ञान भारतम मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस क्रम में जिले में 346 दुर्लभ एवं प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों की पहचान की गई है। मिशन के तहत इन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण पर उन्हें संरक्षित किया जाएगा ताकि भावी पीढ़ियों के लिए इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखा जा सके। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तकरण छात्र योजना के तहत जिले
4: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज एवं FM बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:52 हुए हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में सुनिए अभय कुमार, क्षमा करें, सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में आज के फनकार हैं आनंद कुमार सिंह। आरंभ में इनसे सुनिए बलबीर सिंह की ये रचना।

संदेश से पहले आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में आनंद कुमार सिंह को, प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। अब सुनिए रजनीगंधा कार्यक्रम में फिल्म गीत। आरंभ में सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में धूल का फूल फिल्म का ये प्यारा सा नगमा। नगमा निगार हैं साहिर लुधियानवी और मौसिकार हैं इन दत्ता।

0: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
1: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
2: बख्शी जगबंधु तो
1: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: दो आंखें 12 हाथ। इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर एवं साथियों की आवाज़ों में। गीतकार हैं पंडित भरत व्यास और संगीतकार हैं वसंत देसाई।

रजनीगंधा कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं फिल्मी गीत आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक फूल दो माली फिल्म का नगमा। नगमा निगार हैं प्रेम धवन, मौसिकार हैं रवि।

मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में सुनिए बूट पॉलिश फिल्म का गीत। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनिए बचपन फिल्म का गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अमिताभ बच्चन, मास्टर रवि और बच्चों की आवाज़ों में सुनिए मिस्टर नटवर लाल फिल्म का

उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो रे भागो।

0: रजनीगंधा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे फिल्मी गीत, प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। 8:45 होने वाले हैं। दिल्ली से सुनिए समाचार संध्या।
1: हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, जिस देश को रखना मेरे पर।

is the time to risk an energetic dance anthem. Bollywood blockbuster kal hona hoga. पिक्चराइज किया गया था शाहरुख खान, सैफ अली और प्रीति जिंटा पर, और कोरियोग्राफ किया गया था फराह खान के द्वारा. आवाजें शान के और वसुंधरा दास की. म्यूजिक बाय शंकर एहसान लॉय एंड लिरिक्स वंस अगेन बाय जावेद अख्तर साहब. यह है आपका अपना आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक. प्रोग्राम है म्यूजिक मस्ती. और मैं हूं भगवती.

एक बार फिर से के और वसुंधरा दास की आवाजें और जावेद अख्तर साहब के बोल मैं हूं ना फिल्म का ये ट्रैक है, ये तो आप जानते ही हैं, और म्यूजिक है अनु मलिक साहब। और कहते हैं कि पूरा गाना एक ही शॉट में शूट किया गया। That's amazing.

0: तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
5: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
5: म्यूजिक मस्ती।
9: सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती भगवती के साथ। और अब कुछ देर का ही हमारा साथ है, उसके जाने के पहले बता दें आपको कि अब से कुछ समय बाद से 9 बजे से आप सुनेंगे प्रोग्राम आपकी याद आती रही। खुर्शीद आलम रहेंगे आपके साथ इस शो में। 10:05 से आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम संडे रिक्वेस्ट शिवांगी वाशनी के साथ। और 11:05 से एक बार फिर खुर्शीद आलम आपके साथ होंगे लेकर प्रोग्राम रंगे महफिल। म्यूजिक मस्ती का लास्ट ट्रैक लेकर रही हूँ आपके लिए और इस ट्रैक के साथ ही आपसे कहती हूँ शब खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ साहब, आकाशवाणी का रेडियो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 एफएम पर। मैं हूँ आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त खुर्शीद। प्रोग्राम लेकर आ चुका हूँ। प्रोग्राम का नाम है आपकी याद आती रही, और यकीन मानिए हमें भी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी आपकी, और यही वजह है कि बहुत दिन बाद फिर आपसे मुलाकात करने आ गए। और साहब प्रोग्राम आपकी याद आती रही में जहाँ यादों का सिलसिला शुरू होता है, और आज हम बात करेंगे उस मोहब्बत की, उस प्यार की जो जुदाई में भी दिल से दिल तक पहुंचती है। वो तड़प, वो बेचैनी जब अपना कोई हमसे दूर होता है ना, लेकिन उसकी याद हर सांस में बसी होती है। चलिए आगाज़ करते हैं इस प्रोग्राम का, लेकिन फ़िलहाल ये खूबसूरत गीत आप तक पहुंचाने की कोशिश है। और यकीन ये है कि जो पहला गीत मैं आपको सुना रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ, आपको पसंद आएगा। तो सुंदर ये आकाशवाणी का रेडियो चैनल, मैं हूँ आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त खुर्शीद।

तकनीकी खराबी के कारण हम आपको दिल्ली से समाचार नहीं सुनवा पा रहे हैं, इसका हमें खेद है।

आपने अभी सुना साजन फिल्म का गीत कुमार सानू, एसपी बाला सुब्रमण्यम, पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। इसके पहले आपने सुना था संघर्ष फिल्म का गीत सोनू निगम की आवाज़ में। अब जो गीत आप सुनेंगे उसे हमने लिया है रिफ्यूजी फिल्म से। आवाज़ है सोनू निगम और अलका याग्निक की। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं अनु मलिक।

फिल्म संगीत आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। रात्रि के 10 बजने को हैं दिल्ली से। सुनिए अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी, एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री असनापुरपु येरैया is a renowned saxophone artist from Andhra Pradesh. He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashavani Kadappa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of कंची कामकोटि आस्थान विद्वान।
0: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वी एन बालचंदर संगति देंगे। श्री वी एन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुचरई टी जी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
1: इन टुनाइट्स कंसर्ट Sri Asanapurupu Yerraya and Party is accompanied on special dolu by Sri V.N. Balachandar. Sri V.N. Balachandar is a renowned dolu artist from Andhra Pradesh. He received training under distinguished gurus including Sri N. Lakshmi Narayana and Tiruchare T.Z. Muthukumaraswamy Pillai. He is a top grade artist of Akashwani.
0: Sri Yerraya apne saxophone vadan ki shuruaat kar rahe hain Ninnu Kori Yunannura se. ये रचना टी सिंगाराचारी की है जो राग वसंत और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया बिगिंस हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद निन्नु कोरी युन्नानुरा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचारी इन राग वसंता सेट टू आदि ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वीएन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पटनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदि ताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to Ninnu Jeppa Karanamemi, a composition of Patnam Subramanya Iyer in Rag Mandari, set to Aditaal.

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सूरजानंद की है।
1: राग कीरवाणी में ये रचना
0: मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
2: यू आर नाउ लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुर एर्रैया इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। श्री एर्रैया नेक्स्ट प्रेजेंट्स सामगान प्रियकरम, ए कॉम्पोजिशन ऑफ गुरु सूरजानंद इन राग कीरवाणी सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: श्री यरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है, राग है वृंदावन सारंग जो आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री यरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंगा सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन, डोलू पर संगति दी श्री वी एन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। इट वॉज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। This program was recorded in the studios of Akashvani Kadapa, and this broadcast came to you from the studios of Akashvani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में शाजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। शाजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। शाजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
2: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar President arrived at Gaya in Bihar yesterday on a five-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar Lal, today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratan Lal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, Union Minister participated in a mega event in Agartala to mark the 6th anniversary of the Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has said an expert team of cyber security